103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून साल 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 34 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और सुबह के 6 बजने वाले हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भागीदार

0: किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आइए सर्वप्रथम पूजनीय प्रभु गणेश जी के इस भजन के साथ आगाज करते हैं आज के मंगलमय दिन का।

हिमांजलि कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला पर आइए अब सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काकभुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्रीराम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्रीराम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सोरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ

काम, मोक्ष, ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन, काव्य के नौ रस, जप, तप, योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और अनूप जलोटा, संगीतकार सतीश भाटिया। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश कान FM शिमला पर। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के इतिहास में बेमिसाल और स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश में लोक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। शिमला जिले में जुब्बल कोटखाई के मलोग में एक खेल प्रतियोगिता के अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का एक प्रभावी माध्यम है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला में एक महिला की हत्या होने चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में पहले नहीं सुनी गई थी, लेकिन अब आए दिन हो रही है। प्रदेश में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं फिल्म शिमला के साथ। सात बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया की प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
3: आज भारत में एक

0: स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं चिंतन।
3: एक चक्रवर्ण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उसमें अपना निर्वाह करते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में खर्च कर देते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप तो हमारी मालकिन हो, आपकी तो हमारे से भी बढ़िया गहने और कपड़े होने चाहिए। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में रानी ने राजा से कहा, आज मेरी बड़ी फजीती हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी ये दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में नहीं लेते, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उनसे कहो कि राजा चक्रवर्ण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर के रूप में सोना लेकर आओ। वो आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो। वो बोला कि मुझे महाराज चक्रवर्ण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहाँ चली गई, क्या रावण कर देगा। वो आदमी बोला कि आपको कर तो देना ही पड़ेगा। अब दे दो तो अच्छी बात है, रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी

0: मत कैसे हो गई, चला जा यहां से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख है संसार में। मंदोदरी बोली, आपने कर दिया कि नहीं? रावण ने कहा, तू भी ऐसी बात कहती है, तू पगली है, समझती नहीं तू मेरी महिमा, जानती नहीं है कि मैं रावण हूं, क्या रावण भी कर दिया करता है? मंदोदरी बोली, महाराज आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी हर दिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजाधिराज रावण की कसम, कबूतरों पर इस बात का कुछ भी असर नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा, देख लिया आपका प्रभाव? रावण बोला, कैसी पगली है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है? मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूँ आपको। उसने कहा, अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवर्ण की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुगा तो चुगते ही उसका सिर कट गया। कारण कि बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि ये तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया, राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवर्ण का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं? रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वो आदमी बोला कि अच्छा आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलिए। रावण को भय तो था नहीं, वो उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। वो आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवर्ण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत करो, जितना चाहिए लेकर चुपचाप चले जाओ। रावण ने उसको ले जाकर कर के रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वो आदमी राजा चक्रवर्ण के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए हो। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ रावण को ये सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराजा चक्रवर्ण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर डॉक्टर हुकम शर्मा के थे।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ और FM शिमला पर चलिए अब आपको बता देते हैं आज FM शिमला पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आकाशवाणी एफएम शिमला से आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कानून की बात कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय रहेगा परिवीक्षा से संबंधित कानून। और इस विषय पर डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कांगड़ा धर्मशाला से आप बातचीत सुन पाएंगे। इसके अलावा सुबह 9 बजे आप सुनेंगे डॉक्टर प्रेम शर्मा से हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन योग। देश और दुनिया की हर एक जानकारी आपको मिलेगी समाचारों के माध्यम से, और ये समाचार आप सुनते हैं हिंदी।

और अंग्रेजी में, जो कि आप सुन पाएंगे दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 10 मिनट के मध्य, 1 बजे से 1 बजकर 10 मिनट के मध्य, दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर, साय 7 बजकर 5 मिनट पर, रात 11 बजे से 11 बजकर 10 मिनट के मध्य, और सुबह 8 बजे से 8 बजकर 30 मिनट के मध्य, और रात 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट के मध्य। और आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, साय 6 बजे और 7:45 पर। इसके अलावा एफएम शिमला से एफएम न्यूज़ हेडलाइंस सुनिएगा सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं फिल्म संगीत में, दिन में 12:10 पर, 3:10 पर, 4 बजे और शाम 8:30 पर। और अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कुदरत के रंग कार्यक्रम। और आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल। दोपहर 1:10 पर सुनिएगा म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम। सुबह 11:05 पर पुराने फिल्मों से कार्यक्रम सुन पाएंगे आप। शाम 8 बजे भूले बिसरे गीत। 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम। सुबह 8:32 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 11:30 का समय रहेगा पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। तो वहीं दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। दिन में 2 बजे सुनिएगा सबरंग कार्यक्रम। शिखरों के स्वर आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। और आज दोपहर 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। युवा दोस्त सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम दिन में 3:30 पर।

साय 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। 9:15 पर सुनिएगा एक फिल्म से प्रोग्राम। 9:30 पर दिल की आवाज भी सुन और 10 बजे आनंद लीजिए दिलकश गजलों का। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे 4:20 पर चंबियाली कार्यक्रम, 4:50 का समय रहेगा मंडियाली कार्यक्रम का और 5:20 पर पंगवाली कार्यक्रम, 6:06 पर महास्वी कार्यक्रम और 6:35 पर आज आप सुनेंगे कुल्लवे कार्यक्रम।

0: तो ये हैं वो कार्यक्रम जो आज आप सुनने वाले हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी
1: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

देवदार के पत्तों से छनकर आती गुनगुनाती धूप, मॉल रोड की फिजाओं में तैरती कॉफी और चाय की भीनी भीनी महक,

और रिज पर बिखरी वो चिर परिचित रौनक। जी हाँ, पहाड़ों की रानी शिमला की इन नयनाभिराम वादियों से इस खूबसूरत सोमवार के सुरमय भोर में आप सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से अभिनंदन आकाशवाणी एफएम शिमला पर। और आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर डिंपल ठाकुर, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला के साथ। दोस्तों, आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन, एक नया आगाज, एक नई उम्मीद। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं इस मुकम्मल और खास विचार के साथ। वक्त की लहरों पर तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन जो लहरों को चीर कर अपनी राह खुद बनाए वही जिंदगी को जीवंत बनाता है। सोमवार का ये नया सवेरा आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से संवारने और सपनों को नई उड़ान देने को आमंत्रण दे रहा है। तो बस अपनी मुस्कान को अपना गहना बनाइए और पॉजिटिविटी के साथ अपने कदम बढ़ाइए।

पी की फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया शान की आवाज में। गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं फिल्म शिमला पर।

और जब बात मंडे मॉर्निंग की हो और शिमला के मिजाज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आज की सुबह शिमला की सड़कें थोड़ी ज़्यादा चहल पहल से भरी हुई नज़र आ रही है। अभी पिछले ही हफ्ते की अगर हम बात करें तो 8 जून से 12 जून तक हमने और आपने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल का जो जश्न मनाया है, उसकी गूंज अभी भी हवाओं में है। कितनी रौनक, कितना हुजूम और कितना उल्लास था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों का सिलसिला थमता नहीं है। भले ही फेस्टिवल थम गया हो, बच्चों की स्कूल्स की जो वन वीक की छुट्टियां थी वो ख़त्म होने के बाद आज सुबह सुबह स्कूलों की स्कूल बसेस और ऑफिस जाने वालों का ट्रैफिक सड़कों पर थोड़ा सा मंडे रश बढ़ा रहा है। लेकिन इस चहल पहल में भी एक अलग ही जिंदगी है। और कमाल की बात देखिए, मैदानी इलाकों और निचले क्षेत्रों के झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए हमारे देश के कोने कोने से सैलानी अभी भी लगातार शिमला की इन हसीन वादियों की पनाह में चले आ रहे हैं। और सैलानियों की ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर दिल खुश हो जाता है। और हम बस यही चाहते हैं कि अतिथि देवो भव की हमारी ये जो परंपरा है वो बस यूं ही गुलजार रहे। और एक और बात का जिक्र यहाँ पर हम ज़रूर करना चाहेंगे, ये उनके लिए जो आज शिमला में या फिर शिमला की ओर गाड़ियों में सफ़र कर रही हैं, थोड़ा सा धीरज रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लें। और आपके इस सफ़र में हम दे रहे हैं आपका साथ ताकि आपका ये सफ़र और सुहाना बना रहे। आपको सुनवा रहे हैं ये बेहद मखमली और प्यारा सा नगमा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला और महसूस कीजिए जिंदगी के इस खूबसूरत सफर को।

0: वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। संगीत और बेहतरीन जानकारियां आपके साथ हैं FM शिमला पर। तो चलिए अब रुख करते हैं इतिहास के उन प्रामाणिक पन्नों की ओर जो आज के दिन यानी 15 जून को जो है बिल्कुल खास बनाते हैं। लेकिन उससे पहले ये संदेश सुन लीजिए।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं अपने देश भारत की। तो आज ही के दिन साल 1908 में एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजारों में से एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी। वहीं साल 2006 में आज ही के दिन भारत और चीन ने ऐतिहासिक ओल्ड सिल्क रूट को व्यापार के लिए दोबारा खोलने का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आज के दिन ईयर 1844 में चार्ल्स गुडईयर को वल्कनाइज्ड रबर का पेंडेंट मिला था। जी हाँ, यही रबर जिससे आज गाड़ियों के टायर्स बनते हैं और हमारी राहें आसान होती हैं। और खेल प्रेमियों के लिए बता दें कि 1909 में आज ही की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की स्थापना हुई थी। और ईयर 1954 में आज ही के दिन यूरोपीय फुटबॉल संघ यानी UEFA का गठन भी हुआ था। तो इतिहास की इन दिलचस्प और अहम कड़ियों के बाद आइए लेते हैं एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं एक और नगमा। आप बने रहिए अपने रेडियो स्टेशन FM शिमला के साथ, सुनते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में हम है राही प्यार के इस फिल्म का सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने

0: और इस गाने के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में। दोस्तों, इतिहास की बातों के बाद अब वक्त है ये जानने का कि आज 15 जून का ये दिन किन विशेष दिवसों के रूप में समर्पित है। तो पहले बात करते हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार हर साल 15 जून को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है समाज में हमारे बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और उनके अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना। हमारे बुजुर्ग हमारे घर की, हमारे समाज की मजबूत नींव है। उनका सम्मान, उनकी देखभाल ही हमारा कर्तव्य है। और इस दिवस के साथ साथ आज यानी 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन प्रकृति की इस अदृश्य शक्ति यानी हवा की ताकत को रेखांकित करता है और हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पवन ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। और आपको बता दें कि अगर आप शौक रखते हैं मेलों में घूमने का, तो आपको बता दें कि जिला सोलन के अर्की क्षेत्र के तहत लगने वाला 2 दिवसीय बाड़ीधार मेला पिछले कल और आज मनाया जा रहा है। तो आप भी इस मेले का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप आज यहां का रुख कर सकते हैं। इस मेले के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इतिहास से सीधा महत्व रखता है ये मेला। महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय पर जो है यहाँ पर अपना समय बताया था और भगवान शिव की जो है यहाँ पर आराधना की थी। और यही वजह है कि बाड़ेश्वर महादेव का जो मंदिर है यहाँ पर लोगों की अटूट आस्था है, जहाँ पर हजारों श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना के लिए शीश नवाते हैं। और खास करके जो है आषाढ़ संक्रांति पर लगने वाला यह मेला सिर्फ सोलन तक सीमित नहीं है, हमारे शिमला बिलासपुर और दूर दूर के जिलों से लोग यहाँ पर पारंपरिक जगराते करने आते हैं और इस भव्य मेले का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि इस मेले को जिला स्तरीय मेला जो है घोषित किया गया है। तो अगर आप भी इस इतिहास और आस्था के साक्षी बनना चाहते हैं तो बाड़ीधार जरूर जाइए।

0: और अब चलते चलते बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में 19 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 15 और 16 जून यानी आज और कल प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन और सिरमौर जिलों के लिए है। और इस दौरान गरज और चमक के साथ बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या फिर अपना छाता जरूर कैरी करें। फिलहाल आज कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

0: और आपको बता दें कि आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात और 9 बजे हिंदी वार्ता। और आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य ईमेल बेस्ड कार्यक्रम म्यूजिक मेल आप सुन सकते हैं। इस समय आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 MHz पर। और अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के अंतर्गत टेली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 12 वर्ष का कार्यकाल देश के इतिहास में बेमिसाल और स्वर्णिम रहा है। मंडी में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में देश में लोक कल्याण के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में

0: नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। प्रदेश में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्य को अंजाम दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल प्रवास ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा व आत्मविश्वास का संचार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रवास ने न केवल संगठन को मजबूती दी बल्कि कांग्रेस की विफलताओं को भी जनता के समक्ष उजागर किया है। ऊना जिले में पिछले 3 वर्षों में 9393 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण रिकांगपियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं का समझना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
7: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी।

0: की। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.com nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15

0: तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना

0: करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। US एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड लिफ्ट US नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry 1/5 of the global oil supplies. US President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while US West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Kaumudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
2: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini.

0: unlimited set of users. For India, the episode is a reminder that access to frontier technology cannot be taken for granted. Countries that wish to shape their digital future will increasingly need the capability to build, adapt, and sustain critical technologies at home. And finally, cross-control-dribble-goal, fans tweak work schedules, body clock to watch World Cup football magic. In its opening weekend, the FIFA World Cup has begun capturing the imagination of Indian fans and viewers, juggling work, family commitments, obligations for the games, beginning after midnight and ending at dawn, sometimes even well into mornings, prompting Indian fans to step into a portal, choosing to live by another continent's clock, reads a story in the Times of India. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz, and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Avignon in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी, जबकि कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। प्रदेश में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्य को अंजाम दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 16,040 फीट की ऊंचाई पर स्थित बारालाचा टॉप का दौरा कर इस क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के कारण बारालाचा टॉप विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की अपार संभावनाएं रखता है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के अंतर्गत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज कांगड़ा की धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। एफएम न्यूज हेडलाइंस के संक में इतना ही। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज हेडलाइंस। और आइए फिल्म शिमला पर

चेतराम मेहता और साथियों को अभी आपने इस लोक भजन में सुना। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जियालाल ठाकुर की आवाज में अगला लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कानून की बात। विषय है परिवीक्षा से संबंधित कानून।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, संतुलन और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो दंड के साथ साथ सुधार और पुनर्वास की भावना को भी महत्व देता है, परिवीक्षा से संबंधित कानून। परिवीक्षा क्या है, इसका लाभ किन परिस्थितियों में मिलता है, न्यायालय इस संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं और ये व्यवस्था किसी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने में किस प्रकार सहायक होती है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कांगड़ा धर्मशाला। माननीय महोदय का कार्यक्रम कानून की बात में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि परिवीक्षा क्या होती है।
1: परिवीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेशन कहते हैं, ये सर शब्दों में कहें तो अदालत किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर जेल भेजने के बजाय उसे एक सुधार का अवसर देती है, इसी को हम प्रोबेशन कहते हैं। अदालत ये उम्मीद करती है कि वो भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगा, कानून का पालन करेगा और दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा, तो उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में उसको बेनिफिट मिलता है।
0: भारतीय न्याय व्यवस्था में परिवीक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, इंसान से गलती हो जाती है, हर गलती करने वाला व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं होता, ना हम ऐसा मानते हैं। कई बार व्यक्ति आवेश में आकर, गलत संगत में या किसी विशेष परिस्थिति में अपराध कर बैठता है, ऐसे लोगों को जेल भेजना जरूरी नहीं माना गया है। इसलिए कानून में सुधार और पुनर्वास की सोच को महत्व देते हुए परिवीक्षा, प्रोबेशन की व्यवस्था की गई है।
0: न्यायाधीश महोदय, क्या परिवीक्षा का उद्देश्य केवल सजा से राहत देना है या सुधार का अवसर भी प्रदान करना है?
1: देखिए, परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सुधार का अवसर प्रदान करना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। परिवीक्षा की व्यवस्था बीसी मानवीय सोच को लेकर बनी है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाता,

0: कि ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने का एक अवसर दिया जा सकता है या नहीं।
1: परिवीक्षा अधिनियम 1958 की मुख्य विशेषताएं क्या है?
0: परिवीक्षा अधिनियम 1958 यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो अधिनियम है। धारा 6 जो है इसकी, वो ये कहती है कि यदि कुछ कम गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है तो अदालत उसे समझाकर, उसकी भर्त्सना करके या उसे चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है, उसे हम जेल में नहीं भेजेंगे। जो धारा 4 है, अदालत को ये अधिकार देती है कि यदि उसे लगे कि व्यक्ति के सुधरने की संभावना है तो उसे जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर, कि वो अच्छा आचरण करेगा, इस शर्त पर उसे छोड़ सकती है। और धारा 6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कहती है कि यदि दोष सिद्ध जो व्यक्ति जिसको दोषी पाया गया है वो 21 वर्ष से कम आयु का है तो उसे जेल भेजने से पहले अदालत को ये विचार अवश्य करना चाहिए और करना पड़ेगा कि उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना है या नहीं। इन प्रावधानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कानून केवल दंड पर नहीं बल्कि सुधार पर जोर देता है।
1: आपने धारा 3 का उल्लेख किया, ये चेतावनी देकर छोड़ना क्या होता है?
0: देखिए, कुछ कम गंभीर मामले जहां व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, अदालत उसे केवल चेतावनी देकर या समझाकर उस व्यक्ति को, उस दोषी को छोड़ सकता है। सिंपल शब्दों में मैं ये कहूंगा कि अदालत उस व्यक्ति से कहती है कि उसने अपराध किया है, अपराध सिद्ध हुआ है, भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना, और उसे अवसर देती है कि वो अपना सुधार कर सके। समझाकर छोड़ना उसको जो है हम धारा 3 में करते हैं।
1: न्यायाधीश महोदय, किन परिस्थितियों में अदालत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दे सकती है?
0: अदालत जब परिवीक्षा देने की बात करती है तो इन विचारों पर जरूर ध्यान रखती है कि अपराध की प्रकृति क्या है, क्या कोई बहुत सीरियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति का पूर्वाचरण कैसा था, क्या पहले भी वो ऑफेंसेस करता रहा है, क्या उसने पहली बार अपराध किया है, उसकी आयु क्या है, उसकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या रही हैं, तथा क्या वो व्यक्ति उसमें सुधार की संभावना है। यदि ऐसी बातें हों तो हम परिवीक्षा का लाभ जो है वो दोषी को प्रदान करते हैं।
1: क्या हर व्यक्ति परिवीक्षा का लाभ पाने का पात्र होता है?
0: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हर मामले में परिवीक्षा नहीं दी जा सकती, ये अदालत के विवेक और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गंभीर और जघन्य अपराध, इन अपराधों में सामान्यतः इसका लाभ नहीं दिया जाता।
1: न्यायाधीश महोदय, किन प्रकार के मामलों में सामान्यतः परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है और किन मामलों में सामान्यतः नहीं दिया जाता?
0: ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 सामान्यतः उन अपराधों में लागू होती है जिनमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है और जहां न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति जो है उसमें सुधरने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहली बार कुछ कम गंभीर किया गया अपराध, साधारण मारपीट का मामला, साधारण चोट पहुंचा देने का, या छोटे मोटे झगड़े, या जैसे चेक बाउंस का केस है, उनमें भी किन्हीं परिस्थितियों में जो है अगर वो गंभीर नहीं है अपराध तो उसमें परिवीक्षा का जो है वो बेनिफिट दिया जा सकता है। और धारा 3 में जैसे मैंने पहले कहा, उसमें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मामला संगीन है, कोई संगीन अपराध किया है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, आतंकवादी गतिविधियों में वो व्यक्ति जो है वो संलिप्त रहा है, तो उन अपराधों में ये बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता। जो बार बार अपराध करते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको भी जो है प्रोबेशन का हम बेनिफिट नहीं देते।
1: क्या महिलाओं और किशोरों के मामलों में परिवीक्षा का विशेष कोई प्रावधान है?
0: ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। इसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई विशेष जो है वो धारा नहीं है इनको बेनिफिट देने की, लेकिन उनका, महिलाओं का जो मामला है वो भी परिवीक्षा के लिए उपयुक्त है। उनको धारा 4 की अगर बाकी जो है कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हैं तो अच्छे आचरण पर महिला को भी जो है, महिला अपराधी को भी छोड़ा जा सकता है। पुरानी जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसमें धारा 360 थी, और अब जो नई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसका धारा 401 महिलाओं को जो है उसमें महिलाओं के लिए विशेष जो है उल्लेख है, और उपयुक्त मामलों में उन्हें अच्छे आचरण पर छोड़ा जा सकता है।
1: आम लोगों में ये धारणा है कि परिवीक्षा का मतलब अपराध को माफ कर देना है, क्या ये सही है?
0: नहीं, अपराध की माफी ऐसे नहीं होती, अपराध माफ नहीं किया जाता, लेकिन उस व्यक्ति में जब सुधार की संभावना है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे अच्छे आचरण पर या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है।
1: परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को किन नियमों और शर्तों का पालन करना होता है?
0: बेसिकली तो उसे अपना आगे को व्यवहार अच्छा रखना होता है, कानून का पालन करना होता है, और भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसी शर्तें उस पर लगाई जाती।

0: और उन शर्तों का पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है।
1: न्यायाधीश महोदय, यदि कोई व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करे तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?
0: वो तो सीधी सी बात है, अगर वो पालन नहीं करता है, अदालत जो है उसकी प्रोबेशन को खत्म कर देगी, उस बेनिफिट को समाप्त कर देगी, और उससे फिर जो है वो जो उसको सजा होनी है, वो सजा जो उसको हुई है या जो सजा करनी है उसके लिए उसको जेल भेज देगी।
1: परिवीक्षा अधिकारी यानी प्रोबेशन ऑफिसर की क्या भूमिका होती है?
0: इनका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कई बार कोर्ट इनसे इन्फॉर्मेशन गेन करता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसका पहले आचरण कैसा रहा है, ये रिपीट ऑफेंडर या हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। और जो अगर प्रोबेशन का बेनिफिट अगर उसको दे दिया जाए तो जो परिवीक्षा अधिकारी होता है ये उसके व्यवहार पर भी नजर रखता है उस दोषी के, उसे मार्गदर्शन देता है और उसकी प्रगति के बारे में कोर्ट को जानकारी देता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो सुधार के मार्ग पर चल रहा है।
1: क्या परिवीक्षा व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रभावी माध्यम है?
0: ये डेफिनेटली उसको तो जो है वो एक मौका इसीलिए दे जा रहा है कि वो अपराध ना करे, वो अपना सुधार करे और उसको मुख्य धारा में जो है दोबारा उसको भेजा जा सके, वो सामान्य जीवन जी सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके।
1: परिवार और समाज पुनर्वास में किस तरह सहयोग कर सकते हैं?
0: परिवार की बड़ी अहम भूमिका रहती है। परिवार तो ऐसा है कि पहले उसको बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार दे दिए गए हैं तो अपराध से रोक सकता है, अपराध के मार्ग पे जाने पे। लेकिन अगर हो गया है किसी कारणवश और उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये बेनिफिट मिला है प्रोबेशन का, तो उसको जो है हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। उसको कोई ताने देने की जरूरत नहीं है, उसको ताने नहीं मारने हैं, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि हो गया, अब आप अच्छे इंसान बनिए, आगे को जो है कोई अपराध नहीं करिए और अपना सुधार करिए।
1: क्या परिवीक्षा से जेलों पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद मिलती है?
0: बहुत सी जेलें भरी पड़ी हैं अपराधियों से, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में या प्रोबेशन का बेनिफिट देते हैं तो जेल में तो ऑब्वियसली वो संख्या जो है वो कम रहेगी, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगी।
1: और किन गलतफहमियों के कारण लोग परिवीक्षा के बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते?
0: गलतफहमियां प्रोबेशन को लेकर अक्सर ये रहते हैं कि लोग समझते हैं कि ये अपराध की माफी है, लेकिन अपराध की माफी नहीं है, वो तो उसको एक मौका दिया गया है कि वो अपना सुधार कर सके। एक गलतफहमी ये भी होती है कि अगर प्रोबेशन मिल गई तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी मर्जी आएगी वो करेंगे, वैसा नहीं होता है। उस पे जो अदालत ने शर्तें लगाई हैं प्रोबेशन में छोड़ने के लिए, उनको उसको जो है आवश्यक रूप से उसका पालन करना होता है, भविष्य में अच्छा आचरण करना होता है। कई लोग ये मान लेते हैं अपराध कर दिया अब हमें प्रोबेशन मिल जाएगी, वैसा भी नहीं है। प्रोबेशन तभी मिलेगी जब अदालत को लगता है परिस्थितियों से कि ये व्यक्ति में सुधार हो सकता है, मामला बहुत संगीन नहीं है, इससे पहली बार गलती हुई है, तो इन चीजों को देखते हुए उसको जो है छोड़ा जा सकता है।
1: क्या परिवीक्षा की व्यवस्था केवल परिवीक्षा अधिनियम में ही है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसकी सेक्शन 3360 में ये प्रोविजन थी अच्छे आचरण पर छोड़ने की। अभी वो जो धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 में भी ऐसी प्रोविजन है कि अदालत कुछ उपयुक्त मामलों में व्यक्ति को अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ सकती है। तो 402 जो है वो अब धारा BNSS की, वो ये मैंडेट करती है कि हर मामले में पहले जो है वो ये देखा जाए कि क्या ये बेनिफिट दिया जा सकता है प्रोबेशन का या नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जा सकता उसके कारण दर्ज करने पड़ेंगे, रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों नहीं बेनिफिट उसको दिया जा रहा। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसकी जो है एनफोर्समेंट ऑब्वियसली जो इसके एम्बिट में आते हैं उनमें होगी, और ये एक विशेष कानून है, तो इस वजह से इसका भी जो है वो ध्यान में अदालतें रखती हैं बेनिफिट देते समय।
1: न्यायाधीश महोदय, हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, युवा पीढ़ी तो देश का भविष्य है
1: जी।
0: मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस के लिए। तो हमारे युवा हैं वो मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, अपने जीवन में अनुशासन रखें, अच्छे संस्कार रखें, तो ये चीजें उनको जो है वो बेनिफिट करती हैं। कई बार एक क्षण का गुस्सा होता है, आदमी लड़ पड़ता है, कहते ना कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। तो वो थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप पर जो है वो कंट्रोल रखें, गलत संगति में ना जाएं, ये नशे आजकल जो चल रहे हैं इनसे दूर रहें, जल्दबाजी में किसी को एकदम ऐसे रिएक्ट नहीं करें, जो है अपना विवेक से कार्य करें जीवन में, अपना माता पिता अपने उनसे जो गुरु हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके मुताबिक चलने का प्रयत्न करें, तो उनका जीवन जो अच्छा रहेगा। और सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव रहें और समाज के लिए कुछ करने का प्रयत्न करें, कम से कम अच्छे इंसान बने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: अंत में परिवीक्षा संबंधी कानूनों के बारे में आम नागरिकों को कौन सी महत्वपूर्ण बातें अवश्य जाननी चाहिए?
0: जहाँ तक हो सके अपराध की दुनिया से जो है दूर रहें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी कोई गलती हो गई है जो जघन्य या बहुत गंभीर अपराध नहीं है, तो उसमें उसको ये बेनिफिट मिलेगा, और इस बेनिफिट को जो है उसको प्रॉपर वे में उसको यूज करना है, वो गलत अपराध आगे ना करे, जो शर्तें उस पर लगाई

0: गई हैं उनका पालन करें, तो दोषी व्यक्ति जो है वो सुधर सकता है। ये सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन के जो है स्वयं ही निर्माण करता है और अपने ही विनाश करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम वसा दयेत, अर्थात कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को नीचे गिरा सकता है। तो हम अपने ही मित्र हैं और हम अपना ही जो है, हमारा मन जो है वो अगर गलत धारणाओं में या गलत भावनाओं में चले जाएगा तो हम अपना पतन कर सकते हैं। और एक शेर भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सब हम पे निर्भर करता है हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहूंगा, सोच विचार करके जीवन में इंसान आगे बढ़े और युवा पीढ़ी अपना ध्यान रखे।
1: डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, आपने परिवेक्षा कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अत्यंत सरल और उपयोगी जानकारी देकर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इसके लिए आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सुधार और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना भी है। परिवीक्षा की व्यवस्था इसी सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी आशा के साथ कि आप भविष्य में भी कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते रहेंगे, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। विषय था परिवेक्षा से संबंधित कानून। इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कांगड़ा, धर्मशाला से बातचीत। FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर प्रेम शर्मा से, भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन योग, इस विषय पर हिंदी वार्ता।
3: भारतीय संस्कृति की प्राचीनता ने समस्त विश्व को अपने सम्मोहन से वशीभूत किया है। यह जो ज्ञान विज्ञान का जो ये अविरल क्रम है, ज्ञान की विचारधारा, भारतीय मनीषियों ने इसका प्रारंभ किया था। भारतीय मनीषियों ने सदैव प्रकृति को अत्यंत निकट से देखा और यत पिंडे स ब्रह्मांडे का अनुशीलन करते हुए मनुष्य के विकास यात्रा के लिए जिन जिन अवयवों की आवश्यकता थी उसका निरंतर चिंतन मनन कर उन्होंने ज्ञान विज्ञान की एक ऐसी नई आयाम स्थापित की है जिससे भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे सर्वोच्च पर पहुंचकर भारत को विश्व गुरु का ऐतिहासिक दर्जा दिलाने में कामयाब रही। अब हम जब योग का विचार करते हैं, योग एक ऐसा विषय है जिसने आज भी समस्त विश्व को अपना एक विशिष्टता प्रदान करते हुए भारतीय विज्ञान को सभी समस्त विश्व में स्थापित किया है। और आज समस्त विश्व में, चाहे आप पश्चिमी जगत में जाएं, अमेरिका में जाएं, जब योग की गणना आती तो सभी लोग सूत्रों का विशेष रूप से वर्णन देते हुए सूत्रों के विषय में जानने की चेष्टा करते हैं कि वो क्या सूत्र में धागा है जिससे ये समस्त योग। विशेषतः जब ऋषियों ने यह देखा कि जो ब्रह्मांड में अवयव हैं वो हमारे शरीर में भी हैं, तो उन्होंने मनुष्य को जीवन को सुखी रखने के लिए और मनुष्य के चित्त को उस परम अनंत से जोड़ने के लिए एक अनूठी विज्ञान का सृजन किया जिसे कहते हैं योग। योग में जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जिस विधि से जोड़ा जाता है, चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर उनको एकाग्र कर उसको सीधा ही ईश्वर से लगा देना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। आम मूल तौर पर यदि आप पाश्चात्य जगत में जाएं तो योग को लोग सोचने लगते हैं हठ योग, जो कि आप शरीर की व्यायाम करना, प्राणायाम करना, इसी को मुख्य रूप से योग समझा जाता है। जबकि योग अपने आप में गहनतम विषय है, इसे जब तक आप विशेष रूप से जानेंगे नहीं, इस प्रक्रिया को जानेंगे नहीं, तो योग के मिथ्या शब्द से ही जुड़कर विश्व रह जाता है। वस्तुतः योग के चार विभाग भारतीय पुरातन पद्धति ने किए हैं। इन चार विभागों में सबसे पहले है कर्मयोग, जिसकी शिक्षा गीता में भगवान कृष्ण ने दी है और वेद व्यास जी द्वारा कृत महाभारत की जब संरचना की गई उसमें एक विशेष रचना भगवत गीता को, जो प्रभु के गीत का गायन है, उसमें विशेष रूप से कर्म योग का नाम दिया गया। मनुष्य अपने इस जीवन में सदकर्मों को करते हुए, अच्छे विचारों को धारण करते हुए, समस्त जीवों में उस परमात्मा का चिंतन करते हुए, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी क्रोध इत्यादि में लिप्त होकर जब कोई अच्छा कर्म करता है और समस्त

संसार के जीवों के प्रति एक जैसी धारणा रखता है और निष्काम भाव से, किसी फल विशेष की इच्छा से नहीं, निष्काम भाव से रहकर, लेकिन स्वतंत्र रूप से रहकर जब कोई कर्म करता है और उन कर्मों में जब उसका निष्काम भाव रहता है और वह केवल परिणाम की अपेक्षा अवश्य करता है, लेकिन परिणाम अच्छा है या बुरा वो परमेश्वर या प्रकृति पर छोड़ देता है, और उसको अगर वो उस काम में कुछ किसी प्रकार का गतिरोध रह जाता है तो पुनः प्रयास कर उसे सफल बनाने की चेष्टा करता है। जैसे कि विवेकानंद जी कहा करते थे कि तब तक स्थिर मत बैठो जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, तब तक वो सदकर्म को करता हुआ स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है। वह सदकर्म ही कर्म योग कहलाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य इस जीवन में अच्छे कर्मों को प्राप्त करता हुआ जब अपने शरीर का परित्याग करता है तो परम पुरुष परमेश्वर से या प्रकृति से मिलकर अपने समस्त अच्छे कर्मों के कारण वो मोक्ष गति को या परमात्मा को या पूर्ण रूप से वो परमात्मा में लीन कर जाता है। और यही कर्म सिद्धि का सिद्धांत है, क्योंकि वेद व्यास ने भी एक जगह कहा है, यथा धेनु सहस्त्रेशु वत्सानुगम्यन्ति मातुरम तथोपि कर्म करता रहा करताम अनुगच्छति। जैसे हजार गायें खड़ी कर दें, बछड़ा अपनी माँ के पीछे जाता है, ऐसे ही मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे व बुरे कर्म उसके पीछे पीछे चलकर उसे कर्म की प्रेरणा देते हैं। तभी कहते हैं कि निष्काम कर्म करने की आदत डालनी है, क्योंकि जब मनुष्य अपने शरीर को छोड़ता है उस वक्त जो जो राग द्वेष मोह इत्यादि उसके मस्तिष्क में जो रह जाते हैं वो कंप्यूटर की इस हार्ड डिस्क में मस्तिष्क में रहकर उसको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की गति में डालकर प्रारब्ध बनकर बुरा अच्छा उसको भोगने पर विवश कर देते हैं। दूसरा योग का बड़ा जो विभाग है जिसे कहते हैं भक्ति योग। भक्ति मीन मनुष्य, देखो भारतीय मनुष्यों ने हर मनुष्य की मानसिक स्थिति के अनुसार उसका योग सुनिश्चित किया है। जो कर्म में दृढ़ हैं, कार्य करने वाले हैं, कर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिए तो कर्म योग सिद्धि देने वाला है। कई मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेते हैं, जो भावनात्मक संबंध परमात्मा से रखने जाते हैं, और परमात्मा का चिंतन हम सगुण उपासना द्वारा निर्गुण उपासना द्वारा करते हैं। सगुण उपासना में हमारे भारतीय परंपरा में मूर्ति की पूजा करना, भगवान की नवधा प्रकार से भक्ति करना इत्यादि है, और निर्गुण भक्ति में आप चले जाएं तो गुरु नानक इस भक्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, कबीर इस परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने भक्ति के द्वारा निष्काम भाव से प्रभु का चिंतन मनन स्मरण कर निष्काम भाव से परमात्मा की भक्ति करी और परमात्मा में आश्रय पाया। और नानक जी ने यही कहा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। एक बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने अन्य कहा, तहां सदा वसंत है जिस घर वसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी सो अहनिश है जलंत। जिसके हृदय में परम पुरुष परमात्मा ब्रह्म का वास रहता है उसके मनुष्य में सदा ही वसंत आनंद रहता है। जिसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं वो मनुष्य हमेशा मिथ्या चिंता व्याधि क्रोध इत्यादि से ग्रस्त रहता है। तो भक्ति की पराकाष्ठा ही भक्ति मार्ग का भक्ति कर्म कहलाता है। लेकिन भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए हमें जो प्रयास करने पड़ते हैं वो निष्काम कर्म, भक्ति से परमात्मा की पूजा, स्वयं को परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करना। भक्ति प्रधान स्वभाव के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि अपने इष्ट के प्रति, अब जैसे आप अलग अलग संप्रदायों में परमात्मा की पूजा की जाती है, मुस्लिम संप्रदाय में 5 नमाजों के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करते हुए हर वक्त ईश्वर का चिंतन करते हुए उसके आनंद स्वरूप का चिंतन करते हुए हर नमाज में उसके प्रति आदर अभिव्यक्त किया जाता है, वो भी भक्ति की एक पराकाष्ठा है। सिखिज्म में अपने गायन के द्वारा स्मरण के द्वारा गुरु कृपा प्राप्त करते हुए उसका भजन करते हुए परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वो भी भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा है। इसी प्रकार हमारी सनातन परंपरा में भी रामायण में गीता का दूसरी चीजों का अध्ययन करते हुए और प्रभु की भक्ति की जाती है, तो प्रभु का स्मरण करना, प्रभु की प्रशंसा करना, समर्पण करना और नवधा भक्ति के साथ परमात्मा को प्राप्त करने का यह मार्ग जो है परमात्मा की प्राप्ति का ही मार्ग बन जाता है। लेकिन भक्ति में उच्चता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन से काम, जिसके हृदय से कामना इत्यादि की से मुक्त रहना पड़ेगा। बहुत अधिक मोह रखने से भी आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार का भाव जब तक आप में रहेगा तो आप भक्ति के मूल तक नहीं पहुंच सकते। क्रोध पर जब तक आपका नियंत्रण नहीं है तब तक आप भक्ति के मूल तक नहीं पहुंच सकते। ईर्ष्या का जब तक आप में भाव है आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। अहंकार का जब तक भाव रहेगा तब भी आपको भक्ति की प्राप्ति नहीं रहती। व्यर्थ के मद में अभिमान में रहकर आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। और जब आपके मन में किसी प्रति की लोभ है तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इन सभी भक्ति मार्ग की उच्चता को प्राप्त करने के लिए आपको सभी से रहित रहकर गुरु के प्रति भक्ति रखकर प्रभु का स्मरण करते हुए जब समर्पण आप कर देते हैं वो भक्ति मार्ग कहलाता है। एक अन्य मार्ग है ज्ञान मार्ग, भक्ति के बाद ज्ञान। जो मनुष्य इंटेलेक्चुअल

इंटेलिजेंट है, जिसने शास्त्रों का पूर्ण अनुशीलन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है, और ज्ञान का मुख्य स्रोत भारतीय परंपरा में वेद हैं, और वेद के पश्चात हमारे उपनिषद हैं, जिसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। यहाँ तक बाहर के विद्वानों ने कह दिया है कि जहाँ पर विजडम का एंड ऑफ द विजडम इज देयर, वो वेदांत है, वेदांत का अंत वहाँ तक है। उस वेदांत के माध्यम से उस ब्रह्म को जानना कि ब्रह्म क्या है, जैसे शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत जो मिथ्या के रूप में है जो आमने सामने देखते हैं, और वास्तविक रूप जो है पार ब्रह्म परमेश्वर का है। और ज्ञान के द्वारा आपने उस परमात्मा को जब प्राप्त कर लिया, और किसी प्रकार से जब उसको आप आगे प्राप्त करने के लिए आगे चले गए, और ज्ञान के मार्ग द्वारा वेदों का अध्ययन करने से, उपनिषदों का अध्ययन करने से, अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों में बैठकर जो आपको ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सिखाएं, परमात्मा के प्रति समर्पण सिखाएं, ज्ञान के मार्ग की उच्चता पर प्राप्त करके आपके चरित्र को ऊंचा करें, नैतिकता का आप पालन करें, तो उस प्रकार से जो ज्ञान के द्वारा आपको जो प्राप्ति होती है वो आपका ज्ञान मार्ग कहलाता है। आप देख लीजिए, चाहे वो कर्म योग का माध्यम हो, चाहे वो भक्ति योग का माध्यम हो, चाहे वो कर्म योग का माध्यम हो, वो एकोपि सत्य द्वितीयो नास्ति, एक परम सत्य परमात्मा के प्रति आपको ले जाने वाला है। चाहे आप उसकी निर्गुण भाव की पूजा करें, जिसमें आप जो निर्गुण भाव से पूजा करने में बौद्ध मत से आप करते हैं, सिख मत से करते हैं, आर्य मत से करते हैं, और सगुण भक्ति चाहे वो आप सनातन मत के हिंदू मत से करते हैं, मूल रूप से उसी परम ब्रह्म की प्राप्ति के वो साधन हैं जिसको आपने प्राप्त करना है। और इनमें जो सबसे सर्वविदित और एक अनुशासित मार्ग है योग का, वो है अष्टांग योग, जिसे वस्तुतः पतंजल ऋषि का जन्म जब ईसा पूर्व 200 वर्ष पूर्व ईसा के हुआ है, तो उस वक्त तब तक भारतीय परंपराओं में विशेष रूप से योग प्रचलित था। ऐसा नहीं था योग नहीं था, शास्त्रों में, वेदों में, इसका उपनिषदों में पूर्ण ज्ञान था, लेकिन उसको एक विधिवत तरीके से रहस्य न रखकर जन साधारण के प्रति सामने ले आने का जो बड़ा महान कार्य, महत्व कार्य किया है, वो महर्षि पतंजल ने किया। महर्षि पतंजल ने अष्टांग योग की संरचना की। अष्टांग योग का मतलब योग के आठ अंगों का प्रभाव। वो योग के आठ अंग क्या हैं, किस प्रकार से हैं, जिसके हम आप हठ योग भी कहते हैं, जो पाश्चात्य जगत में भी प्रचलित हैं, तो अष्टांग योग में उन्होंने योग को प्राप्त करने के लिए आठ चीज। सबसे पहले योग का पहला जो अष्टांग योग का जो पहला अंग है वो है यम। यम का मतलब है कि अपने जीवन में कुछ एक अनुकूल चीजों को धारण करना, जैसे बिना सत्य बोले, बिना सच के आधार बनाए आप किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। तो आपके जीवन मूल्यों में सत्य का होना बड़ा आवश्यक है। फिर अहिंसा, सब जीवों के प्रति दया। जब तक आपके मन में अहिंसा का भाव नहीं है, वेद व्यास ने तो यहाँ तक कह दिया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्यायाः पापाया परपीडनम्। कि हे मनुष्यो, मैंने 18 पुराणों की रचना कर दी है, लेकिन दो नियमों पर सारा धर्म चलता है। वो क्या है कि अष्टादश पुराणेषु, इन 18 पुराणों में व्यासस्य, व्यास जी के दो वचन हैं, परोपकाराय पुण्यायाः। परोपकार ही पुण्य है, और पाप सबसे बड़ा है वो दूसरे के प्रति हिंसा करना, प्रतिहिंसा करना। तो अहिंसा जब तक आपको नहीं आती, तो आप यम का पालन आपसे नहीं होता। एक आपके मन में आस्तेय, किसी दूसरे की वस्तु के प्रति इच्छा ना होना। दूसरे के पास अगर सब कुछ है, आप उससे कुछ चुराना चाहें, या अपना बनाना चाहें, या लोभवश को अपने वश में करना चाहें, जब तक आप में आस्तेय का गुण ना होगा, तब तक आप योग को सिद्ध नहीं कर सकते। और उसके बाद मनुष्य मार्ग में मोक्ष प्राप्त करने के लिए चार मार्ग शास्त्र कहता है। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की प्राप्ति के लिए सबसे पहला चरण है ब्रह्मचर्य। मनुष्य ब्रह्मचर्य में रह करके ईश्वर के प्रति चिंतन करते हुए नियमों का पालन करे, और अपरिग्रह, किसी की चीज की अपेक्षा नहीं, सभी चीजों से दूर हट करके वैराग्य वृत्ति को धारण करना, ये आपके योग करने से पहले के यम हैं जिनको आपको धारण करना है। दूसरे कुछ आपको नियम बनाने पड़ेंगे, पहले आप योग की सिद्धि प्राप्त कर सकते। सबसे पहले है शुचिता का नियम, अपने शरीर को, मन को पवित्र रखना होगा। फिर दूसरा है संतोष का नियम, जो चीज प्राप्त हो गई उसी में संतोष करना होगा। बहुत ज्यादा अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर ये जोर नहीं डालना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि लस्ट जहां आ जाती, संतोष नहीं रहता, तो वहां आप योग की धारणा से वंचित हो जाते हैं। और तीसरा है, जब तक तपेन जायतः सिद्धि, तपेन जायतः बलम, तपस्या ही सब सिद्धि होती, तो तपस्या प्राप्त करके ही आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। स्वाध्याय, बिना ऋषि मुनियों के वचनों को जाने, बिना अच्छी पुस्तकों को ज्ञान के, जब तक आपको स्वाध्याय नहीं, तब तक आप योग के मार्ग पर नहीं चल सकते। और ईश्वर परिध्यान, जब तक आपका ईश्वर पर विश्वास नहीं, आप योग के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। ईश्वर के चाहे सगुण रूप या

0: पूर्ण रूप किसी रूप में आप उसकी वो करें। और आसन, और एक आसन पर बैठकर स्थिर भाव में बैठकर चिंतन मनन कर ईश्वर से लगना, फिर प्राणायाम अपने श्वसन प्रक्रिया के द्वारा अपने श्वास से अपने चित्त को उस परमात्मा से जोड़ने की गति प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार कि परमात्मा के स्वरूप को अपने मस्तिष्क में धारण करना प्रत्याहार कहलाता है। जब प्रत्याहार हो गया तो ईश्वर की धारणा आपके मन में आ गई, जब धारणा आपके मन में आ गई फिर आपका ध्यान लग गया, जब आपका ध्यान लग गया तो आपकी समाधि लग गई, और जब आपका समाधि लग गई तो आपकी निर्विकल्प समाधि है जो ईश्वर के साथ मिल गए आप, या कैवल्य की स्थिति है जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो इस अष्टांग योग के द्वारा आप जीवन जीकर उस परम तत्व में विलीन होने पर पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं, आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही भारतीय योग की महिमा है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता, विषय था भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन योग, और इस विषय पर जो वार्ताकार थे वो थे डॉक्टर प्रेम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

0: और अब आपको बता दें, आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को आप किस समय पर सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर सुरबेला कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित संजीव अभ्यंकर से राग भोपाल तोड़ी पर गायन। 10 बजे से 11 बजे के मध्य आनंद लीजिए रिमझिम कार्यक्रम का। 11:05 पर लोक संगीत कार्यक्रम। 11:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:10 पर, 2:45 पर और शाम 8:15 पर आनंद लीजिए कुछ नए और कुछ पुराने फिल्मी नगमों का फिल्म संगीत कार्यक्रम में। दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:10 पर। 2:30 का समय रहेगा हिमगुंजन कार्यक्रम का और आज 3:05 पर आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। दोपहर 2 बजे सुनहरी किरणें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कीवी के समसामयिक कार्य, इस विषय पर बातचीत। और 7:10 पर आज आप सुनेंगे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक। शाम 8 बजे धारारे गीत, 8:30 पर सुगम संगीत, 9:15 पर गुलदस्ता में आनंद लीजिए दिलकश गजलों का। 10 बजे सुनिएगा शास्त्रीय संगीत, 10:30 पर सुरबहार कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में सुनिएगा चंबियाली कार्यक्रम 4:20 पर, मंडियाली कार्यक्रम 4:50 पर, 5:20 पर, पंगवाली कार्यक्रम, महास्वी कार्यक्रम 6:06 पर और 6:35 पर, कुल्लवी कार्यक्रम। तो ये वो मुख्य मुख्य कार्यक्रम हैं जो आज आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण।
1: 97 MHz पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिलों को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों का आज शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। आज शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून की पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन 4 नगर निगमों में नए महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। उल्लेखनीय है कि 17 मई को मतदान और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारियों में मौजूद कर्मियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे कल शिमला में एक निजी विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि

0: आज के समय में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाए। इस दौरान सुरेश कश्यप ने छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in DTH सेवा और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाहरी राज्यों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालयों में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पिछले कल भी खजियार डलहौजी मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही और हजारों पर्यटक करीब 4 घंटे जाम में फंसे रहे। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
1: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम 4 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।
2: बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
3: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली 3 घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम 3-3 घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर में पिछले 3 वर्षों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
4: ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर जिला में पिछले 3 सालों में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 166 युवतियों व महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गत 3 वर्षों में 72 महिलाओं ने अपना स्वयं का रोजगार सृजित किया है, जबकि अन्य 94 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं रोजगार के लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम महिलाओं को स्वावलंबन दिशा की तरफ बढ़ा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज से 18 जून तक बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का दूसरा चरण रिकॉम्पियो में शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से आए 66 प्रतिभागियों का पारंपरिक खातक और किन्नौरी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया।

दौरान आईटीबीपी के उप कमांडेंट वीरेंद्र सिंह और माई भारत हिमाचल प्रदेश के राज्य निदेशक ध्रुव डोगरा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। विकसित वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, सांस्कृतिक एकता का सुदृढ़ करना, स्थानीय परंपराओं का समझाना और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करना है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, हिमाचल और पंजाब में 8 ठिकानों पर ईडी ने दी दबिश। सांगला घाटी में होगी ग्रीन टूरिज्म की शुरुआत, सरकार ने तैयार किया प्लान, हिमाचल दस्तक की एक खबर है। मौसम की खबर को अमर उजाला और पंजाब केसरी ने लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, 7 जिलों में अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, 20 तक मौसम खराब। दैनिक भास्कर के अनुसार मिलिट्री स्कूल चायल के पूर्व छात्रों को मिला राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान, स्कूल टाइम के बाद नहीं होगी जनगणना शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, हमीरपुर समेत कई जिलों में आदेशों में हुआ संशोधन।

0: पंजाब केसरी ने लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, 7 जिलों में अंधड़ के साथ बारिश का अलर्ट, 20 तक मौसम खराब। दैनिक भास्कर के अनुसार मिलिट्री स्कूल चायल के पूर्व छात्रों को मिला राष्ट्रपति मुर्मू से सम्मान, स्कूल टाइम के बाद नहीं होगी जनगणना, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है। हमीरपुर समेत कई जिलों में आदेशों में हुआ संशोधन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ, कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित, और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधर चलने का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और सुबह के 9:30 हो चुके हैं और ये समय रहता है आपके अपने कार्यक्रम का। जी हाँ, कुदरत के रंग कार्यक्रम का ये समय रहता है। दोस्तों, जून का महीना है, मैदानों में तपती गर्मी है, लेकिन हमारा हिमाचल इस वक्त देश दुनिया के पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो आज इस कार्यक्रम में हम सैर करेंगे हिमाचल के कुछ पर्यटन स्थलों की और बात करेंगे कुछ ऐतिहासिक मेलों की, जो हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। तो आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि कार्यक्रम में अभी और भी बहुत कुछ खास है। फिलहाल ये सॉन्ग आपके लिए पहले प्ले कर रहे हैं, आप बस यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुहाना सफर फिल्म का ही गीत अभी आपने प्रोग्राम में सुना। कुदरत के रंग कार्यक्रम इस वक्त आप एंजॉय कर रही हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और जब भी जिक्र होता है हिमाचल का, बात जब हिमाचल की होती है, हिमाचल की संस्कृति की होती है, तो मेलों का जिक्र सबसे पहले आता है। हिमाचल के ये मेले सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी आस्था और इतिहास का जीवंत रूप है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जिला कुल्लू की, जहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत साल 1651 में हुई थी, जब कुल्लू के राजा जगत सिंह ने अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति लाकर यहां स्थापित की थी। ये मेला बाकी मेलों से अलग है। विजयदशमी के दिन शुरू होता है और पूरे एक हफ्ते चलता है ये मेला, जहां ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवता एक साथ मिलते हैं। और इसी तरह मंडी की शिवरात्रि का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। इसकी शुरुआत साल 1527 में राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना के साथ की थी। आज भी भूतनाथ मंदिर से निकलने वाली बाबा भूतनाथ की जलेब को देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव रहता है। और अगर व्यापारिक इतिहास की बात करें तो शिमला ज़िले के रामपुर बुशहर का लवी मेला हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है, जो लगभग 400 साल पुराना है। राजा केहरी सिंह के समय तिब्बत के साथ हुए व्यापारिक समझौते की याद में ये मेला मनाया जाता है।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जिक्र करते हैं हिमाचल के उन पर्यटन स्थलों का जो अपनी वादियों से सबका दिल जीत लेते हैं। हम सब जानते हैं कि साल 1864 में ब्रिटिश सरकार ने शिमला को भारत की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। आज भी यहाँ का दी मॉल, स्कैंडल पॉइंट और ऐतिहासिक रिज मैदान सैलानियों की पहली पसंद है। और हाँ, इसके अलावा कालका शिमला टॉय ट्रेन का जिक्र भला हम कैसे करना भूल सकते हैं। कालका शिमला टॉय ट्रेन को 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इसे भारत के पर्वतीय रेलवे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के तहत इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया। और जब भी आप शिमला आते हैं तो इस टॉय ट्रेन की सवारी के बिना आपका जो सफ़र रहता है वो बिल्कुल अधूरा सा आपको लगेगा। तो जब भी शिमला आए तो इस ट्रेन का जो है, इस ट्रेन में सफ़र ज़रूर करें और प्रकृति का आनंद आप इस ट्रेन में बैठकर ले सकते हैं। शिमला कालका टॉय ट्रेन के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो ये ऐतिहासिक रेल मार्ग जो है 9 नवंबर 1903 को यातायात के लिए शुरू किया गया था। कालका से शिमला के बीच की ये नैरोगेज लाइन लगभग 96 किलोमीटर लंबी है और इस खूबसूरत सफ़र के दौरान ट्रेन लगभग 102 टनल्स और 864 पुलों से होकर गुजरती है। और इसके अलावा ज़िला कांगड़ा में स्थित धर्मशाला और मैक्लोडगंज अध्यात्म और कुदरत का एक अनोखा संगम है। 14वें दलाई लामा का निवास स्थान होने के कारण इसे छोटा ल्हासा भी कहा जाता है। यहाँ का भागसुनाग वाटरफॉल और डल लेक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए। और अगर आप आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं अटल टनल का। अटल टनल रोहतांग में है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जिसकी लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है। इस टनल ने लाहौल घाटी के पर्यटन को पूरी तरह बदल दिया है, जहां अब सैलानी सीसू और केलोंग के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज हमने मेलों के रंग देखे, वादियों की सैर की, लेकिन कुदरत के ये रंग तभी तक खूबसूरत रहेंगे जब तक हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। इस जून के महीने में जब हमारे हिमाचल में लाखों सैलानी आ रहे हैं, तो एक हिमाचली होने के नाते हमारा और यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक का ये फ़र्ज बनता है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को बढ़ावा दें, प्लास्टिक और कचरे को सिर्फ डस्टबिन में डालें, हमारी नदियों और प्राकृतिक जल स्रोतों को साफ रखें, स्थानीय संस्कृति जैसे खान पान और हस्तशिल्प को बढ़ावा दें ताकि स्थानीय रोज़गार भी बढ़ सके और आप जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ का आनंद उठा सकें, यहाँ पर घूमने फिरने का वो आनंद उठा सकें।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश भर के 11 जिलों में आज नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी। कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टेलीलॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज धर्मशाला में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून को पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में आज से 18 जून तक बारिश और अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे कल शिमला में एक निजी विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे

0: थे। प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ, फ्रीक्वेंसी आपकी जानी पहचानी 103.7 मेगाहर्ट्ज़। और एफएम शिमला पर इस वक्त जो स्टूडियो की घड़ी है 10:01 हो चुका है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं अगला जो एक घंटा है वो रहने वाला है बिल्कुल आपका। और आपका इसलिए क्योंकि इस कार्यक्रम का रिमोट कंट्रोल आपके हाथों में होता है। आप हमें ईमेल भेजते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, और अपनों को विश भी आप कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, तो आप विश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने चाहने वालों तक भेज सकते हैं अपनी। और इसके अलावा अपनी पसंद के गाने आप सुन सकते हैं फरमाइश करके AIR FM Shimla MusicMail@gmail.com पर अपनी ईमेल भेजकर। और मैं डिंपल ठाकुर आपकी इन खूबसूरत कड़ियों को संगीत के धागे में पिरोकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जल्दी से हमें ईमेल कीजिए और सुनिए अपनी पसंद का कोई सा भी फिल्मी नगमा।

हीरा पद्दा। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने एंजॉय किया और इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल भेजी थी दिग्दर्शन ने मेरठ कैंट से। आपने हमें मेल किया और आपके साथ जो नाम आपने शामिल किए, आप है कविता, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, राधा नामदेव, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई। आप सभी की पसंद पर हमने हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत आपके लिए प्ले किया। और अगली जो ईमेल हमें मिली है बड़ा बम चौक खंडवा से मिली है ममता बम।

मार्कंडेय, संजय, मार्कंडेय और बेबी किट्टू, ये नाम इन्होंने शामिल किए हैं। और इसके अलावा जो हमें ईमेल मिली है, अगली ईमेल, पवित्र पापी फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। कोल सिटी बरका काना से आप हैं अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, मोहम्मद अफजल मलिक, आपने हमें मेल किया है। इसके अलावा बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू की हमें ईमेल मिली है। डुमराव बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी की भी हमें ईमेल मिली है। गोला बाजार बक्सर से ही हमें एक और ईमेल मिली है श्रद्धानंद आर्य की, अभयनंद आर्य और परमानंद आर्य, ये जो है हमें ईमेल आपने किया है। और इसके अलावा सारिमपुर बक्सर से ही राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी की ईमेल भी हमें मिली है। और अगली ईमेल हमें मिली है कोहका भिलाई से, आप हैं उत्तम सिंह जंघेल, आपके साथ हैं मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से ईमेल हम तक पहुंची है अमित जंघेल की, साथ में है शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू की हमें ईमेल मिली है। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से आप हैं फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीज़ा प्रवीण। तो आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा रही हैं कार्यक्रम का ये अगला गाना। और इसके बाद राम और श्याम फिल्म के लिए जो हमें रिक्वेस्ट मिली है, उनकी रिक्वेस्ट को भी हम पूरा करेंगे। फिलहाल अभी आप इंजॉय कीजिए कार्यक्रम में ये अगला गाना जो कि हमने लिया है पवित्र पापी फिल्म से, और फरमाइश आप सभी श्रोताओं की ही है।

म्यूजिक मेल कार्यक्रम इस वक्त आप इंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अगर आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए airfmshimlamusicmail@gmail.com पर। ये ईमेल आईडी है, आपने करना क्या है, ईमेल हमें लिखना है, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, किस फिल्म से आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं वो आपने लिखकर हमें भेज देना है ईमेल के जरिए airfmshimlamusicmail@gmail.com पर। इसी बीच अगली ईमेल राम और श्याम फिल्म का गाना सुनने के लिए हमें मिली है। इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे और नाम शामिल कर देते हैं, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी की ईमेल हमें मिली है। और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने हमें ईमेल किया है। आप सुनना चाहते हैं मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म का गीत, ज़रूर आपकी फरमाइश को हम पूरी करेंगे। और अगली जो ईमेल मिली है वो है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत की। आपके साथ है संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और पांडर कवडा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बलहार शाह से सूरज लोंढे और प्राची और एकलव्य, इन्होंने हमें ईमेल की है। अगली ईमेल हमें मिली है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो की। आपके साथ हैं रोजी, पर्ल और विलिस, आपने ये नाम शामिल किए हैं। और नागरकोहरा ज़िला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने हमें ईमेल किया है। तो आप सभी दोस्तों की पसंद पर सुनवा रही हैं कार्यक्रम में ये अगला गाना जो कि हमने लिया है फिल्म राम और श्याम से। लेकिन उससे पहले ये संदेश सुन लीजिए।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मेल कार्यक्रम में अगली ईमेल हम तक पहुंची है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस की। आपके साथ हैं पिंकी लवली आरती अरोड़ा, इन्होंने हमें ईमेल किया है। और अगली ईमेल गांव नथाना पंजाब से है हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता की। और अगली ईमेल हम देख रहे हैं, फरमाइश करता है आप सभी श्रोता साथी, आप रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जो नाम आपने शामिल किया है, गांव पुतकी कला कवर्था छत्तीसगढ़ से हैं राधे श्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे। और आपने लिखा है कोई सा भी नगमा अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल। और इसके अलावा दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल की हमें ईमेल मिली है। और अजीत कसाना की हमें ईमेल मिली है और ये लिख रहे हैं कि इंजॉय कर रही हैं ये प्रोग्राम और लिख रहे हैं साथ ही साथ कि आपकी पसंद हमारी पसंद। और इन्होंने नाम भी शामिल किए हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली, ज़िला मुरादाबाद से इन्होंने हमें ईमेल किया है। तो आप सभी की फरमाइश पर हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला गाना। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: म्यूजिक मेल कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ईमेल आप कर सकते हैं AIRFMShimlaMusicMail@gmail.com पर। अपनी ईमेल जल्दी से हमें भेजिए और अपने पसंद का गाना आप यहां पर सुन सकते हैं। इसी बीच ईमेल हम शामिल करने जा रहे हैं गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह की। इन्होंने नाम शामिल किए हैं जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लव

प्रीत कौर और करमजीत सिंह, कोई सा भी ये गाना सुनना चाहते हैं। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम ने हमें ईमेल किया है। और कंवर कॉलोनी बड़वाह ज़िला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली की ईमेल भी हमें मिली है। आंधी फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग हम आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे। और इसके अलावा विजय तनवर और ममता की हमें ईमेल मिली है, चंडीगढ़ से इन्होंने हमें ईमेल किया है। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। आप में से ही किसी एक ने हमें फरमाइश लिखकर भेजी थी शिकार फिल्म का गाना सुनने के लिए, तो पहले आपको सुनवा रहे हैं ये गाना और उसके बाद आपकी फरमाइश पर ही आंधी फिल्म का गाना आपके लिए प्ले करेंगे। आप बस यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए। फिलहाल इंजॉय कीजिए शिकार फिल्म से ये गाना आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में।

0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

और अगली ईमेल हमें मिली है कुल्लू आनी से। आप हैं कुमार ठाकुर, कविता ठाकुर, डीएस ठाकुर, डीडी ठाकुर, जीत फिल्म का गाना सुनने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। और इसके अलावा एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से आपने हमें ईमेल किया है। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू ने हमें ईमेल किया है। और अगली जो ईमेल हमें मिली है वो मिली है दिग्दर्शन गौर की। आपने हमें ईमेल किया है। और ज़िला मुरादाबाद, गांव दुल्हापुर, यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की हमें ईमेल मिली है। और विपिन शर्मा विलेज शालाघाट, तहसील अर्की, डिस्ट्रिक्ट सोलन से हमें ईमेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि गर्मी का मौसम हो और जैसा भी मौसम हो, सुहाना मौसम हो, तो AIR FM शिमला के साथ जुड़ के आनंद हमें मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने के लिए। और इसके अलावा जो ईमेल हमें मिली है पोटिया कला दुर्ग से है, और आपने भी हमें रिक्वेस्ट लिखकर भेजी है। ज़रूर आपकी फरमाइश को भी हम पूरा करेंगे। और आप सभी श्रोताओं की पसंद पर प्ले कर रहे हैं आपके लिए जीत फिल्म से ये गाना।

और ईमेल चलते चलते शामिल कर देते हैं अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, रुचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लवदीप शर्मा, नैन्सी शर्मा और दिव्याना शर्मा के सुनाम पंजाब से हमें मिली है। इसके अलावा राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत सुनने के लिए दीपिका ठाकुर, ममता ठाकुर, योगिता ठाकुर और नितिन ठाकुर और रवीना ठाकुर की हमें ईमेल मिली है गांव खड़कू सुनने से। और इसी फिल्म का गीत सुनने के लिए निशा मेहता, विधि काव्या और तान्या मेहता धरोगड़ा सुनने से इन्होंने हमें ईमेल किया है। तो आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये आखिरी गाना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से। तो आप यूं ही एफएम शिमला के साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए। प्ले कर रहे हैं आपके लिए कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम म्यूजिक मेल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ. कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें.
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं. अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे. साथ ही एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच सेवा पर भी सुने जा सकते हैं.
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है. अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए. प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जा रही है. शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं. उधर कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे. इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में नवनिर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे. धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून को पहली बैठक आयोजित होगी. प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उप महापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा. गौरतलब है कि नगर निगम के लिए 17 मई को मतदान हुआ था और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे. प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आजीविका सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता.
3: सरकार की नई चराई नीति समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी. इस नीति में चराई प्रबंधन को पर्यावरण संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाया गया है. पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा. इसमें पशुपालकों को 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा. इस जानकारी को हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से हो सकेगा. नीति की खास बात यह है कि बिना औपचारिक अनुमति के वर्षों से चराई कर रहे पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता मिलेगी. पंजीकरण के साथ स्थानीय चराई सलाहकार समितियां मामलों की समीक्षा कर नए परमिट जारी करेगी. आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा.
2: प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है. इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं. पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा. इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे. भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा. ये आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा. इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी. इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे. बाहरी राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम

0: की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
1: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम चार घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।
2: बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
3: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली 3 घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम 3-3 घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
4: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला। सुबह के 11:06 हो चुके हैं। पेश है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
2: दोस्तों, पुराने गीतों का यही तो बात होती है, जैसे ही धुन कानों में उतरती है यादों का कारवां सा चल पड़ता है। आइए इसी खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला मधुर गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। फिल्म है 20 साल बाद, शकील बादायुनी के बोल हैं, हेमंत कुमार का संगीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम में बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों, पुरानी फिल्मी गीतों के जो मिठास होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो वैसे ही बरकरार बनी रहती है जैसे बरसों पहले थी। तो चलिए अब सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा घराना फिल्म से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। शकील बादायुनी के बोल हैं रवि का संगीत।

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ गीत नहीं होते, ये वो आवाज़ें हैं जिनमें बीता हुआ वक्त सांस लेता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खूबसूरत गीत की ओर, जिसे हमने लिया है शिकारी फिल्म से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, फारूक केसर के बोल हैं, जे एस कोहली का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम के बाकी गीत आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक के बाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ और इस समय सुन रहे हैं आप प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से। दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं दिल एक मंदिर फिल्म से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी की, हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जयकिशन का संगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 11:32 हो चुके हैं, अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत।

श्रोताओ, हिमालय की वादियों से उठती मधुर धुनों और लोक संस्कृति की मीठी खुशबू के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। पहाड़ी गीत केवल संगीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की पहचान है। इन गीतों में बसती है पहाड़ों की सादगी, अपनापन और मिट्टी की सौंधी महक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत के, और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं निम्मो देवी की आवाज़ में।

श्रोताओ, हिमालय की वादियों से उठती मधुर धुनों और लोक संस्कृति की मीठी खुशबू के साथ स्वागत है आपका कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में। पहाड़ी गीत केवल संगीत नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की पहचान है। इन गीतों में बसती है पहाड़ों की सादगी, अपनापन और मिट्टी की सौंधी महक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम पहाड़ी संगीत के, और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाते हैं निम्मो देवी की आवाज़ में।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। लोकगीतों की मिठास सीधे दिल में उतर जाती है दोस्तों, और हर धुन अपनी मिट्टी के साथ अपनी महक लेकर आती है। और आइए अब सुनते हैं अगला पहाड़ी लोकगीत गोपाल कृष्ण भारद्वाज की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम के बाकी के लोकगीत इस अंतराल के बाद।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। लोकगीत हमारे लोक जीवन का आईना है। इनमें खुशियाँ भी हैं और त्योहारों की रौनक भी और प्रकृति का सुंदर एहसास भी। लीजिए सुनिए ये मधुर लोकगीत नीलम गंधर्व की आवाज़ में।

अपनी संस्कृति और परंपराओं की आत्मा बसती है इन लोकगीतों में। तो आइए अब सुनते हैं मनोज कुमार की आवाज़ में ये मधुर लोकगीत।

पहाड़ी संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला से 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं मंजू भारद्वाज की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

लोक संगीत की यही खूबसूरती है, ये हर उम्र में दिल को छू जाती है। पेश है आखिरी लोकगीत कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में।

कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 12 बजने को हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में समाचार और 12 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के

अभी आपने अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में अंदाज फिल्म का गीत सुना। अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में संघर्ष फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं, जतिन ललित का संगीत।

0: फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: बारह बजकर 20 मिनट होने को हैं। आकाशवाणी शिमला और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को सुषमा वर्मा
1: और सपना शर्मा का
0: नमस्कार। तो सपना, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम अच्छी हूँ सुषमा, और आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं वो भी स्वस्थ होंगी और अपना कार्यक्रम सुनने के लिए जो है अपने रेडियो सेट को ऑन करके बैठी भी होंगी।
1: जी बिल्कुल बैठी होंगी, क्योंकि देखिए हम रोज़ाना उनके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, और साथ ही साथ उनके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए उन्हें बढ़िया बढ़िया से गीत भी हम सुनवाते हैं,
0: है ना? बिल्कुल।
1: और देखिए सुषमा, जैसे हर दिन खास होता है ना कुछ खास होता ही है,
0: जी
1: वैसे ही आज का दिन भी खास है।
0: जी बिल्कुल
1: जी हाँ, और बताइए आज क्या कुछ खास है हमारी बहनों के लिए आज?
0: आज देखिए बहनों, हर वर्ष जो है 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
1: जी।
0: और ये दिन जो है हमें उन लोगों के प्रति सम्मान, संवेदनशील और जिम्मेदारी का एहसास करवाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के निर्माण में समर्पित किया है।
1: बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने। अब देखिए ना, जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है उस घर में खुशियों का वास होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: बुजुर्ग हमारे परिवार की देखिए जड़ें हैं, उन्होंने अपने अनुभव, त्याग और संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की है।
0: बिल्कुल सही कहा सपना आपने, क्योंकि देखिए बहनों, बदलती जीवन शैली और व्यवस्था के इस दौर में कई बार वही बुजुर्ग जो है उपेक्षा, अकेलेपन और दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
1: हाँ, और जैसा देखिए हमने बहनों आपसे कहा कि 15 जून का दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और आपको ये भी बता दें कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूक करना और ये समझाना है कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना केवल गलत है बल्कि ये उनके सम्मान और अधिकारों का भी उल्लंघन है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सपना आपने। देखिए बहनों, बुजुर्ग दुर्व्यवहार की बात अगर हम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं है।
1: जी,
0: ये कई रूपों से सामने आता है, जैसे मानसिक उत्पीड़न हो गया, अपमानजनक उनके साथ व्यवहार किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, उपेक्षा या उन्हें अकेला भी छोड़ दिया जाता है।
1: जी सुषमा, और कई बार तो देखिए कठोर शब्द, अनदेखी या उनकी भावनाओं को महत्व ना देना भी जो है ना वो दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, सोचिए ना बहनों, जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, जिन लोगों ने अपनी इच्छाओं का त्याग कर हमारी खुशियों को प्राथमिकता दी, अगर वही लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेलापन और या फिर उपेक्षा महसूस करें ना, तो ये कितना ही दुखद होगा सपना।
1: बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। देखिए जैसे आपने कहा कि जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया अगर वो अकेलापन महसूस करते हैं अपने अंतिम पड़ाव में, तो ये बहुत ही दुख की बात है। देखिए ना, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति को ना सिर्फ दवाइयों और सुविधाओं की ही ज़रूरत होती है बल्कि प्यार, सम्मान और अपनेपन की भी देखिए ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
0: जी बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास बैठना, उनसे बातें करना, उनकी

0: राय जानना, उनके अनुभवों को सुनना और उन्हें ये महसूस करवाना कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: यही सबसे बड़ा उपहार देता है उनको। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठते हैं ना, तो उनके लिए ही नहीं सपना, मुझे लगता है कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्गों से हमें ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है ना सपना, जो हम कहीं किताबों में नहीं पढ़ सकते हैं या कहीं कोचिंग सेंटर में जाकर नहीं सीख सकते हैं। मतलब उनके अनुभवों से हमें वो सीख मिलती है। तो मुझे तो लगता है कि बुजुर्गों के साथ उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी बैठना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, यानी अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकालकर हमें उनके साथ जरूर बैठना है, उनके अनुभव सुनने हैं, है ना, और साथ ही साथ कुछ अपने अनुभव भी हम उनके साथ साझा कर सकते हैं, ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना वो हमें कुछ ना कुछ नई सीख देते रहें। और देखिए, आज के दौर में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण परिवारों में समय की कमी दिखाई देती है ना, वहीं क्या होता है कि हम उनके साथ बैठने के लिए, उनके साथ बातें करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि एक दिन देखिए हम भी उसी उम्र के पड़ाव पर पहुंचेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: इसलिए आज जो सम्मान हम अपने बड़े बुजुर्गों को देंगे, वही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगा।
0: तो हमें करना क्या है, देखिए बहनों, हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर बुजुर्ग सुरक्षित, सम्मानित और खुशहाल जीवन जी सके।
1: जी। और देखिए सुषमा, जहाँ हमारे बुज़ुर्ग अनुभवों की वो किताब है जिनका हर पन्ना जो है ना हमें जीवन की नई सीख देता है।
0: जी बिल्कुल। तो आइए इस विश्व दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि अपने जो बुज़ुर्ग है उनको केवल सम्मान ही नहीं बल्कि अपना समय, प्यार और अपनापन भी उन्हें देंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे परिवार की जो है जड़ें होती है और जड़ों से ही जीवन को मजबूती मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने, और उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका अनुभव जो है ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा समय आप जरूर बिताएं, है ना, ताकि कुछ बातें आप उनसे साझा कर सके और वो अपने अनुभव आपके साथ साझा कर सके और आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए नए जो अनुभव है वो आप उनसे सीख सके, ताकि जिंदगी में आने वाली जो आपके कठिनाइयां हैं उनका आप अच्छे से सामना कर सके।
0: जी बिल्कुल। तो देखिए सपना, अब क्यों ना अपनी बहनों को एक गीत सुना दिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए सुषमा, योग भारत की वो अमूल्य धरोहर है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को योग के महत्व और इसके लाभों के प्रति जो है वो जागरूक किया जा सके।
1: जी बिल्कुल। और जब ये योग पूरे समुदाय के साथ किया जाता है ना सपना, तो इसके लाभ और भी बढ़ जाते हैं।
0: जी
1: तो चलिए अब बात करेंगे हम कि सामुदायिक योग जो है हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे समाज के लिए जो है कितना लाभकारी है।
0: जी हाँ, देखिए बहनों, योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला है।
1: जी,
0: जब योग को समूह में या समुदाय के साथ किया जाता है तो इसके लाभ जो है बहनों वो कई गुना बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सपना आपने। आज की भागदौड़ भरी जो जिंदगी है ना, उसमें बहुत से तनाव, चिंता और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हो जाता है जरूरी कि सामुदायिक योग अगर हम करते हैं तो इससे मानसिक और जो शारीरिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए बहनों, सामुदायिक योग का जो है सबसे बड़ा लाभ ये है कि बहनों इससे लोगों में आपसी मेलजोल बढ़ता है। जब लोग एक साथ योग करते हैं तो उनमें संयोग और एकता की भावना विकसित होती है। और देखिए सपना, होता भी है ना कि अकेले हमारा मन नहीं करता है, लेकिन अगर हम समूह में या हम 4-6 लोग या घर के ही लोग इकट्ठे हो जाएं या कहीं मोहल्ले में एक टाइमिंग रख लें कि इस टाइम योग करने आना है, तो उसमें क्या होता है कि एक मज़ा भी आता है और आराम से हम कर भी सकते हैं, खुशी खुशी कर भी सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि टाइमिंग की, घर पर हमें कई बार टाइम भी नहीं लगता तो हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, आज के दिन क्या करना, कल कर लेंगे। बट अगर आप इस तरह का सामुदायिक अगर आप योग करने की आप कोई योजना बनाते हैं तो इससे ये होगा कि आपको टाइम फिर निकालना ही पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना ही है इस टाइम, तो वहाँ जाना ही है। तो इससे जो है आपका जो कल और परसों पे टालने का वो होता है वो नहीं होता है। सामुदायिक योग से जो है आप अपने रूटीन में योग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए सुषमा, इसके लिए क्या करना होगा, हमें समय प्रबंधन जरूर करना होगा, है ना? यानी हम सभी जो है ना आपस में टाइम मैनेज करके जो है एक थोड़ा सा समय जरूर निकालें और समूह में इकट्ठे होकर जो है आप योग कर सकती हैं। इससे हमारा उत्साह भी बढ़ेगा और हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट भी होंगे।
1: जी बिल्कुल। और इसके अलावा सामुदायिक योग जो है शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, ये तो हम जानते ही है। और नियमित योग से शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी बढ़ती है और कई जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है ना, उसको भी जो है योग अपने नियंत्रण में कर देता है।
0: जी हाँ, योग का प्रभाव बहनों सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये मन को भी शांत करता है।
1: जी बिल्कुल।
0: सामुदायिक योग में देखिए शामिल होने वाले लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत महसूस करते हैं।
1: देखिए सपना, हम पढ़ते तो है लेकिन हमें लगता है कि शायद ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा, कि जो लोग योग नहीं करते हैं ना सपना, वो इन चीजों को शायद नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की योग करने से चिंता या तनाव दूर हो सकता है, चिंता तो होती ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बहनों। अगर आप योग करते हैं, अगर जैसे आप मेडिटेशन भी करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, एक ध्यान देते हैं आप, और उस जब आप उस ध्यान में होते हैं ना तो वो सारी चिंताएं, वो सारा तनाव जो है आपका कुछ टाइम के लिए जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, योग से जो है तनाव भी कम होता है, चिंता भी कम होती है और जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं ना वो भी काफी हद तक जो है हमें हल्का महसूस करवाती है।
0: बिल्कुल, इतने सारे फायदे देखिए सुषमा आपने हमारी बहनों को बता दिए, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें हैं ना वो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल कर जो है योग

0: जरूर करेंगी,
1: जी बिल्कुल,
0: साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शामिल करेंगी, है ना,
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: इसमें आप बुजुर्गों को भी शामिल कर सकती हैं, यानी जितना भी वो उनका शरीर अलाउ करता है ना, उन्हें वो छोटे छोटे जो योगासन है आप उनसे ज़रूर करवाएं, खुद भी करें। आप सुबह सैर पर निकल सकती हैं उनके साथ, बच्चों के साथ, इस तरह से आपका जो है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: मतलब आपके कहने का ये अर्थ है सपना, कि सामुदायिक योग जो है सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है,
0: जी
1: चाहे वो बच्चे हैं, युवा है, महिला है या बुजुर्ग है,
0: जी
1: सभी इसमें भाग लेकर जो है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, और सुषमा खासकर हमारी बहनों के लिए ना, देखिए कि ये योग बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि देखिए कहा जाता है कि महिलाएं जो है घर परिवार की धुरी होती है, एक नींव होती है ना, तो महिलाओं का स्वस्थ होना वैसे तो सभी लोगों का, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग है, सभी का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी बहनों की बात करें तो देखिए सुबह से शाम तक वो कितना व्यस्त रहती है ना,
1: जी बिल्कुल,
0: घर परिवार का भी उन्हें ध्यान रखना होता है, और अगर वो वर्किंग है तो वहाँ ऑफिस में भी उन्हें काम करना है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने लिए ज़रूर योग करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनों के लिए योग जो है बहुत लाभदायक है। इससे शारीरिक फिटनेस बनी रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है।
0: जी हाँ, और सामुदायिक योग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का भी एक माध्यम है।
1: जी बिल्कुल,
0: जब लोग देखिए ना एक साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं तो पूरे समाज में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का जो संदेश है ना वो फैल

0: का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपनी बहनों की बात करें तो देखिए सुबह से शाम तक वो कितना व्यस्त रहती है ना
1: जी,
0: घर परिवार का भी उन्हें ध्यान रखना होता है, और अगर वो वर्किंग है तो वहाँ ऑफिस में भी उन्हें काम करना है। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप अपने लिए ज़रूर योग करें ताकि आप स्वस्थ रह सकें।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनों के लिए योग जो है बहुत लाभदायक है। इससे शारीरिक फिटनेस बनी रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक संतुलन भी बेहतर होता है।
0: जी हाँ, और सामुदायिक योग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का भी एक माध्यम है।
1: जी बिल्कुल,
0: जब लोग देखिए ना एक साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं तो पूरे समाज में स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का जो संदेश है ना वो फैलता है।

0: के साथ सुबह से शाम तक खेलते थे, खाते पीते सब उनके साथ रहते, मतलब हर जो बच्चे का जो योजना होती थी ना वो पेरेंट्स के साथ ही होती थी। लेकिन
1: बिल्कुल,
0: आजकल आपने देखा है क्या, आजकल बच्चों
1: बहुत
0: के
1: कम
0: पास टाइम माँ बाप के लिए बहुत कम है, और
1: जी,
0: उनका जो फ्रेंड और जो भी है सब कुछ जो एक मोबाइल फोन बन के रह गया है।
1: बिल्कुल, यानी सोशल मीडिया से जो जुड़ाव है ना उनका बढ़ता ही
0: जी
1: जा रहा है
0: बिल्कुल,
1: ना। जैसा आपने कहा कि बच्चे पहले अपने माता पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज कई बच्चों का जो समय है, जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है,
0: जी
1: और यही वजह है कि माता पिता अक्सर चिंता में रहते हैं, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल,
1: कई बच्चे देखिए सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन देखते हैं, और रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही उनके हाथ में होता है। और सुषमा देखिए ना, ये धीरे धीरे से क्या होता है ना कि वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं और ये चीज़ें उनसे छूटती ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिसने जिस बच्चे ने मतलब हमेशा अपने हाथ में फ़ोन रखना है उसे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: तो
0: इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है बहनों। आंखों की जो है कमज़ोरी, सिर दर्द, कम शारीरिक गतिविधि, मोटापा और नींद की समस्या जैसी परेशानियां जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और ये तो आपने देखा ही होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना वो उनके आंखों में इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं। चलो कई तो होते हैं कि उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम होती है बचपन से लेकर उनकी आइज वीक होती है,
1: जी
0: पर बहुत कम लोगों बच्चों के ऐसा होता है। मैक्सिमम बच्चों की जो चश्मे होते हैं वो उनके पेरेंट्स एक ही चीज बोलते हैं कि ये मोबाइल फोन की देन है।
1: बिल्कुल सुषमा, तो ऐसे में देखिए ना, हम सभी का फर्ज बनता है
0: जी
1: ना, हमारा भी बनता है, माता पिता का, घर परिवार के बड़ों का फर्ज बनता है कि हम बच्चों को जो है ना आउटडोर गेम्स में शामिल करें, है ना,
0: जी
1: फोन उनके पास कम दे, है ना, या अगर आपको देना ही है तो आप टाइम मैनेजमेंट करें।
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इन सभी चीज़ों का जो है ना शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों में देखिए चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी और तनाव जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चिड़चिड़ापन तो इतना है बच्चों में आजकल कि आप एक बात बोलेंगे ना तो उसी के ऊपर चिढ़ जाएंगे,
1: जी
0: और ये सब कुछ देन जो है इसी चीज़ की है। तो बहनों एक और बड़ी चुनौती सोशल मीडिया का प्रभाव भी है। आज बच्चे बहुत कम उम्र में ही सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं, और कई बार जो है दूसरों की जीवन शैली देखकर स्वयं को भी कमतर समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल, और देखिए ना कई बार बच्चों में तुलना की भावना भी बढ़ने लगती है,
0: जी
1: वो दूसरों जैसी चीज़ें पाने की देखिए जिद भी करते हैं, और कई बार उनमें जो है ना आत्मविश्वास की कमी भी आने लगती है।
0: जी बिल्कुल, और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी का भी एक दूसरा पक्ष है, जहाँ ज्ञान का खजाना है ये, वहीं कई बार बच्चे जो है गलत लत या भ्रमित करने वाली सामग्री तक भी पहुँच जाते हैं। यानी कि बहनों कहने का ये मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं ना वो आजकल जो ये टेक्नोलॉजी है ना इसका अगर तो सदुपयोग करे तो ये बुरा नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि आज के जो ज़माने में है इससे हम अपने बच्चों को अछूता रख भी नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पर अगर आप बोलते हैं ना बहनों के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है एक गलत होता है,
1: बिल्कुल,
0: तो अगर हम अपने बच्चों को सही वाला अगर सिखाने की कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, ये हमारी जिम्मेवारी है कि अगर
1: जी
0: अपने बच्चों का भविष्य संवारना है तो उन्हें इस जो तकनीकी का जो ज़माना है ना उसको हम जो है सही दिशा में लेकर जाएं।
1: बिल्कुल, और यही वजह है बहनों कि माता पिता की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो
0: जी
1: जाती है इस
0: बिल्कुल
1: विषय में, है ना। बच्चों को सिर्फ मोबाइल देना ही सही नहीं है बल्कि ये देखना भी ज़रूरी है कि वो इसका उपयोग किस लिए कर रहे हैं। जैसे सुषमा ने कहा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, है ना। तो
0: जी
1: बहनों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो है मोबाइल किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है।
0: और देखिए ना बहनों, अगर ऐसी स्थिति हो जाए ना कि बच्चा मतलब चिड़चिड़ा हो जाए, एडिक हो जाए और आपकी बात नहीं मानता है, तो मतलब पहले जो है माता पिता को बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए।
1: जी
0: यदि बच्चा किसी समस्या में है या इंटरनेट पर कुछ गलत देख लेता है तो वो बिना डरे आपके जो उसके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता है, उनसे वो बेझिझक बात कर सके इस बारे में। तो सबसे पहली जिम्मेदारी माता पिता की है कि वो अपने बच्चों को जो है पहले का ज़माना क्या होता था ना बहनों के बच्चे अपने पेरेंट्स से बड़े बड़े तक भी खुल के बात नहीं कर सकते थे या
1: जी
0: सामने ही नहीं आते थे,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज इतना समय बदल चुका है और ये अब रखना भी नहीं चाहिए। मतलब आज कल के समय को देखते हुए बच्चों और पेरेंट्स के बीच में

0: तो देखिए बहनों, आज है सोमवार और परवरिश में आज हम बात करेंगे डिजिटल युग में बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल हो गया है।
1: बिल्कुल।
0: और ना जाने कितनी सारी चुनौतियां जो है हमारे सामने आ गई है बहनों।
1: बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने। देखिए ना, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है और उनकी सही परवरिश ही एक बेहतर समाज की नींव है। आज का समय देखिए तकनीक का समय है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल शिक्षा ने हमारे जीवन को देखिए ना पूरी तरह से बदल दिया है।
0: जी बिल्कुल, जहां तकनीकी ने कई सुविधाएं दी है, वहीं बच्चों की परवरिश को पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण भी बना दिया है। क्योंकि देखिए सपना क्या होता था ना, पहले के बच्चे जो है पेरेंट्स की बात मानते थे
1: जी,
0: और

0: ये होना भी नहीं चाहिए गैप कि हम बात ना करें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि आज के ज़माने में जो है बच्चों की खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, यानी माता पिता का और बच्चों का जो व्यवहार है ना वो दोस्ताना व्यवहार होना
0: जी
1: चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल
1: बच्चों के लिए आपको कुछ नियम ज़रूर रखने हैं, जैसे पढ़ाई के लिए समय जो है आपको मैनेज करना है कि इस समय आप बच्चा पढ़ाई करे, इस समय वो खाना खाएगा, इस समय वो फ़ोन देखेगा, है ना।
0: जी
1: और मतलब इस तरह से अगर आप उनका टाइम मैनेज करते हैं तो बच्चा जो है ना ज़रूर अच्छी अच्छी आदतें सीखेगा।
0: जी हाँ। और इसके साथ साथ जो है बच्चों को खेल कूद, संगीत, चित्रकला, पुस्तक पढ़ने और अन्य जो रचनात्मक गतिविधियाँ होती है ना बहनों, उसके लिए प्रेरित ज़रूर करें। अगर मतलब बहुत सारी हॉबीज़ होती है, हर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी होती है।
1: जी
0: कोई बच्चा खेल में अच्छा होता है, किसी का संगीत अच्छा होता है, किसी की पढ़ाई में रुचि होती है, तो अपने बच्चों के अकॉर्डिंग जो है आप उनकी हॉबी देख कर जो है उसके लिए आप वही काम करने को देंगे, तो वो मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया से जो है थोड़ा दूर रहना शुरू कर देगा।
1: जी हाँ, एक और बात बहनों जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि बच्चे माता पिता की नकल करते हैं।
0: जी
1: अगर हम स्वयं जो है मोबाइल से दूर रहेंगे, है ना, खुद थोड़ा सा समय निकाल कर उनके साथ समय बिताएंगे तो ज़रूर जो है ना बच्चा अच्छे काम सीखेगा।
0: जी बिल्कुल, यानी कि अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो खुद भी हमें मोबाइल थोड़ा दूर रखना
1: रखना
0: पड़ेगा,
1: होगा
0: मोबाइल
1: जी।
0: में व्यस्त नहीं रहना होगा, क्योंकि जैसा हम करेंगे बच्चा तो वैसा ही सीखेगा।
1: जी बिल्कुल
0: और डिजिटल युग में बच्चों को तकनीक से दूर रखना भी संभव नहीं है, जैसे अभी हमने कहा, और ना ही ज़रूरी है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें तकनीकी का सही, सुरक्षित और संतुलित उपयोग जो है कैसे सिखाया जाए।
1: बिल्कुल। तो बहनों देखिए, डिजिटल युग की चुनौतियाँ ज़रूर है, लेकिन सही मार्गदर्शन, प्यार, विश्वास और संवाद के माध्यम से ना हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य जो है वो दे सकते हैं।
0: जी तो बहनों, बच्चों को केवल तकनीकी का उपयोग करना ना सिखाएं, बल्कि तकनीकी का सही उपयोग करना ज़रूर सिखाएं।
1: बिल्कुल। तो देखिए सुषमा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें जो हैं इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगी, है ना,
0: जी
1: थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बच्चों के साथ वो स्पेंड करेंगी ताकि जो बच्चे हैं सोशल मीडिया फ़ोन से वो दूर रह सके, और आउटडोर गेम आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलवाएं, है ना, ताकि वो फिज़िकली भी फिट रह सके, है ना।
0: जी बिल्कुल
1: तो चलिए अब गीत संगीत भी अपनी बहनों को सुनवा देते हैं एक।

0: देखिए सुषमा, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और अब अपनी बहनों से बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर की।
1: जी बिल्कुल, देखिए बहनों, समय बदलता है, तकनीकी बदलती है, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखती है।
0: बिल्कुल सही कहा सुषमा आपने, और ऐसी ही एक आवाज़ है आकाशवाणी की, है ना, जिसने दशकों से देश की धड़कनों, भावनाओं और संस्कृतियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए अब बात करते हैं आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की, जिसने बीते हुए कल की यादों, आज की तकनीक और कल के सपनों को एक साथ जोड़ा है।
0: जी हाँ, आकाशवाणी की शुरुआत देखिए बहनों 8 जून 1936 को हुई, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया।
1: जी,
0: स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, कृषि, संगीत और संस्कृति के प्रसार में आकाशवाणी ने देखिए बहनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: जी बिल्कुल, 1956 में इसे आकाशवाणी नाम मिला और ये देश के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाने लगी। आज आकाशवाणी 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुकी है और ये 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करते हुए देश की लगभग 98% आबादी तक पहुंची है।
0: बिल्कुल सुषमा, FM, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से ये नई पीढ़ी के श्रोताओं से भी जुड़ रही है। देखिए जहाँ पहले श्रोता सिर्फ रेडियो सेट पर कार्यक्रम सुनते थे, देखिए ना, वहीं आज वो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कभी भी और कहीं भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और यही कारण है कि 90 वर्षों की इस यात्रा में आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता और जन सेवा की भावना को बनाए रखते हुए समय के साथ खुद को निरंतर आधुनिक बनाया है। कल की विरासत, आज की तकनीकी और कल की संभावनाओं के साथ आकाशवाणी आगे बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, तो आप भी बहनों यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम और जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: जी।

0: देखिए ना बहनों, किसी ने क्या खूब कहा है, लफ्ज़ों से रिश्ते बनते गए, आवाज़ों से दिल जुड़ते गए, वक्त बदला, दौर बदले, मगर आकाशवाणी के सुर यूं ही गूंजते गए।
1: बिल्कुल बहनों, तो आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का सिलसिला यहाँ पर जारी रहने वाला है। इसी फ्रिक्वेंसी पर आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन अब हमें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

0: अभी आप महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुन रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं समाचारों के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला। दोपहर के 1:11 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, मस्ती भरे गीत, शानदार धुनें और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मस्ती और मनोरंजन से भरे अगले कुछ खूबसूरत पलों के लिए। तो प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं आशिक फिल्म से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। समीर के बोल हैं संजीव दर्शन का संगीत।

0: दोस्तों, प्रोग्राम के बाकी के गीत आपको सुनवाएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
2: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। दोस्तों, दोपहर के हर पल को और भी खास बनाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे हमने लिया है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से। गीत को गाया है सोनू निगम ने, समीर के बोल है नदीम श्रवण का संगीत।

0: दोस्तों प्रोग्राम में अब समय है एक ब्रेक का, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यार

0: नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। गीतों के इस खूबसूरत सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिजा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सुनिधि चौहान और किशन सरगाथिया की, तेजपाल कौर के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत।

दोस्तों, हर गीत अपने साथ एक अलग सा रंग लेकर आता है। कभी दिल को सुकून दे देता है तो कभी मन को झूमने पर मजबूर कर देता है। यही तो है संगीत का असली जादू। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत। समीर के बोल, संदेश शांडिल का संगीत।

गीतों का सिलसिला जारी है दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम चक्रवर्ती का

0: दोस्तों मस्ती भरे गीतों का ये कारवां चलता रहेगा, आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में

0: रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
0: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
3: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
4: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
5: सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में हमारे साथ। और अब आपको सुनवाते एक शानदार नगमा, अनुराधा श्रीराम और अभिजीत की आवाजों में फिल्म है बीवी नंबर 1, समीर के बोल अनुमानिक का संगीत।

दोस्तों, हर धुन अपने साथ नया एहसास लेकर आती है और हर गीत दिल को एक नई ऊर्जा दे जाता है। पेश है एक और बेहतरीन गीत मैंने प्यार क्यों किया फिल्म से। आवाज़ें हैं प्रिया, शान और नीरज की, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत, आवाज़ उदित नारायण की, आनंद बख्शी के बोल जतिन ललित का संगीत।

दोस्तों, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का आज का ये सफर बस यहीं तक। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सब रंग। प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में।

ने मोहित चौहान, काम त्रिवेदी, अतुल मित्तल को सुना। कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं जसपिंदर नरूला की आवाज में।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: कार्यक्रम सबरक में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 2:15 होने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के

0: प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर $83 और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

0: संस्कृति के सम्मान में खेती बाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नज़ीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: पर आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम शिखरों के स्वर। नमस्कार श्रोताओं, देवभूमि हिमाचल की वादियों से उठती लोक धुनों और संस्कृति की सौंधी महक के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम शिखरों के स्वर में, जहां हर गीत में बसती है पहाड़ों की आत्मा और लोक जीवन का मिठास। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस लोकगीत के साथ, जिसे गाया है खूब राम कपूर ने।

लोकगीतों की यही खूबसूरती है कि ये सीधे दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंच जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं एक और मधुर लोकगीत विद्या देवी की आवाज़ में।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। पहाड़ी लोक धुनों में प्रकृति की मिठास बसती है, कहीं नदियों की कलकल तो कहीं वादियों की गूंज सुनाई देती है। एक ऐसी ही गूंज आपको सुनवाते हैं सुखदास की आवाज़ में।

0: कार्यक्रम के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।
1: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
2: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
0: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम शिखरों के स्वर। शिखरों से उठती ये मधुर आवाज़ें हर दिल को एक अलग ही सुकून देती हैं। तो आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत सरिता नेगी की आवाज़ में।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें, बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी FM शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शिखरों के स्वर। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं संतोष कुमार की आवाज में ये लोकगीत।

0: कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र फिर रिले करेंगे। साथ ही FM शिमला 103.7 MHz और DTH सेवा पर भी सुने जा सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर सहित सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज नव निर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों को आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों में शपथ समारोह आयोजित किए गए। कांगड़ा में 18 जून को शपथ दिलाई जाएगी। शिमला में 441 पंचायतों के प्रधानों व उपप्रधानों को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष रूप से मौजूद रहकर नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत विशेष शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने और नशीली दवाओं की बिक्री व सेवन पर रोक लगाने में सहयोग देने का आह्वान किया। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाई। सोलन में हुए समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
3: हमने प्रधानों को कहा है कि जिस जिम्मेवारी और विश्वास से वहाँ की आपके पंचायत की जनता ने आपको चुना है, तो आप खरे उतरेंगे और जो विकास का पैसा आपकी पंचायतों में आएगा उसका एक एक नए पैसे का सदुपयोग होगा और जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा गांव में सबसे निम्न स्तर पे जो व्यक्ति है जिसको सबसे अधिक जरूरत है उसका ख्याल रखा जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
2: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

0: ने ऊना, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने हमीरपुर में शपथ दिलाई। प्रदेश भर में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मेगा मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व राहत एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के सहयोग से मॉक ड्रिल हुई। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 7 उपमंडलों में मॉक ड्रिल करवाई गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि ऐसे अभ्यासों से विभिन्न एजेंसियों के बीच मौजूद कमियों और समन्वय संबंधी चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
1: मॉक ड्रिल हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी एजेंसीज कितनी क्विक हैं रिएक्ट करने में और रिस्पांस करने में। सबसे जरूरी इस बात का आंकलन रहता है कि हमारी लोकल पुलिस फोर्स, होमगार्ड और सब डिवीजन लेवल प्रशासन कितने जल्दी उसमें रिस्पांस देते हैं। जब हम असल में ये ड्रिल्स करते हैं, हमें पता चलता है कि क्या गैप्स हैं, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या कमियां हैं और उसको कैसे पूरा किया जाए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने की सलाह दी है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने का परामर्श दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया है। शिमला में कल शाम क्रिकेट कार्निवाल 2026 के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा छोड़ो खेल खेलो का नारा वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को चिट्टे व अन्य नशों से दूर रहने और खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई।
2: सभी डिप्टी कमिश्नर्स SPs को और जिला के अधिकारी है उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो स्कूलों में जाएं और जागरूक करें ताकि चिट्टे के जो सप्लायर है जो इसमें लत में डालना चाहते हैं उससे युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए। मेरा ये विश्वास है कि हम जल्दी ही प्रदेश में इस प्रकार के जो चिट्टे के सप्लायर है उनको तो ध्वस्त करेंगे ही और अपने समाज को भी चिट्टा मुक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है मोदी सरकार के 12 साल, वैश्विक संकटों के बीच खाद्य उत्पादन में भारत ने गढ़े सफलता के कीर्तिमान। वाचक स्वर है प्रभाष शर्मा का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के उर्वरक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रभावी कदम उठा रहा है। इन्हीं कदमों ने वैश्विक स्तर पर आए बड़े संकटों से हमारे अन्नदाताओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और हमलों के कारण पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा गई। प्राकृतिक गैस और अमोनिया जैसे कच्चे माल की भारी किल्लत हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन भारत सरकार ने शुरुआत से ही युद्ध स्तर पर काम करते हुए हॉर्मूज जल डमरू मध्य के वैकल्पिक रास्ते तलाशे और दुनिया भर के उत्पादकों से सीधा संपर्क बनाकर देश में खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद से विदेशी निर्भरता को कम करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए ठोस नीतियां बनाई गई। पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर 6 नए आधुनिक यूरिया प्लांट्स स्थापित किए गए हैं, जिससे हर साल उत्पादन में 76.2 लाख मीट्रिक टन की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में 25.4 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाले 2 और नए यूरिया प्लांट्स चालू होने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2014-15 में जहां देश का यूरिया उत्पादन केवल 225 लाख

0: मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 314.7 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। साल 2024-25 में भी देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का मजबूत उत्पादन दर्ज किया है। फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का उत्पादन साल 2014-15 के 159.54 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 211.22 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां लगातार नए और अत्याधुनिक प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही हैं। खाद्य उत्पादन और खपत के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। यूरिया और अन्य खादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निरंतर प्रयास किए गए हैं, जिससे भारत खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर सका है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में 6 नई बड़ी यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनसे उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। यूरिया के अलावा डीएपी, एनपीके और एसएसपी जैसी खादों का उत्पादन भी देश में रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है। भारत में पोटाश के ज्ञात प्राकृतिक भंडार लगभग ना के बराबर है और कच्चे माल की उपलब्धता के लिए देश काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए विदेशों में दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। आगामी खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। कृषि व किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2026 के लिए कुल 383.9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले सरकार के पास मौजूदा वक्त में लगभग 195.79 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। आमतौर पर सिर्फ 33% स्टॉक बफर के रूप में रहता था, जहां आज भारत 51% से अधिक के अग्रिम भंडार के साथ मजबूत स्थिति में है। वैश्विक संकट के बाद भी देश का घरेलू उत्पादन 118.15 लाख मीट्रिक टन रहा। अगर इसमें आयात को भी जोड़ दिया जाए तो संकट के बाद से अब तक देश में खाद की कुल उपलब्धता में लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी हुई है।
1: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। विषय था मोदी सरकार के 12 साल वैश्विक संकटों के बीच खाद्य उत्पादन में भारत ने गढ़े सफलता के कीर्तिमान। वाचक स्वर था प्रभा शर्मा का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 MHz पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। दोपहर के 3:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। दोस्तों, पुराने गीतों का जादू कभी फीका नहीं पड़ता। इन धुनों में वो अपनापन है जो सीधे दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं सुनहरे दौर के कुछ सदाबहार नगमे ओल्ड हिट्स प्रोग्राम में। शुरुआत कर रहे हैं आए दिन बहार के इस फिल्म के गीत के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों, पुराने गीत कभी मुस्कान बनकर तो कभी याद बनकर दिल में उतर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं एक और सदाबहार गीत साथी फिल्म से। आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर और मुकेश की मधुर सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ओल्ड हिट्स। सुरों का ये सुहाना सफ़र अभी जारी है दोस्तों। हम लेकर आ रहे हैं एक खूबसूरत नगमा जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म है आरजू, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। फिल्म पूर्णिमा गुलजार के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों प्रोग्राम ओल्ड हिट्स में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगा हर्ज पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोपहर के 3:30 हुए हैं। अब युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युवाणी।

आप सभी को हर्षिता का प्यार भरा नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की डायरी में ना जाने कितने नाम लिखे होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, हम सफ़र। हम इन्हें यूँ रोज़ याद करते हैं, थैंक यू कहते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, हमारी ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे मुसाफिर भी तो मिलते हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, जिनका चेहरा महज अब धुंधला हो चुका है, पर उनका किया हुआ एक छोटा सा काम आज भी हमारे दिल में ज़िंदा है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित है उन अजनबी फरिश्तों के नाम जिन्होंने हमारा साथ तब दिया था जब हम बिल्कुल अकेले थे। तो चलिए, आज के इस खास कार्यक्रम में हम उन अजनबी फरिश्तों को दिल से थैंक यू कहेंगे। आप सभी जुड़े रहिए।

दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अनजान फरिश्तों की। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंसानियत किसी बड़ी किताब में नहीं बल्कि सड़क किनारे चलते फिरते छोटे छोटे पलों में बसती है। भीड़ से भरे शहर में हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा है। कोई वक्त के पीछे भाग रहा है तो कोई मंजिल के, पर इस भाग दौड़ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ दो पल के लिए ठहरते हैं, हमारी बिखरी हुई जिंदगी को समेटते हैं और फिर चुपचाप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यही होते हैं वो अनजान फरिश्ते जो अजनबी बनकर आए, हमारी टूटी हुई उम्मीदों को सहारा दिया और बिना अपना नाम बताए हवा की तरह गुजर गए। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का गीत।

दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत मुश्किल जगह हो गई है। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया आज भी सिर्फ इसलिए चल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर रहा है। वो हाथ किसी गिरते का हुआ सामान उठा देते हैं, वो आंखें जो किसी अनजान को रास्ता दिखाती हैं, वो मुस्कुराते चेहरे जो किसी उदास मुसाफिर को हौसला दे जाते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि इंसानियत की जड़ें आज भी बहुत गहरी है। अब एक आवश्यक सूचना। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2000

26 तक स्वगणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी sec.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे। प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा इसका उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान कार्यों के हेतु किया जाता है। सूचना समाप्त।

स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अजनबी फरिश्तों की। दोस्तों, मुस्कुराते हुए चेहरे अक्सर बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे हमारी जिंदगी बदल जाते हैं। अजनबी

फरिश्ते, ये वे लोग होते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक ऑटो ड्राइवर जो रात के अंधेरे में किसी महिला को सुरक्षित घर पहुंचाता है। सुबह की कड़कती ठंड में जब हम सो रहे होते हैं तब एक कचरा उठाने वाला हमारी गलियों को साफ कर हमें बीमारियों से बचाता है। एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी जो चिलचिलाती धूप मूसलाधार बारिश में सड़क के बीच खड़े होकर हमारा रास्ता आसान बनाता है ताकि हम सुरक्षित घर पहुंच सकें। एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो भारी ट्रैफिक में के बीच भी सायरन की आवाज़ में एक अजनबी मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए रास्ता खोजता है। वे लोग जो बिना ये जाने कि उनका खून किसकी रगों में बहेगा नियमित रूप से रक्तदान करके किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाते हैं। ऐसे कई अनजान फरिश्ते हैं जो बिना किसी तालियों या पुरस्कार की उम्मीद किए इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं।

दोस्तों, किरणें जब सुबह की खिड़की से झांकती है तो एक नई उम्मीद लेकर आती है। लेकिन इस उम्मीद को हकीकत में बदलते हैं वो हाथ जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मदद करने के लिए रिश्ते का होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक साफ दिल का होना ज़रूरी है। वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में महज कुछ मिनटों के लिए आए, उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया उतनी भी बुरी नहीं जितना हम खबरों में सुनते हैं। इंसानियत आज भी जिंदा है और बहुत खूबसूरती से जिंदा है।

दोस्तों समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जाते जाते बस इतना कहूँगी, जिन अनजान लोगों ने कल हमारी मदद की, शायद आज हम उनका शुक्रिया सीधे मिलकर ना कर पाए। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पे इट फॉरवर्ड, यानी आज अगर आपको सड़क पर कोई परेशान दिखे, चाहे वो बुज़ुर्ग हो जिसे रास्ता पार करना है या कोई बच्चा जिसका हाथ से सामान गिर गया हो, तो आगे बढ़िए, उनकी मदद कीजिए। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे हर्षिता को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर. आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ. शाम के 4 बजे हैं. लीजिए सुनिए फिल्म संगीत. फिल्म संगीत के मधुर धुनों के साथ हम हाजिर हैं और ये नगमे सिर्फ गीत नहीं बल्कि जिंदगी के रंग हैं. कभी खुशियों से भरे तो कभी यादों से भरे. तो चलिए शुरुआत करते हैं रास्ते प्यार के फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और SP बालासुब्रमण्यम ने. आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत.

आकाशवाणी एफएम शिमला से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत स्थानीय सूचनाओं के साथ। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 2026 के तहत रंगमंच उत्सव की अंतिम प्रस्तुति के रूप में प्रसिद्ध नाटक रंगमंच का आखिरी दिन का भव्य मंचन ऐतिहासिक केटी थिएटर में किया गया। यह प्रस्तुति दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बन गई। यह नाटक प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार एंटोन चेखव की कृति सावन सॉन्ग से प्रेरित था। नाटक में रंगमंच की दुनिया के संघर्ष, कलाकारों का समर्पण और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें दर्शकों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया।

इस सप्ताह 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि के भी आसार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में 19 जून तक यहां मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 15 व 16 जून को प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने

राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन व सिरमौर जिले के लिए है। इस दौरान गरज व चमक के साथ बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है।

दोस्तों प्रोग्राम का आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म है जुदाई, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों फिल्म संगीत में अभी के लिए इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

रिमवेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं चंबियाली कार्यक्रम।

जी तहा जरे एक बार फिर लेकर ही चंबियाली कार्यक्रम ते स्वागत करते चंबियाली कार्यक्रम सुनने वाले सारे लोगों का। देखो जी सारे का पहले असी कार्यक्रम की जी रूपरेखा इसे दसी देंगे कि भाई अज के कार्यक्रम के अंदर असी क्या कुछ लेकर आए दिन। देखो जी असी दो गलबात लानी तो जोड़े गलबात विषय है जी, पहला विषय है अटल पेंशन योजना, तो इसे कहने असं एक होर भी गलबात लानी कि भाई जल संरक्षण, तो इसे कहने कहने जोड़े असी देश प्रदेश की जी नवी ताजिया भी सुनानी, तो कन्ने कन्ने सुनाने असी चंबियाली जोड़े से लोग गीत। तो देखो जी कार्यक्रम की जी से शुरुआत करते नवी ताजिया कन्ने, पहली खबर है प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अज नवे चुने प्रधाना ते उप प्रधाना जो पद ते गोपनीयता दी दिलाई शपथ, कांगड़े जिले जो छड़ी करी होर सारे जिले में जोड़े से शपथ समारोह हुए आयोजित, कांगड़े जिले में 18 जून

जो होना शपथ समारोह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक डाक्टरी पाठ्यक्रम विच दाखिले वास्ते जड़े से नीट UGC दोबारा इम्तिहान के प्रवेश पत्र किते जारी ते प्रवेश पत्र NTA दी जड़े आधिकारिक वैबसाइट neet.nit.nic.in पर जड़े से डाउनलोड तुसी करी सकते ते ए इम्तिहान जड़े से 21 जून दोपहर 2 बजे का लेकर जड़े से 5:15 तक होनी। ते मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुखू ने नौजवान पीढ़ी जो नशियां का दूर रहने वास्ते दीती सलाह ते शिमले विच कल शामी क्रिकेट कार्निवाल 2026 दे समापन समारोह दे जड़े से मौके पर जड़े से ये गल बोली। ते देखो जी ये तो हुई कुछ नवी ताजिया ते अबे सुना दे एक लोकगीत ते भाग है किशोर कुमार दी।

ਸੋ ਨਖਰੇ ਟੇਡੀ ਮੇਡੀ ਚਾਲ ਤੇਰੀ ਸੋ ਸੋ ਨਖਰੇ ਛੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਵੀਏ ਤੂੰ।

0: डॉक्टर हुकुम शर्मा दे गाए इसी लोकगीत दे कन्ने अज दा चंबियाली कार्यक्रम दा समा होई चले। सारे सुनने वाले का मंगदे इजाजत, नमस्कार।
1: ये था चंबियाली कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम शिमला पर लीजिए प्रस्तुत है मंडियाली कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी शिमला वक्त आतू सारे मंडयाली कार्यक्रम आ रहा। सबनी सुनने वाले जो राकेश शुक्लानी री नमस्कार। आज तुसा जो जी नोईता जी भी दसनी कने तुसा जी लोक गीत भी सुनाने और योग रे माध्यम दे तनाव मुक्त रहना भाई देखा इदे बारे भी गलबात होनी कने प्रधानमंत्री आवास योजना इदे बारे भी तुसा दसना और जनगणना 2027 रा पहला चरण इदे बारे भी थोड़ी जी तुसा गलबात होनी जी कने इदे बारे भी दसना। ता जी सभनी दे पहले असे नोईता जी सुन लें जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दसया गया कि मुल्क हरे मध्यम वर्ग द्वारा राष्ट्र निर्माण मंज जरूरी योगदान दिता गया। सोशल मीडिया पोस्ट मंज दसया कि पिछले एक दशक मंज सरकार द्वारा आम माणुआ रे जीवन स्तर जो सुधारने कठे मौके री बई सुगम पहुँच बुनियादी ढांचा और सस्ती स्वास्थ्य सेवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कने बई स्वच्छ शहर सोगी सार्वजनिक सेवा पर भी ज़्यादा ध्यान भई केंद्रित। प्रदेश री ग्राम पंचायत मंज आज नवनिर्वाचित प्रधान और प्रधाना जो शपथ दीती गई। कांगड़ा जिले जो छड़ी कने 11 जिले मंज शपथ समारोह आयोजित हुए। कांगड़ा मंज 18 जून जो शपथ दीती जांगी। शिमले री 441 पंचायत रे प्रधान और उप प्रधाना जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर द्वारा शपथ दीती गई। इसी मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख भी मौजूद थे। प्रदेश भरा संभावित प्राकृतिक आपदा दे निपटने की तैयारी रा आकलन करने कठे आज मॉक ड्रिल करवाई गई। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन कठे प्रशासनिक राहत एजेंसियां की तैयारियां रा जायजा लिता गया। सब जिले मंज स्थानीय प्रशासन पुलिस होमगार्ड और आपदा प्रबंधन एजेंसियां रे सहयोग दे मॉक ड्रिल हुई। प्रदेश रे सब दे बड़े जिले कांगड़ा रे 7 उपमंडल मंज मॉक ड्रिल हुई। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी शिल्पी बेकटा द्वारा दसा गया कि भई एड़े अभ्यास होने बहुत जरूरी है। किन्नौर जिले री प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा इदी साला 1 जुलाई दे 30 जुलाई तक आयोजित होंगी। समुद्र तल दे करीब 19,850 फीट री ऊंचाई ऊंची जगह पर एक किन्नर कैलाश शिवलिंग प्रमुख धार्मिक और साहसिक तीर्थस्थल आ। ता जी ये ता जी नोईता जी थी जी। तो हम सुनना जी आसा माता री भेंट सुना जी तुसे पहले।

जी तुसे सुनी माता री भेंट, आवाज थी राजेंद्र कुमार शर्मा री। तई देखा भाई जनगणना 2027 रा पहला चरण शुरू होने वाला जी। कने जनगणना किस भी मुल्क हरी विकास री आधारशिला हुई। इधर माध्यम दे सरकार जो मुल्क हरी जनसंख्या भाई आवास शिक्षा रोजगार सामाजिक और आर्थिक स्थिति री सही जानकारी दी जाए। कने जानकारी आने वाले वक्ता कट्ठे भाई योजना

नित्य जोब नाणे मंज साई की। भारतीय अधिकार जनगणना 2027 मंज मुल्क हरी मकानारी सूचीकरण और आवास गणना से संबंधित भई जानकारी मंज लीती जानी। यदि प्रथम चरण मंज गणनाकर्मी घर जाई कने भई मकाना और सुविधा के बारे जानकारी लेंगे और प्रथम जो प्रथम जानकारी ये जुटाई जानी भई देखा भाई किस इलाके में जो कितने मकान हैं, कितने पक्के कितने कच्चे कने भाई पेयजल सुविधाई शौचालय और बिजली गैस और इंटरनेट जड़ी सुविधा के बारे में जानकारी लेते जानी। जनगणना की प्रक्रिया में भाई डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन प्रणाली अपनाई जानी कने और जी देखा शिक्षा स्वास्थ्य और परिवहन रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जड़ी कई सारी योजना कठे भी देखा ये जो आंकड़े होने ये आधार मने जाने जी। ताजी देखा आवासा गल बात करनी भाई प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है भाई आशा जो इतनी जानकारी भी होनी जरूरी। प्रधानमंत्री आवास योजना भाई एक केंद्र सरकार एक योजना है। इधर मकसद भाई जिन्हा मानु घर कच्चे कहने भाई ग्राम में कोई भी मानू गरीब आ जिन्हारे घर कोई कमाने वाला नहीं आ कहने और आज तक देखा भाई गरीब रे देखा जो घर नहीं बन रहा तिस मानू रहा कहने किसी कारण दे प्राकृतिक आपदा के कारण घर डली जाएँ या तो देखा आगे दे जली जाएँ अड़े मानू जो सरकार द्वारा घर बनाने कट्ठे आर्थिक जो सहायता ही सिद्धी जाए कने कोई भी मानू जिन्हरा नाम देखा पर कोई भी घर नहीं आ कने से कच्चे मकान ज रहे कने भाई बीपीएल जे ता से मानू देखा भाई प्रधानमंत्री आवास योजना तहत आवेदन कर सकाएं कने इधरा योजना रा फायदा ले सकाएं कने जी देखा अगर इद मंज भाई जड़ा जनानिया एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांग विधवा जनानिया भाई कोई मानू जो गंभीर रोग आ कने भाई जो प्रधानमंत्री योजना तहत घर बनाने जो भाई अड़े मानू जो आर्थिक स्थिति जो देखी कने आर्थिक सहायता ले सकाएं भाई कने मानू सरकारी कर्मचारी ना हो कने सरकारी नौकरी री पेंशन ना लेंदा हो भाई प्रधानमंत्री आवास योजना कठे इदी दे पहले कोई भी देखा सरकारी सहायता ना ले रही हो कने सरकारी आवास जो देखा जो बनना से भाई में जो आर्थिक सहायता पहले ना ले रही हो कने इत योजना रे तहत मकान घर रे जनानिया रे नाम पर होगा जो सहायता सरकार द्वारा दी जानी कने भाई और इदी योजना रे तहत घर बनाने रे वक्ता भाई जेबे इदी सहायता रे अनुसार जो घर बनना से भाई इद में शौचालय होना भी जरूरी आ कने धुआं रहित चूल्हा भी बनना जरूरी आ कने भाई पीने रे पानी री सुविधा भी भाई दी जानी कने ग्राम में कई बारी अड़े मकान है भाई जिद मकान भाई देखा खतरा वहाँ कने भाई और गासा दे भाई पानी टपकदा रहा जर्जर हो गिरे तो भाई अड़े केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाई अड़े मानू जो भी इद योजना रा फायदा लेना जरूरी आ कने अड़ा जी भाई इदी कठे देखा आसे पंचायत जाई सकाएं और अपने जो आसरे प्रधान है तिन्हें दे पता कर सकाएं कने वीडियो ऑफिसा भी जाई सकाएं और आजकल तो देखा जी नवा जमाना और आसे फोन भी सर्च कर सकाएं कने आवेदन फॉर्म मंज भाई देखा जो जानकारी से सही बनना पाई जमीन रा कागज मकाना रा पर्चा कने आधार कार्ड पैन कार्ड भाई बैंक ज खाता इधरा विवरण देना भी जरूरी हुआ ताजी ये ता थोड़ी जी जानकारी थी जी ता सा सुनना जी एक लोकगीत ताजी सुना ये लोकगीत।

कने देखा फायदा हुआ और स्वस्थ बन रहा नहीं। कने एड़ा हा भाई योग भारत री प्राचीन जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरी। कने योग भाई आशा रही देखा भाई जीवन कठे काफ़ी जरूरी हो गया। कने और एड़ा भाई योग शारीरिक व्यायाम कने सोगी बल्कि शरीर मन और आत्मा रे बिचा मंज संतुलन एक जीने री कला है भाई। कने आज पूरे विश्व रे मुल्क मंज योग रे फायदे भाई देखा मानू लेना लग रहे। कने भाई योग दे देखा मानू जो शरीर असे स्वस्थ रहा कने मन जो शांति मिलाई और संतुलन रहा भाई। कने जीवन जीने री इच्छा भी जागाई भाई। कने भाई ऐसे अगर योग करते रहो तो कने भाई हर रोज़ योग रा अभ्यास करने दे भाई तनाव कम हो सका। कने मन अंदर भाई सही ऊर्जा रा संचार हुआ कने तनाव रा जो सबसे बड़ा प्रभाव आसा रे मन पर हुआ। जे ब्यास परेशान हुए या तो चिंता में जो हैं आसा रे देखा मन शांत हो जा भाई। अड़े टाइम योग और ध्यान मन जो स्थिर रखा और भाई देखा गहरा सांस लेना और छड़ना इध जो प्राणायाम बोला है कने भाई मानसिक तनाव जो कम करने में जो लाभकारी मनाया जा। कने और आसन शरीर जो भाई लचीला और स्वस्थ बनाए। कने भाई ताड़ासन भुजंगासन ब्रज आसन कने देखा पवन मुक्त आसन और अड़े आसन दे देखा भाई शरीर जो फायदा ही हुआ कने मानसिक शांति भी मिलाई। जी भाई देखा आज के टाइम में देखा योग दे आसा देखा फायदा लेना बहुत जरूरी है। कने सुविधा भी आसा वाले देखा हर मानू वाले भाई काफ़ी ज़्यादा है। कने दी कने सौगी सौगी भाई आसा जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना जरूरी है। आजकल हर दिहाड़े योग करने दे भाई कने शरीर जो नई ऊर्जा मिलाई कने और जड़ा से ध्यान लगाए तो ध्यान देखा आत्मविश्वास भी बढ़ा कने तनाव भी कम हो जा भाई। यही कारण है भाई ध्यान और योग भाई एक आसरा भाई जीने रा हिस्सा बनी गया भाई। कनेडा जी भाई देखा 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा। योग जो भाई जो अपनाने समझने में जी देखा कोई भी साधना की जरूरत नहीं ना ही देखा भाई ये कोई एड़ी अपनानी जो कठिन है भाई। हर दिहाड़े थोड़ा थोड़ा योग करना ठीक रहा कने अनुशासन सही सोच हर दिहाड़े भाई पहले शुरुआत थोड़े दे करनी जरूरी ते भी हर दिहाड़े 20-30 मिनट तक देखा से योग अभ्यास कर सकाए कने आ सारी इधे देखा आ सारी पूरे जीवन शैली आ सारी जो बदली जाए तनाव जीवन रा एक हिस्सा हो सका कने एड़ा भाई परमाणु जो अपने ऊपर जो तनाव आसे होना देना ठीक नहीं आ। योग दे आसा जो भाई तनाव दे मुक्ति और स्वस्थ रहना कने भाई अपनी जिंदगी सही जीना और तनाव दे बचना कने सही जीवन जीना भाई योगा दे आसरा हो सका। कने हर दिहाड़े योग और ध्यान जो भाई आसे अपनी जिंदगी मंज शामिल कर सकाए आसे शारीरिक मानसिक भावनात्मक रूप दे और ज़्यादा स्वस्थ हो सकाए कने खुश रह सकाए। अगर आसे भाई देखा थोड़ा थोड़ा योग करते रहेंगे और योग अभ्यास से हर दिहाड़े आसे रोग जो भी देखा कम कर सकाए आसा अंदर जिंदगी जीने री इच्छा भी बधी जाए भाई। कने भाई आसा रे जिंदगी मंज

भई विश्वास प्रेम भाव कने भई एक ही दूजे रे माणू रे प्रति सही सोच भी आ सारे दिखा भई आई जाई। ताजी ए ताजी थोड़ी जी योगा बारे जानकारी थी जी। ताजी देखा भई एक जानकारी आई रही भई जो सोचना ही भई सर्वसाधारण जो सूचित किया जहाँ भाई देखा मंडी जिले रे राजकीय फल संततियों प्रदर्शन उद्यान जो ही से भाई नीलामी होनी कहने भाई नीलामी में जो भाग लेने वाले जो मानू हैं भाई देखा फसल का निरीक्षण कार्य में जो कार्यालय में जा सका है कैन इसी बारे जानकारी भी ले सका है कहने भाई बोली देने वाले मानू जो भाई देखा बगीचे रे ना देखा ना उन्हें सामने दसी गिरी ध्रुव राशि और पहले जमा करनी जरूरी कहने भाई और मानू रे नाव पर बोली छूट गई और ध्रुव राशि तेस टाइम देखा वापस कर दी जाएंगी कहने जिस मानू रे नाव वाली जो भाई बोली छूट गई से भाई आधी धनराशि तेस टाइम देनी पौगी कहने बोली री आधी धनराशि फलारी तुड़ाई भाई शुरू होने के बाद प्रभारी जो फलो ध्यान सक्षम अधिकारी वाले भी जमा करवानी होगी भाई कहने प्रभारी उत्तरदायित्व होगा कहने और ठेकेदारा दे नीलामी री बकाया राशि फल तोड़ने दे पहले भई ले लेनी कहने जिस ठेकेदार ना हो बोली छूट गई भई से कुल बोली री दिखा से आधी धनराशि भई तेबे देने जो असमर्थ हुए हैं से ध्रुव धनराशि जब्त कर लेती जाएंगी कहने ठेकेदार बेड़ा आदि बचरी धनराशि प्रभारी जो फलारी भई देखा से तुड़ाई आरंभ करने दे पहले कने और नीलामी री आदि जमा धनराशि सरकारी खजाने मंज जमा कर दी जाएंगी कने जिस ठेकेदार नाव मंज भी देखा बोली छूट गई और ध्रुव राशि संबंधित प्रभारी फल तुड़ाई भई जिस नामा जे खत्म होनी तिस्टमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वापिस भई दीती जाएंगी कने जिस व्यक्ति रे नाम बोली छूट गई से भई देखा जो फल फसल जो ठेकेदार जो देना और नीलामी रा अधिकार नहीं होगा कने भई ठेकेदार जो फलारी जो जो अतिरिक्ति जो चीज़ पर कोई अधिकार नहीं होगा कने से सिर्फ भई जो बगीचे जो फल लग रहे तिदरा ही जो अधिकार होगा नीलामी होने के बाद भई उद्यान फल फसल जो किसी भी प्रकार जो प्रकृति प्रकोप दे क्षति हो जाओ तीसरा दायित्व तो उद्यान विभाग रा नहीं होगा। ताजी ये था थोड़ी जी जानकारी थी तासा सुनना जी एक ये सुना जी दूसरे ब्यागड़ा सुना जी तल्लेवा जी।

जी तुसें सुनेआ ब्यागड़ा अवाज थी किशोर कुमार बंटूरी। ता इदी सोकी जी मंडियाली कार्यक्रम रा वक्त पूरा लग रहा। आगे दवा नमस्कार।

मंडियाली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। लीजिए प्रस्तुत है पंगवाली कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM 103.7 MHz पर भी सुने जा सकते हैं।

आकाशवाणी शिमला बिल्दी 5:21 का 2 सेकंड भरे पेश है तो अपना मनपसंद पंवाड़ी बोली कार्यक्रम। पंवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जने ब्रह्मदत्त शर्मा तरफा बिल्दी नमस्ते। जी तो सुनने वाले अखबार फिर तुम सुभियाणी का स्वागत है। स्वागत का तस्तरे भी हैं कार्यक्रम सुनने को भले इसे रेडियो पुट मोबाइल पुट चलती मोटर कार अंतर सुभियाणी के स्वागत है। कार्यक्रम अंतरस बदियाने लोकगीत आते ही आते तो आज के जो कलाकार है से भुवनेश कुमार प्रेम सिंह तथा तन है साथी के आवाज़ अंतरा से बदियाने लोकगीत सुनाने और साथ ही साथ नियामत हुसैन तथा तन है साथी के आवाज़ अंतरा से बदियाने लोकगीत सुनाने आई। कार्यक्रम अंतरा से गलबात जी करनी अस्ती से नकदी फसलें और बाजार पुठे बात करनी अस्ती साथ ही साथ बीवी जी राम जी योजना यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अथ पुठे भी से गलबात करनी है। और कार्यक्रम में शुरुआत था से जे इत से आज कने मुख्य समाचार जे करनी है तो समाचार सुनान के पहले असे जे एक संदेश अस्ता जनगणना 2027 चलो रही तो जनगणना 2027 जे प्रथम चरण अस्था से मकान सूचीकरण तथा मकानी के गणना आयोजन जे अस्ता तो हिमाचल प्रदेश राज्य निर्धारित जे तिथियाँ अस्ती से तन्हे अनुसार 16 जून 2026 के 15 जुलाई 2026 तक होना अस्ता। अथंतर ठीक 15 दिन पहले यानी 1 जून 2026 के 15 जून 2026 तक स्वगणना यानी विकल्प भी अथंतर दुतोरा हिमाचल वासी दिया उपलब्ध रहना अस्ता साथ ही साथ जे निवासी अस्ते से SE.census.gov.in पोर्टल पुट खाई करके अपू जानकारी जे इत से खुद भरी सकते हैं। जनगणना 2027

27 से जे कम आसता से डिजिटल माध्यम जी संपादित होना आए, जैसे अंतर्गत जे प्रगणक तथा पर्यवेक्षक हस्ते से मोबाइल डिवाइस तथा निर्धारित एप्लीकेशन पुठे एप्लीकेशन माध्यम जे सूचनाएं जे इत से संकलित कर सकते। प्रथम चरण जे आस्ता से मकानी की स्थिति, परिवार तने उपलब्ध सुविधाएं तथा परिसंपत्तियां दी संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछियन आस्ते। जनगणना अधिनियम 1948 अंतर्गत जनगणना पुट दितोरी सभी जानकारी जी तसे गोपनीय भूणी अस्ती और साथ ही साथ जे उपयोग केवल नीति निर्माण तथा अनुसंधान हेतु दी भूणा आए। तो अथी कुछ जनगणना 2027 है खास जानकारी। तो कार्यक्रम में जो शुरुआत है आज के समाचार जे कने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तने पिछले 12 साल के जे स्वास्थ्य सेवाएं जे जुड़ा रहा जो बता रहा विस्तार बड़ा विस्तार बता रहा। प्रदेश अंतर 11 जिले अंतर नव निर्वाचित प्रधान तथा उप प्रधान आज नहीं तने शपथ। कांगड़ा जिले अंतर भुणे 18 जून जे ऐ समारोह। विपक्षी नेता जयराम ठाकुर बोलू कि राज्य अंतर अपराध के जे घटनाएं अस्थि से बढ़ने लगोरी और बड़ी चिंताजनक विषय है। आपदा प्रबंधन दी तैयारी आकलन कन दी प्रदेश भर के आज जेता मॉक ड्रिल वहाँ आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह अगर गलों की प्रदेश जे ग्राम पंचायती तथा आज नव निर्वाचित प्रधान तथा उप प्रधानी के आज पद तथा गोपनीयता जे शपथ जे तसे दिवाई। कांगड़ा जिले छड़ी करी के सभी जे 11 जिले अस्ते शपथ ग्रहण समारोह जे अस्ता तसे आयोजन वहाँ। कांगड़े अंतर 18 जून अंतर शपथ द्वीण अस्ती प्रधान तथा उप प्रधान्या। शिमले अंतर 441 पंचायती के जे प्रधान तथा उप प्रधान थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तने शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू विशेष रूप से मौजूद रह करके नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियां जी नशे खिलाफ जयता से अख अभियान चलाना कि भाई एंटी चिट्टा अभियान तहत विशेष शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री प्रतिनिधियां दी अपने अपने जे क्षेत्र थे तन्हें नशे खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाए और जे युवा अस्ते से जागरूक हुई करके नशीले पदार्थी के नशीली दवाई के बिक्री तथा सेवन पुट रोक लाने दी सहयोग आह्वान किया जनता के यहाँ। हुरी खबर ये कि नीट प्रवेश पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA जे स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम दे दाखिले अंतर नीट UG पुनः परीक्षा जे प्रवेश पत्र जारी कर छोड़े। विशेष पत्र NTA जे ऑफिशियल वेबसाइट हस्ती neet.nta.nic.in पुट गए करके डाउनलोड भूई सकते और एज ए परीक्षा अस्ती 21 जून दोपहर 2:15 तक भूनी अस्ती। NTA जे विद्यार्थी अस्ते प्रवेश पत्र डाउनलोड करके पहले रिफंड दी अपो बैंक अकाउंट जे इतना बैंक खाते पुट गए विवरण सत्यापन करके सलाह दतोरी और प्रवेश पत्र जे अस्ते तसे सूचना बुलेटिन अंतर दतोरी निर्देश जे इतना ध्यान जे पढ़ करके तसे परामर्श जे इतना करे भाई। निछोटी खबर ये कि क्रिकेट कार्निवाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू युवा पीढ़ियां दी नशे के दूर रह करके खेल गतिविधियां अंतर जुड़न दी आह्वान किया। शिमले अंतर ही वेदियां जी आई क्रिकेट कार्निवाल 2026 समापन अवसर पुठे तने बोलू कि नशा छोड़ो खेल खेलो अजय नारा आए तो वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दुहिया पीढ़ियां दी जे अत्यंत महत्वपूर्ण आस्ता। मुख्यमंत्री युवाओं दी जे नौजवान अस्ते युवा अस्ते तने दी चिट्टे तथा अन्य जे नशे बड़े नशीले पदार्थ अस्ते तने क्या दूर रहने आह्वान भी किया। साथ ही साथ जे खेल अस्ते तने खेलने दिए और साथ ही साथ जीवन जे खेल जे अस्ते जीवन अख अभिन्न हिस्सा आए अणी शपथ जे तने दिलवाई। अथी कुछ प्रदेश समाचार। भुवनेश कुमार आवाज अंतर्वेदन लोकगीत है तो सुने लोकगीत फिर लें तुझे होरी गलबात।

भुवनेश कुमार आवाज़ द्रविड़ ने लोक गीत हैं सुने बड़े सुनो जरूर आनंद नियर बोना सुने बड़े में तुझे गल आनलो थे जी राम जी योजना यानी ऐसे आधिकारिक जो नौ वस्तु विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वी बी जी राम जी केंद्र सरकार द्वारा जे बख नई महत्वाकांक्षी ग्रामीण रोजगार योजना अस्ती और ऐसी योजना अस्ती संसद या पारित विकास विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 तहत पुरानी मनरेगा योजनाई स्थान जयता ऐस नैना अस्ता और 1 जुलाई 2026 के पूरे देश जे ग्रामीण क्षेत्र अस्ते तेने लागू होनी अस्ती ऐसी योजना अस्ती ऐसे मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र अंतर रोजगार अवसर पैदा करने आई रोजगार बढ़ाना अस्ता

आजीविका जे अस्तित्व से सुरक्षित और जे ग्रां अंतर जे स्थायी तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे तसे निर्माण जे तसे कनाए। जी राम जी योजनाएं मुख्य विशेषताएं ये कि 125 दिन जे रोजगार गारंटी आई सुबह क्या पहला मतलब ऐसे विशेषता। पहले मनरेगा तहत प्रति परिवार साल अंतर 100 दिन जे गारंटिड रोजगार जे इतना सह देता था। जतंतर की नई योजनाएं अतंतर बढ़ाई करके 125 दिन जे इतना से के रहे आई। बेरोजगारी भत्ता भी हतीन आस्ता यदि कैसे मजदूर अगर कम दी आवेदन करने 15 दिन भीतर अंतर कोई कम ना हतीन था तो सरकार जे अस्ती सरकार जे तसे तसे अनिवार्य रूप जे रोजगारी बेरोजगारी भत्ता जे तसे भी अधीन आस्ता। बजट और फंड शेयरिंग का हिसाब होना आस्ता एज ए योजना आस्ती सरकार जे ता 1,51,282 करोड़ रुपए अधिक जे भारी धनराशि जे तसे प्रस्तावित की रही। जतंतर की केंद्र तथा राज्य अंतर बीच अंतर जे खर्च आस्ता से अनुपात 60:40 और पूर्वोत्तर हिमालय राज्य दी 90:10 रहना आस्ता।

एज ए योजना अस्ति सरकार जयता 1,51,282 करोड़ रुपये अधिक जे भारी धनराशि जे अत से प्रस्तावित केली। जस अंतर की केंद्र तथा राज्य अंतर बीच अंतर जे खर्च हस्ता से अनुपात 60:40 और पूर्वोत्तर हिमालय राज्य दी 90:10 रहन हस्ता। पंचायती के अधिकार जे अस्ता तसे का हिसाब होना अस्ता ग्राम अंतर विकास जे त पूरे प्लान अंतर प्लान जे कम होना अस्ता तरह चयन जे त खुद ग्राम पंचायत और ग्राम सभा तय करती कि यथंतर केंद्रीय जे योजनाएं अस्ती से थोपीण नहीं बल्कि हाईटेक तथा पारदर्शी भूणी अस्ती। योजना अंतर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी कन दी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और रियल टाइम मोबाइल GPS ट्रैकिंग जे उपयोग होना आस्ता यानी कोई भी गड़बड़ झाला जे तसे भूल न सके खास करके हाईटेक पारदर्शिता यानी के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तसे प्रयोग जे तो भरपूर मात्रा यंत्र का ना आस्ता। और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय अनुसार जे ता योजना तसे अंतर्गत मुख्य रूप जे चार कार्यक्षेत्र पुठे फोकस होना आस्ता कौन कौन से भूणे अस्ते से जल सुरक्षा और जल संरक्षण यानी तालाबी के जीर्णोद्धार और सिंचाई जे कुली के निर्माण और चेक डैम बनाना। ग्रामीण बुनियादी ढांचा ग्रामीण सड़कें नाड़ियाँ और सामुदायिक भवन खेल तथा मैदान जय तथा निर्माण जय तसे कनाए। आजीविका संवर्धन बागवानी और दीदीवाड़ी योजना पशु शेड गौशाला मुर्गी पालन मत्स्य पालन ऐसे अंतर जी से सहायता देनी अस्ती। जलवायु अनुकूलन और आपदा सुरक्षा दी प्राकृतिक आपदाएं और तथा सुरक्षा पर्यावरण अनुकूल परिसंपत्ति के निर्माण जस्ता था से भी का नास्ता। कारण ये कि जे खास चीज़ पुठने चौ चीज़ें पुट चौ कम पुठने फोकस किया रहा से अस्ता जल सुरक्षा तथा जल संरक्षण ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आजीविका संवर्धन तथा जलवायु अनुकूलन और आपदा सुरक्षा एने चीज़ें पुट ज़्यादा ज़्यादा कम होना आस्ता कम है ये नहीं हो रहे भी सरकारी जितनी भी योजनाएँ हैं तसे इकट्ठा करके PM आवास योजना जल जीवन मिशन ऐसे साथ जुड़ करके जे कम करना है ताकि अथंतर जितने भी मजदूर अस्ते तन्हें उपयोग तन्हें योजनाएं के तहत पक्के घर और पानी पाइपलाइन बिछाने जिन्हें स्थायी कम कन पुट भी फोकस रहना अस्ता ऐसे सरकारें कुछ महत्वाकांक्षी स्कीम अस्ती और अथंतर हो रहे भी डिपार्टमेंट जे तो हो रहे भी विभाग जे तसे साथ जुड़ो रहे ताकि कुछ चीज़ अंदर कमी पेशी न रहे तो सरकार जे तो मदद कर लगो रही और बढ़िया तरीके जे जे आधिकारिक रूप जे पहले 100 दिन रोजगार थिया अब 125 दिन रोजगार जे तसे सरकार दैन गोरी मदद कर गोरी और अथंतर जे ता जे हैं बेरोजगार और खास करके मजदूर वर्ग अस्ता तेने अस चीजी फायदा जे तसे हथियन अस्ता मौके गल थी मैं दुहे जे लाई ता प्रेम सिंह तथा तेने साथी की आवाज़ अंतर हुर लोकगीत है सुने लोकगीत आनंदनीय फिर लें दुहे जी हरी खलबात।

प्रेम सिंह तथा रतने साधी के आवाज़ इंद्र बदे ने लोकगीत हैं सुने बड़े सुनो जरूर चाव ने रहूँ सुने बड़े में तुम्हें जे गल लड़न थी कि जे हैं नकदी फसलें और दस जे जे बाजार जे जुड़ रही जे गल अस्ती दस पुठियाँ से गलकन थी नकदी फसलें जैसनो अस कैश क्रॉप्स बोते के मतलब अंग्रेजियाँ और व्यावसायिक फसलें भिनती है जिन्हें अंतर किसान जे अस्ते ते इसे आपू उपभोग दी नहीं बल्कि अपने उत्ती न कदे से युद्ध बल्कि बाजार दी बाजार क्या बेची करके मुनाफा कमाई करके तसे उद्देश्य जे अजे फसले जे तसे उगाते ऐजे फसले अस्ती कृषि क्षेत्र अंतर खास करके व्यवसायीकरण और किसानी के जे आर्थिक स्थिति तस मजबूत कन दिया महत्वपूर्ण भूमिका जे तसे निभाते भारत अगर गल करूँ पूरे देश अगर गल करूँ तो व्यावसायिक फसलें और खेती जी अस्ती ता भूंती भूंती साथ ही साथ उद्योग है कच्चे माल आए तसे पूरे तरीके से इस्तेमाल करके कम जाए तसे भूनता तो भारत अगर गल करूँ तो जैसे गन्ना आए तो चीनी गुड़ इथेनॉल उत्पादन ऐसे मुख्य स्रोत हस्ता फिर कपास भूंगे कपड़ा उद्योग अंतर से महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती और कच्चा माल जे तसे बनाई करके जे बनाते फिर चाय आई कॉफ़ी आई पेय पदार्थ जथंतर की प्रमुख बागवानी फसलें अस्ती फिर तिलहन आई सरसों मूंगफली सोयाबीन जैसे उपयोग करके तेले जे खीण तेल जे तस बनाते जूट जने जे अस बोरियाँ बनाते रस्से बनाते पैकेजिंग सामग्री जे तक कम इनता और तंबाकू है ना वाणिज्य और सिगरेट उद्योग दिया ऐसे कम जे तक भूनता लेकिन आपू छोटे नेक पाएंगे अगर हम गल करूँ तैड़ी जे ता जे हैं

खास करी के पैंगे थांगी आई, काला जीरा आई, मीठी पतीश आई, कौड़वी पतीश अस्ती है ना जी, गुरुणू आई, गुच्छी आई, और श्वान आई, और काला जीरा आई, और आपका ये जैसे शिलाजीत होते दसना जे पहाड़ी शिलाजीत होती। तो कहने मतलब जे जे खास करके दालें आई, राजमा आई, और अपना मटर रस्ते आलू आई, इन्हें जे मतलब जे किसान रस्ते तस उत्पादन करके से जे तो दो पैसे कमाते। तो कमाने जे साधन अस्ता और खास करके जैविक खेती अगर अस करें तो ऐप भी सुरक्षित रहन अस्ते, और साथ ही साथ हैं देश और प्रदेश भी जे तैसे सुरक्षित रहना इसका। तो आर्थिक स्थिति मजबूत कन दिया महत्वपूर्ण भूमिका जो अस्ती था जे नकदी फसलें अस्ती से निभाती। और अगर अस गल करूँ जे मतलब खास करके बोते ना कि भाई MSP जे मूल्य आई, तो किसान के जे ठेकेदार अस्ते या सरकार जे अगर अस तस सही मतलब रेट है या सही तसे दाम अस्ता से अगर ठीक थे तो बिचौली के जे प्रभाव अस्ता से कम होना अस्ता। कई बार जे स्थानीय बाजार अस्ते तन्हें मतलब अगर सही तरीके जे किसान अगर सही मूल्य हतेंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं हतें तो जे बिचौलिए भूनते से सही मूल्य न देते, और बिचौलिए जे तो चथंतर चौर पैसा खुद अपुखाई करके जे किसान अस्ता तसे नुकसान करके से ख़त्म कर सटे। तो मतलब जे मुनाफा है से नहती था। और सरकार जे स्थिति अगर थोड़ी नहीं कोशिश ही करल कि जे स्टोरेज अस्ती भंडारण क्षमता तसे कमी जे अस्ती से दूर करल, खास करके फल आई सब्जी आई, और अगर जल्दी ख़राब होने वाले अस्ते तो इन्हें बचाने दी अगर अस कोल्ड स्टोरेज जे अगर अख बड़ी समस्या अस्ती अगर से समस्या अगर ठीक होएंगे तो हैं जे किसान अस्ते बढ़िया तरीके जे मतलब फसलें उत्पादन भी कर सकते, और साथ ही साथ जे मतलब व्यापारी लोग अस्ते और इन्हें जे आर्थिक स्थिति जे किसानी के जे आर्थिक स्थिति है से मजबूत जे इतने से ताई भूं सकती अगर अस कहीं जे भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी अगर बन गई है, कोल्ड स्टोर अगर बन गया अजय बाधा अस्ती अगर ख़त्म होंगे तो किसान जे तो दो पैसे फायदा जे हतीना ही हतीना अस्ता। तो नकदी फसली और खास करके बीज आई, खाद आई, कीटनाशक जे तसे महंगे भूण गोरे तो तस पुठ जे लागत तथा ऋण तो अचीज जे तो किसान जे भारी निवेश जे तसे करना ही था, इसलिए सरकार इस पुट भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जे नकदी फसलें अस्ती और बाजार अस्ता कैसे हिसाब तारतम्य आए अखिर जे जरूरी गलें अस्ती तो इस चीज़ पुठ भी से ध्यान जे तसे देना चाहिए। मौके गल थी नुछुटी गीत नियामत हुसैन आवाज अंतरे तो सुने गीत।

पंगवाली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं विद्या देवी की आवाज में ये लोकगीत।

लोकगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं

0: अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
1: चिट्टा को हम जन से हो जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। का पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को, युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जन सेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में किन्नौर जिले के जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जन प्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया है। वे आज सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के सायरी घाट में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव, ज्ञान व जीवन मूल्यों से समाज को मार्गदर्शन मिलता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व

0: नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है महासुवी कार्यक्रम।

महासवी कार्यक्रम सुनने वाले के कमला शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, ऐसा आज के विषय जो बात करनी से है पवन ऊर्जा दिवस और जननी सुरक्षा योजना, और इतने साथ साथ है प्यारे प्यारे लोकगीत और खास खास खबरें भी होनी। पर ऐसे सबसे पहले कर लो जितने तक जो है आज का दिन खास है। तो पवन ऊर्जा एक लोकप्रिय नवीनीकरण ऊर्जा है जे तेरा जीवाश्म ईंधन जलाने की तुलना दे पर्यावरण ना पांदे जो है कम बुरा प्रभाव पड़ो। तो ऊर्जा एक ही प्रकार आ रही साफ सुथरी ऊर्जा है। इतेरी शुरुआत टर्बाइना साथे करी जाओ और अवारी गतिज ऊर्जा संरचना दे लगे जनरेटरों के ए घुमाओ जितेरी वजह से बिजली जो है बनो। और आजकली पवन टर्बाइन अड़की आवाज है जो है बिजली दे बदलने दे बहुत सक्षम है। इतरी तक ए ऊर्जा जो है दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होने लग रही। तो इतरा उपयोग पहली बारी स्कॉटलैंडा दे जुलाई 1887 दे करा गया था और इतरा सूचक हमेशा तिस तरफा घूमो जिथो के जो है आवारा रुखो। तो मौसम वैज्ञानिक और किसान आवारी दिशा दे आगामी मौसम तूफान या बरखारा अनुमान लगाने रही तक इतरा उपयोग करो है। तो हवाई अड्डे दे जहाज चालकों के सुरक्षित उतरने और ठीक आवारा रुख लड़ेरी तक जो है ये काफ़ी मददगार भी सिद्ध हो। और नाविक और पाल नाविक चलाने वाले जो आवारी दिशा तक ठीक तरह साथी ले जाओ इतरा जाए जा लो ते तेरा भी वो सहारा बनो। तो पवन ऊर्जा एक तो है यदि कोई फीस नहीं लगती निःशुल्क है और बिना पैसे से बनो सिर्फ अवारा रुख ए दे काम करो। तो आसारा देश जो है विश्व स्तर पांदे तीजा सभी ते बड़ा एते ऊर्जा वाला देश बना चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ते बाद 2021 दे भारत दे इदे जो है काफ़ी काम हुआ। तो पवन ऊर्जा साथ है एक तो देखो वातावरण आसारा प्रदूषित नहीं होता और क्योंकि इतने धुआं नहीं निकलता तो कोई इतने जो है हानिकारक गैस भी पैदा नहीं हो जो पर्यावरण के साफ सुथरा बनाई रखो। नहीं तो कई प्रकार की विषैली गैस जो है धुएं तो निकलो और दूजी जो भी ऊर्जा ऐसे बना हुए प्रयोग आदि लिया हुए तो से विषैले कण जो है वातावरण आते चले जाओ। पर इतना ये बहुत बड़ा फायदा है कि इधर विषैली गैस नहीं बनती। इतने साथे पानी की बचत भी हो और पवन ऊर्जा स्वास्थ्य री तक कम हानिकारक है और इतने साथ ही जो है पर्यावरण तो साफ रहो ही और ये ज़्यादा

वक्त आता है चलो भी है। तो पवन चलित से अंतर महंगे बेशक वो जरूर हो, तेती लगाया जाओ जेती बहुत ज़्यादा आवा हो या आवश्यकता अनुसार आवा हो। बहुत आवा जो है तेज गति वाली जगह दे पहुँचाते बारे हो और साथ ही बिजली री क्षमता वाली जगह ते ए और भी ज़्यादा पहुँचाते बारे हो इतरी तक है जेती आवा ठीक हो तेती ये प्रयोग लाई जाओ और तेती ये ठीक तरह साथ चलो भी। और ये मौसमा पांदे भी निर्भर करो, जेड़े मान लो अवारी गति हमेशा एक समान तो रहती नहीं, जो ऊर्जा उत्पादन के रुकावट भी कभी पैदा कर सको, अगर जे अवा नहीं होगी तो बिजली उत्पादन भी दे नहीं हो सकता, ये तेरी खास बात है। तो पवन टरबाइन और बड़े बड़े और तेज तेज घूमने वाले जो ब्लेड हो सो कई बार या सारी प्रकृति दे जो पशु पक्षी हो तेते के जो है सो आनी भी पहुंचाओ, क्योंकि अगर टकराई जाओ तिनारे पंख के साथ ही तो सी जो है ठीक तरह साथ ही उड़ान नहीं बढ़ सको। और बड़े बड़े टर्बाइनों ते घूमने दे लगातार जो है आवाज़ आओ और जो कि मानुरी तक ठीक नहीं हो। तो पवन ऊर्जा संयंत्र री तक बहुत ज़्यादा जगह री आवश्यकता हो अक्सर दूर दराज वाले इलाके दिए उपलब्ध हो सको और ये लगाई जा सको। तो भारत नवीनीकरण ऊर्जा रे क्षेत्रा दे काफ़ी तेजी साथ ही आगे बढ़ने लगी रहा और भारत आरा सभी ते बड़ा परिचालनशील तटवर्ती पवन फार्म तमिलनाडु मुंडप पवन फार्म है। और इतने ते अलावा राजस्थान रे जैसलमेर जिले दे पवनोरी नगरी रूपा दे प्रसिद्ध है और तेती जो है एशिया रा सभी ते बड़ा जैसलमेर पवन पार्क है। इस राज्य दे 284 गीगावाट ते ज़्यादा पवन ऊर्जा क्षमता मौजूद है, जिले रे राज्यों दे जो है 80% तक संयंत्र भी है। तो ये ऊर्जा जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने लग रही क्योंकि ये विषैली नहीं है और इतने साथ ही जो है पर्यावरण असारा खराब नहीं होता जो कि बहुत अच्छी गल है। ये तो थी सारी गलबात अपने श्रोताओं की सुनाई लिए ऐसे एलोगित सुनो तुसे एलोगित।

रीनू भारद्वाज, अरे आवाज दे सुना तुसे ए लोग तो एबे बात कर लिए जननी सुरक्षा योजना रे बारे दे। तो देखो जी माता रे खे जो सशक्त बनाना और नए बच्चे खे जो जन्म देवो तिन्हारे भविष्य के अच्छा बनाना और तिन्हारे स्वास्थ्य के ठीक रखना ए एक राष्ट्रीय पहल है। इतने लक्ष्य के पूरा करने री तक सरकारें जो है जननी सुरक्षा योजना चलाई रखी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रे अनुसार 2005 दे शुरू करी गई थी। इतरा उद्देश्य गर्भवती औरता खासकर जो आर्थिक रूपा ते कमजोर हो और बच्चा होने के बाद सेहत ठीक रो इतरी तक जो है कार्यक्रम चाई रखा ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ो। कई लाभ प्रदान करे साथे जो है नगद सहायता भी दियो। इते साथे जरूरी जांच करी जाओ और ठीक रास्ता भी दिखाया जाओ। कोई परेशानी ना हो ए आपातकालीन प्रसूति के बताओ माए और बच्चे री तक बढ़िया देखभाल के आसान बनाओ ताकि जच्चा और बच्चा जो है किसी प्रकार की परेशानी देनी आओ और तिनारा स्वास्थ्य ठीक रहो और मातृ मृत्यु दर के कम करने री तक ए सहायक भी सिद्ध होने लगी रही। तो गांवां दे रहने वाली जो जमने वाली औरता री तक आने जाने और बच्चे री देख बालारा खर्च शहरा दे रहने वाली जो जवानसा है तिना ते ज़्यादा दिया जाओ क्योंकि अगर से वो किथे अपने गाँवों ते हॉस्पिटल दे अस्पताल दे जाओ तो से दूर पड़ सकोआ। इतने के ध्यान रखते हुए तिना के थोड़ा जो मुआवजा ज़्यादा दिया जाओ। तो जननी सुरक्षा योजना रा लाभ पाने री खातर कई जरूरी गल्ला रा ध्यान रखना पड़ो। मान लो जेड़े कि असरा आधार कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है और अस्पतालों दे जो छुट्टी मिलने ते बाद पर्ची मिलो से जरूर संभाली के रखनी। ओ तो गर्भवती महिला रा नाव, लाड़े रा नाव, उम्र और स्थाई पता दे थोड़ा जे थोड़े से ओ और बीपीएल परिवार दे ए या दूजी किसी श्रेणी दे आओ अपना बैंक खाता जो है जरूर देती लिखना पड़ो। इत योजना रे तहत तो प्रसव अस्पताल दे कराने दे सीधे जो है बैंक खाते दे जो है राशि भेजी जाओ यानी कि जो भी पैसे मिलो से वो तिना के जो है तिनारे बैंक खाते दे पाए जाओ। तो जमने दे बाद अगर आशा कर कार्यकर्ता तिनारी मदद कर सको तिना के भी पूरा बताना चाहिए कि माँ साथी ता चलना पड़ना और अस्पताल रा नाव बताना पड़ना ताकि जो है ठीक तरह साथी जो है देती देखभाल हो सको। जो कोई लाभ पाने वाली माता है इनारी उम्र जो है तिनारी 19 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ए पहले दो बच्चे तक रहे जीवित रहने तक ये सीमित है। तो गर्भवती महिला रा पंजीकरण गर्भावस्था रे शुरुआती दिनों दे होना जरूरी है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। इस योजना रा लाभ उठाने री तक नेड़ा रे आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी अस्पताल दे भी संपर्क कर सको जो तिना के नेड़े पड़ो। तो अस्पतालों दे कितनी औरता बच्चे के जन्म दियो इतरे अधारा पांदे जो है दो समूह बांटे दे दे कुछ राज्य जे दे कि नीमन प्रदर्शन हो जेते के बोला जाओ LPS और इन्ना ते ज़्यादा सहायता री जरूरत हो और प्रदर्शन वाले के जो है कम।

दर्शन वाले के इतने के एचपीएस बोला जाओ। जेती अस्पताल नहीं है तेती निजी स्वास्थ्य केंद्र साथे मिलकर ए योजना काम करने लगी रही और मायारी देखभाल इति जो है ठीक तरह साथी करी जाओ, इतरी तक इत पांदे ध्यान दिया जाओ। और अगर कमजोर समूह पांदे ज्यादा ध्यान इधे दिया जाओ ताकि जरूरत रे बखते तीना खे पूरी सुविधा मिली जा सको। तो योजना दे दियो जो है अनगिनत गर्भवती महिलाएं खासकर जो गरीब परिवारों दे आओ तीना खे जीवन रेखा बनी कर ए सामने आने लग रही और कई प्रकार साथी सहायता तिनारी ओने लग रही और प्रसवा के बढ़ावा देना इस योजना दे जो है माए और बच्चा री मृत्यु दरा दे काफी कमी आओ ते तेरी तक जो है ए योजना खासकर चलाई रखी जो कि कामयाब भी सिद्ध होने लग रही। तो स्वच्छ स्वस्थ बच्चे के जन्म देना हर परिवार आ रहा यहाँ तो सपना हो पर कई बार ऐसा के देखने के मिलो कि माए और बच्चे री सेहत और स्वास्थ्य ध्यान देना राखी कर भी किया देखभाल करनी क्या करना क्या जरूरी है समझा देनी आओ। कई बारी गाँव में रहने वाले जो दूर दराज मानू रहो तो बस यो सोचो कि ये तो भगवान आ रही दे ए जेड़ा होना तेड़ा ठीक है पर लापरवाही बरतने दे समस्या ही पैदा हो। इतरी तक सरकारा द्वारा जननी सुरक्षा योजना चलाई राखी ताकि वक्ता पांदे सहायता मिलो और जच्चा और बच्चा ठीक तरह साथी जल्दी ठीक हो और ठीक तरह साथी तीन जो है प्रसव हो। स्वस्थ समाज स्वस्थ देशारी न्यू बनो इतेरी तक कदी भी स्वास्थ्य पांदे लापरवाही ऐसे नहीं करनी चाहिए चाहे से कोई भी हो। तो देखो जी सरकार तो आसारी सूल तैयारी तक हमेशा कोई ना कोई योजना चला दे रहो इतरा से भरपूर फायदा लेना चाहिए ते भी जो है ये सहायक सिद्ध हो। तो ये तो थी आसारी गलबात अपने श्रोताओं को सुनाई लिए ऐसे ए लोकगीत तो सुनो तुसे ए लोकगीत।

राम स्वरूप और शाइंडल और साथी री आवाज़ दे सुना तुसे ए लोकगीत। तो एबे जनगणना 2027 रे बारे दे बातचीत कर लिए। तो देखो जी, जनगणना 2027 रे प्रथम चरणा दे मकान सूचीकरण एवं मकानों री गणना रा आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार रे निर्धारित तिथियों रे अनुसार 16 जून 2026 ते 15 जुलाई 2026 तक करा जाना, ठीक 15 दिन पहले यानी 1 जून 2026 ते 15 जून 2026 तक स्वगणना रा विकल्प भी जारी कर रखा। तो हिमाचल वासिया के sec.census.gov.in पांदे जाकर आपू जानकारी भरी सको और जनगणना 2027 रा काम डिजिटल माध्यम ते संपादित करा जाना, जेतेरे अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक निर्धारित एप्लीकेशन रे माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी करनी और प्रथम चरणा दे मकानों की स्थिति, परिवारों के उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाने। जनगणना अधिनियम 1948 रे अंतर्गत जनगणना दे दी गई सारी जानकारी जो है गोपनीय रखी जानी। इतरा उपयोग केवल नीति निर्माण एवं अनुसंधान हेतु करा जाना। तो इतो थी जनगणना रे बारे दे बात। एबे खास खास खबरारी बारी, मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुखू जी ए युवा पीढ़ी ते नशे ते दूर रही कर खेल गतिविधियों ते जुड़ने रा आह्वान कित्या। शिमले पिछले काल सांझा क्रिकेट कार्निवाल 2026 रे समापन अवसरा पांदे बोला कि नशा छाड़ो और खेलो नारा परवर वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों री तक बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं के चिट्टे और दूजे नशे ते दूर रहने के बोला और खेलो के अपने जीवन दे अपनाने री सलाह दी। तो प्रदेशा रे दूजे कई जिलों दे मंत्रिमंडल सदस्यों द्वारा जो है प्रदान और उपप्रधान के शपथ दिलाई। सोलना दे हुए समारोह दे स्वास्थ्य मंत्री श्री धनराम शाइंडल जी है जनप्रतिनिधित्व ईमानदारी ते सभी काम पूरा करने रा आह्वान कित्या। नहाना दे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा बोला कि प्रदेशारी सभी पंचायतों के सरकार आरा पूरा सहयोग मिलना और विकास कामों री तक धनारी कोई कमी नहीं रहनी। तो प्रदेशावरा दे संभावित प्राकृतिक आपदाओं ते निपटने री तैयारियां री तक जो है मॉक ड्रिल करवाई। इस मॉक ड्रिल रे दौरान आपदा प्रबंधन री तक प्रशासनिक और राहत एजेंसियों द्वारा तैयारियां रा जायजा भी लाया और सभी जिलों दे स्थानीय प्रशासन पुलिस होमगार्ड और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों रेसियों गते जो है ए मॉक ड्रिल पूरी करी गई। इत साथ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है देशा रे मध्यम वर्ग के राष्ट्र निर्माण दे महत्वपूर्ण बताया और एनडीए सरकार द्वारा इनारी इच्छाओं के पूरा करने री दिशा दे काम करने रा सौभाग्य मिला। और सोशल मीडिया पोस्टा दे तीने बोला कि पिछले एक ही दशक ते सरकार द्वारा आम नागरिक रो जीवन रा स्तर के सुधारने री तक अवसरों के जो है आसान बनाया गया और तीना के अच्छी और बुनियादी ढांचे वाली सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्ता वाली शिक्षा, साफ शहर समेत सारी सेवाएं जो है प्रदान करी गई। तो ये तो थी असरी खास खास खबरा। एबे अपने श्रोताओं के सुनाई लिए असे अगला लोकगीत। तो सुनो तुसे ए लोकगीत।

महासुवी कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। लीजिए अब प्रस्तुत है कुल्लवी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM 103.7 MHz पर भी सुन सकते हैं।

मीडियम वेव होर एफएम बैंड 123.7 मेगाहर्ट्ज़ सा पेंदे ए आकाशवाणी शिमला सा। सौंदारा टाइम 100:35 रा हुआ सा। ताज़ी एवे छोड़ा तुसे अपना कुलवी कार्यक्रम।

सभी कुलवी कार्यक्रम सुनने वाले लोकावे सोनिया सैनीरी तरफ ने नमस्कार और जासा तुसावे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना री जानकारी देनी संगे ही योग होर स्वास्थ्य री गला गिरनी होर तुसावे शोभले शोभले लोक गीत सुनाने औजारे समाचार भी तुसावे बताने कुलवे कार्यक्रम री शुरुआत आसा है लोक गीता ने करनी और में जो पहला गीत लाऊ सा चलाना ऐसा धर्मेंद्र शर्मा री आवाज़ है न कोखे तो सोली जुरी है।

ताज़ी ए शुणु तुसे शुभल जो गीत एबे असा गला के नी योगा होर स्वास्थ्य री। योग मानू रे स्वास्थ्य बे बहु जरूरी सा। खरा स्वास्थ्य ही शोभली जिंदगी री नींब हुआ सा। ताज़ी स्वस्थ योग केरिया ही शोभला होला। योग स्वास्थ्य ले बहुत शोभला और बड़ा ही जिंदगी में भी बड़ा ही शोभला बना सा। जिंदगी भी शोभली होली लंबी केरा। पुराने टाइम ने लोग खेचा पैंदा जाइए खूब कौम केरा थी। शरीर री भी खूब कसरत होंदी थी। उई जमाने रे माणू रा स्वास्थ्य खरा ही शोभला होंदा सी। शोभला खान पान शोभली जिंदगी तीनारी पहचान सी। ताज़ी उस कलारे जमाने ने ता भांति भांति री बीमारी लगी सी। उस कलारे वक्तन शारीरिक कौम भी केमी ही होले सा। खेतन भी आसा दिहाड़ी पेंदे मजदूर ला सा। इनारे बावजूद भी तुसे तुहे योगा केरिया स्वास्थ्य वे शोभला डाई सकते सी। योग पुराने भारतारी परंपरा न निकती एक एंडी विद्या सा। जूनिये मन शरीर होर आत्मा बे एकजुट केरा सा। आसन प्राणायाम होर ध्यानारे जरिए मानसिक शांति शारीरिक लचीलापन मजबूती होर आत्मज्ञान प्रदान केरा सा। जूनिये संगे रोगारा नाश होला सा। योग शब्द संस्कृतारे धातु युग संगे बनू सा। योगारा अर्थ सा जोड़ना मिलाना। कोई कार्य संगे आपू वे जोड़ना। मानुरा अपने आंदर री शक्ति संगे जोड़ना या अपने आपू ने जोड़ना। योग केरने रा उद्देश्य म्हारे जीवनारा पूरा विकास संगे सा। उईरा संबंध शारीरिक मानसिक नैतिक आध्यात्मिक वे सामाजिक विकास संगे सा। योग जिंदगी जीने री कला सा। पिछले कुछ साल ने योग पूरी दुनिया ने बड़ी तेजी संगे लोकप्रिय हुआ सी। भारत ने शुरू हुआ दा योग औज देशा ने संगे होर देशा ने भी कोने कोने ने पूजू सा। करोड़ों लोग औज योगा वे अपने जीवनारा हिस्सा बढ़ाते लगे ने सा। आसारी जिंदगी ने योग वे बहुमूल्य फायदे सी। सभी ने पहले

तत्व है, बीमारी ने दूर होले, हाजमा भी खरा होला, जोड़ा रे दर्द टेंशन कम होला। ताजी आऊं ए बोलूं कि सभी बीमारियां ने तो है दूर होना। खरे होले योग संगे शरीर न बीमारी संगे लड़ने री शक्ति बड़ा सा। तू सारी याददाश्त भी शोभली होली, सकारात्मक सोच भी तुआरी बढ़ली। उस कोलारी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी न मानसिक शांति बहुत जरूरी सी। औज कोलारे वक्तन शुगर बीपी दिलारी बीमारी होर माणू कोई मोटे तक कोई बहु ही पतले सी। योग केरिया तुसे अपना वजन सही केरी सकदे सी, संगे ही दवाइया पेंदे निर्भरता भी कौम केरी सका। योगा रे मुख्य आसन सा सूर्य नमस्कार, 12 आसनों रा मिश्रण सा, जुनियन पूरा शरीर रा व्यायाम होला सा। अगर तू सबे टाइम नहीं उठी ता तू है दुत्ती उठियन केवल सूर्य नमस्कार भी केरी सकदे। ए आसन तुअरे पूरे शरीर रा व्यायाम होला। बजर आसन ए एक एंड आसन सा, जुनियन ने तुआ खाना खाने रे बाद भी केरी सका सा। ए आसन खाना पचाना बदहजमी कब्ज बात न दूर केरी सी। होर आसन सा भुजंग आसन शव आसन, जंड की सियाणे वे आसन केने न परेशानी होली ता सा प्राणायाम भी केरी सका। जंड कपाल भारती अनुलोम विलोम उजई प्रणाम भ्रामरी प्राणायाम बिटड़ी वे व्यायाम केना बहुत जरूरी सा। किबे की बिटड़ी बिटड़ी ला स्वस्थ होली ता तेबे ही परिवार रा ध्यान डाई सकती सी। योग केरने रे कुछ नियम सा, योग दोथी होर सौंजा दुई टाइमन केरी सका सा। अगर तुसे दुई टाइमन आसन नहीं केरी सकदे सा तबे दोथी रा टाइम सभी न शोभला होला सा। दोती मन शांत रहा सा, दोती पेट साफ होई हुआ सा। खाली पेट होर दोपहरन खाना खाइए 5-100 घंटे न बाद आसन केरी सका सा। साफ शांत एकांत जगह योग केरने वे शोभली होली सी। आसन किरदे घेरे तू है सूती या थोड़े ढीले ढीले टाले लाई सकदे। कोई भी समाजा न खरा स्वास्थ्य अच्छे संस्कार बड़े बड़े परिवार री भूमिका होली सी। अच्छे समाजा री बनाने न योगा री बहुत जरूरी भूमिका सा। योग माणु वे शारीरिक मानसिक रूपा न भी स्वस्थ बना सा। स्वस्थ माणु ही स्वस्थ समाजा री नींब होला सा। दोती उठियन आसा वे रात्रि न म्हारा हर कदम योगा रे हिसाबा न होला ता म्हारी जिंदगी होर भी दमादार और शोभली होनी सी। योग केवल कसरत नहीं होती बल्कि जिंदगी जीने रा तरीका सा। जुनियन शरीर मानसिक स्वास्थ्य वे एक ही संगे जोड़ा सा। ताजी एवरे तुसे रोज दोती उजियन योग केरना स्वस्थ रहना ता मस्त रहना। ताजी एवे शुना तुसे एक और शोभला जया गीत टिक्कम राम शर्मा री आवाज़न।

ताज़ी लावड़ी वसी सेसु पंडिता वे एबे आसा गला किरनी योजना री। भारत सरकार ए बहु शोभली योजना चलाई सी, नाउ सा प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना। ए भारत सरकार री बहु बड़ी योजना सी। यही योजना रा मुख्य मकसद सी किसाना रे खेचा ना पानी पहुँचाना और पानी री बर्बादी वे रोकना। सरकारा नारा सा खेचा बे पानी प्रति बूंद ज़्यादा फसल। ए योजना री शुरुआत 2015 न हुई सा। यहाँ रा उद्देश्य सा खेचा बे पानी सिंचाई रा दायरा बढ़ाना और पानी री बचत करना सी। ए योजना रे तहत किसाना वे आधुनिक सिंचाई उपकरण जेंडे ड्रिप होर स्प्रिंकलर पेंदे 45% न 80% तई सब्सिडी मिला सा। भारतीय कृषि होर किसाना रे विकासन ए योजना री बहु बड़ी भूमिका सा। भारत ने लगभग 55% कृषि योग्य जमीन सीधे ही मानसूना पेंदे निर्भर होली सा। एंडेना एज योजना भारतीय खेती रा चेहरा बदलने पेंदे बड़ी भूमिका निभा सा। हिमाचल ने भी ए योजना चली सी। हिमाचल पहाड़ी राज्य रा पहाड़ी ढलान ना सेव प्लम और सब्जी रे खेता बे ड्रिप सिंचाई और फवारे बे बड़े पैमाने पेंदे बढ़ावा देंदे लागे ने सा। योजना रे मुख्य कोम नहर और बांधारा निर्माण करना। नोई रे पानी बे नहरा रे जरिए सूखे खेचा तई पहुँचाना जोखे बारिश कम होली सा। जेंडे लाहौल स्पीति और अन्य सूखे इलाके ने पानी रा प्रावधान करना। खेचा ने पानी बे इकट्ठा करना

0: Cabo Verde in Group H clash at Atlanta tonight at 9:30.
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:10 हुए हैं। अब हमारा अगला प्रसारण आइए सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
2: विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आज़ादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में मैं हूँ हेमलता शर्मा
1: और किसान भाइयों मैं हूँ रीता आपके साथ।
0: बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम की। किसान भाइयों देखो, आप जानते हैं आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और बारिश भी हो रही है, लेकिन गर्मी जो है बढ़ती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है सुबह शाम की। और पानी को उबाल कर छान कर पिए और फ्रिज का बासा भोजन बिल्कुल भी ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि होता क्या है किसान भाइयों, यदि आप बासा भोजन खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। और खास बात ध्यान रखें, गर्मियों के मौसम में खाना बच भी जाता है तो शाम को ही अपने पशुधन को दे दें ताकि वो भी स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। तो कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, काम की बातों में बात करेंगे, उपज बढ़ोतरी में उर्वरकों का प्रयोग, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ,
1: और हर रोज की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियां देते हैं। आज जानकारी का विषय रहेगा भेड़ व बकरी पालन स्वरोजगार का साधन। डॉक्टर रविंदर शर्मा से जानकारी हासिल कर रहे हैं राजेंद्र। जून का जो महीना है वो चल रहा है और इसमें हमारे किसान बागवान भाई बहन कौन कौन से काम करें। अगर हम बात करें धान की खेती के बारे में तो किसान भाइयों, धान की रुपाई की नई अनुमोदित विधि जो है वो हम आपको बता दें। इसमें 15 से 18 दिन की पनीरी की खेत में रुपाई की जाती है और एक स्थान पर सिर्फ एक ही पौधा लगाया जाता है। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है।
0: बात आती है खरपतवार नियंत्रण के लिए, बिजाई के 48 घंटों के अंदर एट्राजीन टेकाजीन एट्राटॉप पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मास टॉप 50 WP 1.75 से 2.75 किलोग्राम, या आप ले सकते हैं एंडोसल्फान, या ले सकते हैं आप कार्बन डाइजीम का छिड़काव आप कर सकते हैं। और मक्की के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों को मिश्रित खेती में इन रसायनों का उपयोग ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रति हेक्टेयर की दर से आप ये छिड़काव कर सकते हैं
1: जी।
0: तो किसान भाइयों, ये तो हुई बात जून के पहले पखवाड़े में किए जाने वाले कार्य की। अब बात कर लेते हैं उपज बढ़ोतरी में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में।
1: जी किसान भाइयों, खेत की मिट्टी एक जीवित माध्यम है जिसमें प्रति ग्राम करोड़ों की संख्या में लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। कुछ पौधे जिस तरह चना, सोयाबीन, मूंगफली, लेग्यूमिनस या फिर फलीदार फसलों की जड़ों पर गुलाबी गांठों के रूप में भी सूक्ष्म जीवाणु निवास करते हैं।
0: किसान भाइयों, बात कर लेते हैं जैव उर्वरक होते क्या हैं। जड़ों या खेत की मिट्टी में इन जीवाणुओं की आबादी कम होती है, इसलिए प्रयोगशाला में इनको निकाल कर और शुद्ध करके इनकी आबादी को बढ़ा लिया जाता है। इनकी आवश्यक मात्रा को कुछ अन्य पदार्थों जैसा कि चारकोल, पीट, लिग्नाइट आदि के साथ मिलाकर पैकेटों में सील कर दिया जाता है। इस तरह तैयार जैविक जीवाणु खाद को जैव उर्वरक कहा जाता है। यदि हम बात करें कि जैव उर्वरक का हमारे खेतों के लिए क्या महत्व होता है, तो जैव उर्वरक पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने का एक प्राकृतिक, सस्ता और सरल प्रभावशाली माध्यम होता है और इसके इस्तेमाल से फसल की उपज और भूमि की उपजाऊ शक्ति का अपेक्षित प्रभाव पड़ता है और वातावरण में प्रदूषित नहीं होता है और इन

0: रासायनिक उर्वरकों के साथ उनके पूरक या अंश के तौर पर एकीकृत रूप से इस्तेमाल करके भली भांति लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और किसान भाइयों, एक अनुमान के अनुसार फलीदार फसलों में राइजोबियम जैव उर्वरक के इस्तेमाल से विभिन्न स्थितियों में 20 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में अवशेष तौर पर उपलब्ध होती है।
1: तो हेमलता जी, आपने कहा जैव उर्वरक क्या है और जैव उर्वरक का महत्व क्या है। किसान भाइयों, ये भी हम आपको बता दें कि जैव उर्वरक के लाभ कौन कौन से हैं। इसका फसल की बढ़ोतरी या फिर जमीन की उपजाऊ शक्ति पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता।
0: तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं उर्वरक का इस्तेमाल कैसे करना है। राइजोबियम एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम बैम इत्यादि जो है ये उर्वरक है, और इन जीवाणुओं का टीका बीज उपचार, पौध उपचार, कंद उपचार या भूमि उपचार द्वारा किया जा सकता है। बीज उपचार की बात की जाए तो आमतौर पर बीज को रोग व कीटनाशक दवाओं से उपचार करते समय जीवाणु खाद से भी उपचारित किया जा सकता है। ऐसे में बीज को पहले फफूंदनाशक दवा से, फिर कीटनाशक दवा से और अंत में जीवाणु खाद से उपचारित करना चाहिए। और किसान भाइयों, तभी जीवाणु टीके से पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम विधि की बात करें तो 500 मिलीलीटर सादे पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलकर उसमें 200 ग्राम जैव उर्वरक का एक पैकेट घोल लें और इस घोल को 10 से 12 किलोग्राम बीज पर डाल दें। उर्वरक और बीज की मात्रा बीज को अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिलाएं ताकि आपका जो बीज है वो आसानी से घुल जाए, और उपचारित बीज को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई अवश्य कर लें। यदि हम बीज को साफ की बात करें तो बीज को साफ फर्श पर या प्लास्टिक आदि को साफ सुथरी शीट पर फैलाएं और पानी का हल्का सा छींटा मारकर बीज को गीला कर लें और गीले बीज पर जैव उर्वरक का पाउडर छिड़क दें। बीज को 3 से 4 बार हाथों से हल्के से उलट पुलट दें ताकि तमाम बीज पर जीवाणु खाद की परत चढ़ जाए। और किसान भाई, उपचारित बीज को तुरंत बो दें और बुआई तक उसे ठंडे छायादार स्थान पर अवश्य रखें।
1: जी, इसके अलावा किसान भाइयों, भूमि उपचार की विधि की अगर हम बात करें तो कम अवधि वाली फसलों के लिए खेत से 90 से 120 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी या गोबर की गली सड़ी खाद लें। मिट्टी आदि को साफ फर्श या फिर प्लास्टिक आदि की शीट पर फैला दें। फैली मिट्टी पर 3 से 4 किलोग्राम जीवाणु खाद का पाउडर आप छिड़क कर दोनों को अच्छी तरह से मिला दें। ज्यादा अवधि वाली फसलों के लिए खेत की 120 से 150 किलोग्राम भुरभुरी मिट्टी या गोबर की गली सड़ी खाद में 4 से 5 किलोग्राम जीवाणु खाद का पाउडर मिलाएं। भूमि उपचार की विधि को अपनाएं और अच्छी उपज पैदावार जो है वो हासिल करें।
0: जी किसान भाई, यदि बात करें पौधों की जड़ों को उपचारित, इस काम के लिए 200 ग्राम जैव उर्वरक कल्वर कल्चर के एक पैकेट को 10 लीटर पानी में मिला लें जो 200 पौधों के उपचार के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, ये तो थी जानकारी, विषय था उपज बढ़ाओ में उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, आप सुन लेते हैं समूह स्वरों में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, स्मूह स्वरों में ये तो सुना आपने लोकगीत। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हर रोज की तरह हम आपको विभिन्न तरह की जानकारियां देते हैं और आज जानकारी का विषय रहेगा भेड़ व बकरी पालन स्वरोजगार का साधन। डॉक्टर रविंद्र शर्मा से जानकारी हासिल करे हैं राजेंद्र, तो आइए हम भी सुने इनके साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी।
1: जी,
2: आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: जी, आज का हमारा जो विषय है वो है भेड़ व बकरी पालन स्वरोजगार का साधन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे प्रदेश में भेड़ पालन किस तरह का है?
3: भेड़ पालन व बकरी पालन का मनुष्य संबंध आदिकाल से रहा है और यह एक प्राचीन व्यवसाय है। उत्पादन के हर साधन का पूरा पूरा इस्तेमाल किए बिना देश व प्रदेश को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता। भेड़ व बकरियों से हमें बहुत सारी उपयोगी चीजें मिलती हैं, जो हमारे खेती, तंदुरुस्ती और उद्योग धंधों के लिए बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार भेड़ बकरी पालन बहुत सारे उपयोगी पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने वाला सस्ता व अनमोल साधन है। संसार के कई प्रगतिशील देशों में, खासकर स्विट्जरलैंड में बकरी पालन व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भेड़ पालन एक लाभदायक धंधे के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन हमारे देश में यह व्यवसाय सुनियोजित नहीं हो सका, इसलिए इसके लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा भेड़ पालकों से संबंध काफी समय से रहा है। मैं भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ज्यूरी में भी कार्यरत रहा। इस दौरान भेड़ पालकों का फार्म में आना, प्रक्षेत्र में आना, और साथ ही जब हमारी भेड़ बकरियां हाईलैंड पास्चर पर जाती थी, पर्वतीय क्षेत्रों में जाती थी, तो हम चरागाहों से मिलते रहते थे और उनके अनुभवों को साझा करने का मुझे बहुत मौका मिला।
2: डॉक्टर साहब, इस समय हमारे प्रदेश में कितनी भेड़ बकरियां हैं और उनकी कौन कौन सी नस्लें उपलब्ध हैं?
3: यह हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश जैविक विविधता में उत्कृष्ट है। हमारे प्रदेश में भेड़ों की लगभग 40 प्रजातियां और बकरियों की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ के मौसम के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से और मौसम के हिसाब से और कृषि जलवायु के हिसाब से हमारी जितनी भी नस्लें हैं वो यहाँ पे विकसित हुई हैं। इन नस्लों में रोग प्रतिरोधक क्षमता व प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बहुत अधिक है। हमारे प्रदेश में 8,04,870 भेड़े और 11,19,000 बकरियां हैं, जिनमें मुख्यतः रामपुर बुशहरी, गद्दी और चीगू नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं और निचले क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों की बकरियों की नस्लें, जिसमें सिरोही, बिटल, जमुनापारी और उनके मिश्रण देखने को मिलते हैं।
2: जी जी, डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है कि दूसरे पशु की अपेक्षा, जिसमें गाय और भैंस आते हैं, उनकी तुलना में भेड़ बकरियां पालने के क्या क्या फायदे हैं?
3: पुराने समय से कहा जाता है बकरी को मेनली गरीबों की गाय कहा जाता है, क्योंकि इसे पालने और रख रखाव पर बहुत कम खर्च आता है। दूसरा, पशुधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। अगर हम इनको गाय भैंस से कंपेयर करें तो ये पशुधन अपेक्षाकृत सस्ते रहते हैं।
2: जी,
3: और वृद्धि दर बहुत तेज है। घास को मांस और दूध

0: में परिवर्तित करने के लिए किफायती पशु है। अन्य पशुओं की तुलना में विभिन्न प्रकार के पौधे भेड़ों का आहार होते हैं, यही कारण है ये खरपतवार को अच्छे से खत्म करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी तक हमने बात की हमारे यहाँ पर कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं और इन्हें पालना क्यों श्रेष्ठ है, तो अब बात करते हैं कि क्या भेड़ों को इकट्ठा रखा जा सकता है और इकट्ठा रखने के क्या क्या फायदे होते हैं।
0: आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं इनके चलने के तरीकों पर बात करना चाहूंगा। हमने अक्सर भेड़ों को और बकरियों को जैसे झुंड चलते हैं तो हमने देखा होगा कि बकरियां हमेशा सिर को ऊंचा करके चलती हैं और भेड़ें सिर को नीचा करके चलती हैं।
1: जी,
0: और यही इनकी खाने की आदत भी यही है, घास खाने का तरीका भी यही है। बकरियां अक्सर ऊंची ऊंची टहनियों को, झाड़ियों को, पत्तों को खाती हैं और भेड़ें सिर नीचे करके ग्रेजिंग करती हैं, घास खाती हैं। तो इसी कारण इन दोनों में आपस में किसी भी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा, किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें व्यवसाय का चुनाव कैसे करना चाहिए?
0: जब भी हमें व्यवसाय का चुनाव करना है या पशु का चुनाव करना है तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा मेथड रहता है, SWOT एनालिसिस जिसको बोलते हैं। SWOT एनालिसिस का मतलब SWOT। S means strength, strength means ताकत। हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है और हमारे को क्या क्या मौके हैं और हमें किस किन किन चीजों से खतरा है।
1: जी।
0: तो पहले बात करते हैं हम ताकत के ऊपर। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत इस पे निर्भर करती है कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं और हमारे चारों ओर का मौसम किस तरह का है, किस तरह के लिए अनुकूल है। क्या गाय के लिए अनुकूल है या भेड़ों के लिए अनुकूल है, बकरी पालन के लिए अनुकूल है या ब्रॉयलर पालने के लिए अनुकूल है, उस हिसाब से हमें यह निर्णय करना है। अगर हमारे क्षेत्र में पास्चर एरिया है, चरने के लिए बहुत घास है लेकिन इरिगेटेड लैंड हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसे पशु को रखना होगा जहां पे जो उन घास को, जो लो क्वालिटी का घास है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, उसको भी अच्छी ढंग से उसको कन्वर्ट कर पाए, तो हमें भेड़ पालन के बारे में सोचा जा सकता है। करना है तो बकरी पालन के हमें कौन सी ब्रीड रखनी है, कौन सी नस्ल रखनी है।
1: जी।
0: अगर हम ना लोअर हिमाचल है तो बकरी पालन अगर करना है, अगर झाड़ियां हमारे पास बहुत ज्यादा हैं तो हमें कौन सी नस्ल रखनी है, इसका हमने सबसे पहले चुनाव करना है।
1: जी।
0: दूसरी बात है हमारी कमजोरी क्या है, क्या हमारे पास मार्केट अवेलेबल है।
1: जी।
0: क्या हमारे पास घास उतनी जरूरत का है जिससे गाय का गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता, बकरी का गुजारा हो सकता है तो हमें बकरी को रखना है, हमारे पास उसके मार्केट करने के लिए जगह है। तो उसी हिसाब से हमने अपने व्यवसाय को चुनाव करना है, अपने पशु का चुनाव करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि कौन कौन सी नस्लें पालनी चाहिए।
0: जहां तक नस्लों की बात आती है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में भेड़ प्रजनन क्षेत्र स्थापित किए हैं जहां पर भेड़ पालकों को मेरिनो रेमुले नस्ल की भेड़ों के बारे में इनहैंड ट्रेनिंग दी जाती है। इन भेड़ों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे आपके ऊन की गुणवत्ता हमारे रेमुले और मेरिनो भेड़ों में बहुत बढ़िया है, बच्चे का जन्म भार बहुत अच्छा रहता है। इन नस्लों की भेड़ों के वयस्कों में नर का भार 80-90 किलो तक जाता है और मादा का भार लगभग 50-60 किलो तक रहता है।
1: जी।
0: तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह नस्लों को रखकर मुनाफा कमाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं निचले क्षेत्र की। जैसा कि मैंने आपको बताया, बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है। कुछ नस्लें जो कि हमारे पड़ोसी राज्यों में होती हैं, जिनमें बीटल, बारबरी, जमुनापारी, सिरोही, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बीटल नस्ल है, इसे बौनी गाय भी कहा जाता है। बौनी गाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दूध उत्पादन की क्षमता बहुत अच्छी है। हम 4 और 5 लीटर तक दूध बीटल नस्ल से प्राप्त कर सकते हैं। इसका रंग लाल, भूरा व काला रहता है। नाक की हड्डी उभरी हुई रहती है। कान लंबे और नीचे की तरफ झुके रहते हैं। इसका थन कोनिकल थन रहता है और अमूमन ये बकरी 2 बच्चे देती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो हमें भेड़ और बकरी पालन से आय कहाँ से और कितनी होती है?
0: आय और व्यय आपस में जुड़े हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो इसमें शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत रहती है। जैसा हमने पहले भी बताया कि इन्हें महंगे भवन की जरूरत नहीं होती और साथ ही साथ प्रजनन दर बहुत तेज है। हम भेड़ में 1 बच्चा हर वर्ष ले सकते हैं और बकरियों में अगर बीटल नस्ल की है तो 1 बकरी लगभग 2 बच्चों को जन्म देती है। अगर हम 10 बकरियों का एक यूनिट बना लेते हैं तो बस 10 बकरियों से हमें लगभग साल में 17 से 18 बच्चे मिल जाते हैं। तो 17 से 18 बच्चे अगर साल में मिलते हैं तो पहला तो हमारा मुनाफा बच्चों से हो गया, दूसरा मुनाफा हमारा दूध से है क्योंकि मैंने बताया कि बीटल अगर नस्ल है आपके पास तो वो दूध बहुत अच्छा देती है। अगर नेट में हमारे क्षेत्र में हमारी खान पान के हिसाब से अगर बकरी से हमें बच्चों के अलावा 1 लीटर दूध भी मिल जाता है तो भी हमें उसमें मुनाफा काफी ज्यादा होता है। उसी तरह से अगर हम भेड़ों की बात करें तो भेड़ों से हमें 1 मेमना मिला साल का, 1 भेड़ से, और साथ में हमें ऊन, जैसे मैंने बताया अगर रेम्बुलर नस्ल की भेड़ है तो हमें 1.5 किलो के करीब

0: एक भेड़ से ऊन मिल जाती है और इनकी जो ऊन काटी जाती है साल में दो बार काटी जाएगी। तो इस तरह से मुनाफा भेड़ और बकरियों में बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरत अगर है तो उसमें साइंटिफिक तरीके से करने की जरूरत है और प्लानिंग से करने की जरूरत है और साइंटिफिक नॉलेज लेने के बाद ही हम इस कार्य को शुरू करें।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने दूध की बात की तो हमारे यहाँ हमेशा अमूमन ये धारणा रहती है कि बकरी का दूध पीने के लिए अच्छा नहीं होता या फिर बकरी के दूध में सुगंध रहती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
0: बहुत बढ़िया, मैं एक चीज सभी भेड़ पालकों को, बकरी पालनों को बताना चाहता हूँ, बकरी के दूध में स्मेल नहीं हो सकती। ये कब नहीं हो सकती? अगर हम बकरों को बकरियों से दूर रखें,
1: जी
0: लगभग 50 मीटर की दूरी पर हमेशा बनाए रखें, जब हमें प्रजनन करवाना है तब ही हम बकरियों को बकरों के साथ मिलाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो बकरी के दूध में किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं होती। और दूसरा, बकरी के दूध के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इन सब फायदों को गिनाएं तो मुझे तो ये लगता है कि बकरी का दूध गाय के दूध से भी श्रेष्ठकर हो सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपकी इम्यूनिटी को ये बढ़ाता है। दूसरी बात, यह बहुत सुपाच्य है।
1: जी
0: हम देखते हैं कि कुछ लोगों को गाय के दूध में लैक्टोज के कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, उन लोगों को बकरी के दूध से उस लेवल की इंटॉलरेंस नहीं होती, तो उनको बकरी का दूध दिया जा सकता है। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बकरी का दूध बहुत ही अच्छा है।
1: जी डॉक्टर साहब, हम दूसरे पशुओं से अगर तुलना करें तो बकरी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं?
0: बकरी के दूध की हम बात कर चुके हैं, अन्य विशेषताएं बकरी में इस तरह से हैं। एक तो बकरी के दूध की प्रति लीटर कीमत गाय से कम है।
1: जी
0: अगर हम एक लीटर की उसकी कीमत निकालें तो बकरी के दूध की कॉस्ट कम बैठती है और बराबर मात्रा में पोषक तत्व गाय और बकरी को दिए जाएं तो बकरी उससे ज्यादा दूध देती है। बकरी गाय की अपेक्षा बेकार घास को भी अच्छे तरीके से उपयोग करती है, लेकिन बकरी को एक तो साफ सुथरी जगह चाहिए, गंदगी, खाने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बकरी को सूखी जगह पे रहना पसंद है, खाने में अगर फलीदार घास उन्हें मिल जाए तो उन्हें बहुत पसंद है। नमक देना, दोनों को मैं सभी भेड़ पालकों, बकरी पालकों को बताना चाहता हूं कि जब भी कच्चा घास आता है तो हफ्ते में कम से कम एक बार अच्छे से नमक इनको दिया जाना चाहिए। जब भेड़ें आप पर्वतीय क्षेत्रों में ले जाते हैं, जो जो घुमंतु हमारे भेड़ पालक हैं, गडरिये हैं, वो जब भी पर्वतीय क्षेत्र में भेड़ों को ले जाएं तो नमक जरूर खिलाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश सरकार या विभाग द्वारा हमारे जो बकरी और भेड़ पालन के लिए किस तरह से मदद की जाती है?
0: इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा BPL कृषक बकरी पालन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 10+1, 4+1 और 2+1 बकरियों की इकाई BPL किसानों को दी जा रही है, जिसके साथ ही ये अनुदान है। 60-40 की स्कीम है, 60% और 40% की स्कीम है। इसके साथ ही उनकी इंश्योरेंस भी कराई जाती है और 3 महीने का फीड भी दी जाती है। और दूसरा, हमारी जो योजना भेड़ पालकों के लिए है, भेड़ पालकों के लिए अनुदान पर मेढ़े उपलब्ध करवाने की योजना है, जिससे कि उनकी गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी हो। ये स्कीम जो मेढ़ों की स्कीम है उन्हीं को दी जाती है जिनके पास कम से कम 50 भेड़े हैं। और सभी भेड़ पालकों से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि पशुपालन विभाग के माध्यम से आप मेढ़े ले जाएं और अपने भेड़ों की नस्ल को सुधारें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो।
1: जी डॉक्टर साहब, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी भेड़ पालकों और बकरी पालकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है और साथ में ही सही नस्ल आप जरूर हमारे जहां जहां पे हमारे भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी बैठते हैं, आप उनसे परामर्श लें, उनसे नस्लों के बारे में बात करें कि हमारे कौन सी नस्ल चल सकती है। मैं भेड़ पालन और बकरी पालन के बारे में नहीं, जब बाकी दूसरे जो गाय हैं, किस तरह के ब्रीड हमें रखनी चाहिए, आप नजदीकी संस्थानों में जरूर जाएं और हमारे विशेषज्ञों से इसके बारे में बात करें। और साथ ही साथ जब भी कोई आप बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं, मार्केट का जरूर ध्यान रखें कि कौन सी हमारी नजदीकी मार्केट है जहां से हम अपना प्रोड्यूस जो है वो मार्केट तक पहुंचा पाए।
1: जी डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने भेड़ और बकरी पालन स्वरोजगार के साधन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों को दी, इस जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: किसान भाइयों, ये तो सुनिए आपने जानकारी पूर्ण बातचीत, विषय था भेड़ व बकरी पालन स्वरोजगार का साधन। बातचीत में भाग ले रही थी डॉक्टर रविंद्र शर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेंद्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि जानकारी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व का काम करती है और जिससे हमारे कार्य जल्दी से हो जाते हैं और समय की बचत होती है। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, कृष्ण लाल सहगल की मधुर आवाज में ये तो सुना आपने लोकगीत, और इसी के साथ कल के जो मुख्य आकर्षण है उनकी जानकारी भी आपको दे देते हैं।
1: काम की बातों में बात करेंगे, सब्जी वाली फसलों में जल प्रबंधन, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाया जाएगा, जिसका विषय है ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली सब्जियों का उत्पादन एवं प्रबंधन।
0: तो किसान भाइयों, इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम को यहीं पर ही विराम दिया जाए। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला

0: इंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुँचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
6: चिट्टा को हम जन से हो, जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। का पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को, युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
5: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रेकांगपियो में किन्नौर जिले के जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने

0: कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी की फिंडरू पंचायत के उप प्रधान देवी चरण वर्मा ने कहा कि सरकार के सहयोग से पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
1: देवी चरण वर्मा आज उप प्रधान के रूप में शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत फिंडरू के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार के सहयोग से हम अपनी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
0: इस बीच पांगी घाटी के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने सरकार से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में इन प्रतिनिधियों ने कहा कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से इलाके का समग्र विकास सहित जन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। उन्होंने वर्ष भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए चेहणी पास सुरंग का जल्द निर्माण करने की मांग उठाई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। धर्मशाला में आज भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। कार्यशाला में केंद्रीय विधि व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने में कॉमन सर्विस सेंटर और टेली लॉ जैसी पहलें अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में न्यायिक व विधिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से लोगों को अवगत करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
2: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
0: प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल भूकंप, बादल फटने और वनों में आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान पिछले मॉक अभ्यासों में दिखाई गई

0: प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, निकासी और राहत व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिनमें भविष्य में और सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल 16 जून से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक HLO मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंदिर की विकास और विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बताया कि ये निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा कर तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुँचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
3: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
2: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है।
3: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
2: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला की विशेष प्रस्तुति में अब आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास की यात्रा। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर व सामाजिक कार्यकर्ता अजय श्रीवास्तव जी, और इनसे चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के साथ साथ हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुन सकते हैं।
6: आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा।

0: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने 26 मई 2014 से देश की बागडोर संभाली और अब 12 वर्षों का लंबा सफर तय कर लिया है। इन 12 वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में बदलाव और विकास के नए आयाम देखे। इस कालखंड में भारत की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण दौर रहा। इन वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। गरीबी, बेरोजगारी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास जैसे अभियान जमीन पर उतरे और कई योजनाएं आम लोगों तक पहुंची। इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास की यात्रा। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में खास मेहमान मौजूद है। स्वागत करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 12 वर्षों में देश की तस्वीर कैसे बदली, गरीब, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ नया किया गया और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या संकल्प लिए गए। तो प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद उज्ज्वल शर्मा जी, और आकाशवाणी शिमला का भी धन्यवाद जो इतने महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर आज का कार्यक्रम रखा है।
0: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों को एक समग्र रूप में किस नजरिए से देखते हैं।
1: देखिए, एक पत्रकार की दृष्टि से मैं पिछले लगभग 4 दशक से भी अधिक समय से हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की राजनीति विकास यात्रा को देख रहा हूँ। मैंने राजीव गांधी जी का समय भी देखा, उसके बाद की सरकारें भी देखी, और पिछले 12 वर्षों से जो अभी एनडीए की सरकार है इसको भी देख रहा हूँ
0: जी।
1: विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, समग्र विकास की दृष्टि से, तो इस समय हमने देखा कि जो भी कुछ यहाँ परिवर्तन हुआ है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले किसी भी सरकार में 12 वर्षों में या 10 वर्षों के दौरान इतना मेजरेबल, जो हम कह सकते हैं जिसको मापा जा सकता है, उतना परिवर्तन, और वो सकारात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, वो पिछले 40-50 साल में मैंने स्वयं में नहीं देखा
0: जी।
1: तो इसलिए कोई देश में कोई भी विषय है या कोई भी वर्ग है, वो एक नारी, महिला, बेटियों से लेकर के हमारी सुरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा तक, हमारी विदेश नीति तक, हमारी ऊर्जा क्षेत्र में इतना परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया पहले कभी भी
0: जी। यानी कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की काम करने की शैली और योजनाओं में कई बदलाव देखे गए हैं।
1: बिल्कुल, बुनियादी बदलाव। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और उसके कुछ ही समय बाद जो एक योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन
0: जी,
1: उसको रिप्लेस किया नीति आयोग से, तो नीति आयोग के काम करने का ढंग प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग से बिल्कुल फर्क है। ये भारत का सर्वोच्च थिंक टैंक है और ये ग्रास रूट लेवल से इनपुट लेकर के योजनाएं बनाता है। पहले होता था कि योजनाएं दिल्ली में, केंद्र में बनाई जाती थी और नीचे तक उनको थोपा जाता था। अभी है कि योजनाओं का इनपुट नीचे से आता है, उनकी आवश्यकताएं नीचे से, पंचायत स्तर से उसकी शुरुआत होती है और फिर वो योजना ऊपर जाकर के बनती है। तो ये एक बुनियादी अंतर है। इसलिए हमें विकास की गति और उसके माप में भी बिल्कुल बुनियादी अंतर दिखाई देता है।
0: बिल्कुल, विकास के कामों में इन 12 वर्षों में तेजी आई है और कई नई नीतियां बनी हैं जिससे देश के कामकाज के तरीकों में बदलाव महसूस किया गया है। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं, इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं?
1: ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, कारनामा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसमें इतने प्रकार के मत संप्रदाय, इतने प्रकार की भाषाएं, इतनी जनजातियां, जातियां, और राजनीतिक स्तर इतना गिरावट की ओर जा रहा है, ऐसे में विशाल जनमत के साथ देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में जहां कहीं पर भी लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यानी सत्ता पर काबिज रहे, उनके देशों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देश लोकतांत्रिक देश आमतौर पर नहीं होते हैं। या तो वहां एक पार्टी की सरकार होती है, जैसे चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी है,

0: या फिर वहां तानाशाही होती है। इतने 140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले देश में लगातार इतने लंबे समय तक, नेहरू जी का हम नाम लेते हैं कि अभी तक वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी ने उनसे भी आगे निकल करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसीलिए विश्व के जितने प्रमुख नेता हैं सबकी ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और जनता के लिए बधाई संदेश आए हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है।
1: जी अजय श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की और इनका असर कितना हुआ?
0: देखिए, मैंने वो समय भी देखा है, हम सभी ने देखा है, जब गरीबी हटाओ का नारा हर चुनाव में दिया जाता था और गरीबी हटाने पर फोकस कभी भी नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर लोगों की गरीबी हट गई उस समय सोचा जाता था तो फिर वो सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, डिमांड करेंगे और वो नियत सरकार की नहीं होती थी, वो मंशा नहीं होती थी। मोदी सरकार ने जिस प्रकार से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जैसे महिलाओं को समाज में समान भागीदारी देना, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और आमतौर पर चाहे वो समाज का अंतिम वर्ग है और चाहे वो उच्चतम वर्ग है,
1: जी
0: महिलाएं अगर कार्य नहीं करती हैं, कार्य करती हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो परिवार को संबल नहीं देती हैं, तो परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पाता है और ये हो रहा है, चाहे वो कोई श्रमिक है और चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, सब जगह महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन जो श्रमिक है उस लेवल पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, विभिन्न प्रकार के उनको काम सिखाए गए और उनकी स्किल में सुधार किया गया। अब जैसे हम देखते हैं, बिल्कुल नया आइडिया था ड्रोन दीदी का,
1: जी
0: महिलाएं गांव में ड्रोन चलाती हैं और वो खेती में सहयोग करती हैं। इसी प्रकार से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, किसानों के लिए MSP बढ़ी, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए डाले गए ताकि वो अपनी खेती का काम सुचारू ढंग से जो है संचालित कर सके।
1: जी
0: और इसी प्रकार से कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जो कि समाज का सबसे अंतिम वर्ग हो और उसके लिए सशक्तिकरण का काम ना हुआ हो। यही वजह है कि पिछले 10-12 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया और गरीबी रेखा से वो बाहर आने में सफल हुए।
1: अजय श्रीवास्तव जी, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, इसी में हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इन योजनाओं से आप कितना बदलाव महिलाओं के सामाजिक स्तर में देखते हैं?
0: ये बदलाव मापा जा रहा है, इस पे बहुत से संस्थान और यूनिवर्सिटीज शोध कर रही हैं कि ये बदलाव आया तो कैसे आया।
1: जी
0: अब उज्ज्वला योजना की भी हम बात अगर करते हैं तो गांव में मुझे अपना समय याद है, मेरी माताजी कैसे, और मेरी एज के नहीं और भी बहुत से हमसे छोटी एज के भी लोग, उम्र के लोग जानते हैं कि माताओं की आंखें धुंधली पड़ जाती थी और चूल्हे से ना सिर्फ उनको सांस की बीमारी होती थी, आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, उनकी स्किन खराब होती थी, त्वचा रोग हो जाते थे और पूरे घर में धुएं का वातावरण रहता था। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को संबल दिया, उस संबल का ये नतीजा है कि आज महिलाओं की आंखों की रोशनी और सांस की बीमारियां, इसको मापा जा सकता है, सर्वे हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, किस प्रकार से उसमें लाभ हुआ है। अब महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जंगल से लकड़ियां काट के लाने में जो समय लगता था वो एक गैस चूल्हा जलाने में लाइटर की देरी है कि गैस उनके लिए तैयार हो जाती है, और उसमें भी हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर उनको गैस चूल्हे या जो है निशुल्क भी मिले हैं और जो गैस सिलेंडर है उसमें काफी सब्सिडी मिलती है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई, हमारी माताओं बहनों के लिए। और इसके अलावा आपने कहा
1: बेटी
0: बेटी बचाओ
1: बचाओ
0: बेटी
1: बेटी
0: पढ़ाओ,
1: पढ़ाओ।
0: बेटियों की स्थिति क्या थी कि भ्रूण हत्या में कई राज्य तो ऐसे थे जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे थे, अब
1: जी
0: उसका लिंगानुपात जो है वो बहुत ही सुधरा है पिछले 12 वर्षों में, और इसके साथ साथ बेटियों की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई बालक पढ़ता है तो वो सिर्फ सिर्फ पुरुष ही समाज में पढ़ते हैं, अगर घर की बेटी पढ़ती है तो कल को जब विवाह

0: होता है, उसकी बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो पूरा परिवार पड़ जाता है।
1: जी
0: तो ये परिवर्तन भी हमें पिछले 12 वर्षों में देखने को मिला। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में बेटियों को न सिर्फ भ्रूण हत्या और अत्याचारों से उन्हें सुरक्षित किया गया, बल्कि उनकी शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर, उनकी स्किल इंप्रूव करने में तरह तरह की उनकी योजनाएं चला करके बेटी को आत्मनिर्भर बनाया गया। और मोदी जी का शुरू से मानना है, लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि अगर बेटी समाज में पढ़ती है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है।
1: बिल्कुल अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल माना जाता है और केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को पीएम जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की क्या अहमियत रही और क्या इस योजना के जरिए सरकार देश के वंचित गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही?
0: बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों नए लोग जो कि बैंक का दरवाजा खोल करके अंदर घुसने का साहस नहीं कर पाते थे, बैंक का चौकीदार उनकी स्थिति देखकर, उनके कपड़े देखकर उनको अंदर नहीं घुसने देता था, अब वो सम्मानित लोग हैं जो बैंक में जाते हैं, सम्मान के साथ उनका खाता खोला गया और वो अपना लेन देन और अपनी बचत बैंक के माध्यम से करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, विश्व में इतने बड़े पैमाने पर बैंक अकाउंट खोले जाएं ये कहीं नहीं हुआ था।
1: जी
0: अगर हम देखें, और मैं आपको बताता हूं कि किन वर्गों को इससे लाभ हुआ। मैं चूंकि समाज में काम करता हूं, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे, जैसे नारी सेवा सदन है शिमला का, या हमारा ओल्ड एज होम है,
1: जी
0: इनमें जो संवासी रहते थे, इनमेट्स रहते थे, उनकी पेंशन मनी ऑर्डर के तौर पर आती थी और उनका कोई खाता नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि जनधन योजना लाए जाने के बाद जितने भी इनमेट्स हैं, चाहे वो नारी सेवा सदन के हैं, चाहे वो हमारे वृद्धाश्रम के हमारे बुजुर्ग हैं, सबके खाते खोले गए। उससे पहले इनका बैंकिंग का रिकॉर्ड ही कोई नहीं था, जबकि आजाद हुए हमें कितने वर्ष बीत गए, इन सभी लोगों के बैंक
1: जी
0: खाते खुले जो कि कभी बैंकिंग सेक्टर से जिनका वास्ता ही नहीं पड़ता।
1: यानी कि गरीब और ग्रामीण लोगों के साथ साथ जो भी जरूरतमंद लोग थे वो बैंकिंग से जुड़े हैं
0: बिल्कुल
1: और सरकारी मदद सीधे लोगों के खातों में पहुंचने लगी है, जिससे पैसे देने की व्यवस्था आसान और तेज हुई है।
0: बहुत बहुत आसान। अब जैसे गांव-गांव में बैंकिंग सिस्टम इस प्रकार से फैल गया कि जो लोग जिनके खाते नहीं थे आज नजदीकी ब्रांच में जाते हैं, या अगर उनको कहीं राशि जमा करनी होती है तो वो भी उनके लिए संभव है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनके घर पे भी उनको ये सेवाएं मिल जाती हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए हो और चाहे वो बैंक के जरिए हो।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिना जाता है।
0: बिल्कुल
1: आपके अनुभव के आधार पर इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव डाला है?
0: देखिए, मैंने स्वयं देखा है, खास करके हिमाचल प्रदेश में, यदि घर का कोई सदस्य गंभीर बीमार हो गया, जैसे कैंसर है या कोई और है या कोई दुर्घटना है और उनको भर्ती होना पड़ता था, तो घर के माता बहनों के जेवर और फिर बाद में जमीन भी बेच करके वो इलाज कराते थे।
1: जी
0: उस स्थिति में और आज की स्थिति में बिल्कुल एक बुनियादी फर्क आ गया है। 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का जो खर्चा इलाज का है वो इन योजनाओं के जरिए सरकार वहन करती है। तो ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं जो मैंने स्वयं देखे, जिनमें कि वो लोग, जैसे एक बच्चा था हमारा, ब्लाइंड था, ब्रेन ट्यूमर था उसको, सिरमौर जिले का, वो पीजीआई में था और अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो वो शायद इलाज नहीं करा पाता। तो इस प्रकार से एक आम व्यक्ति जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके पास जेवर और जमीन बेचने के अलावा कुछ नहीं था, उसको 5 लाख रुपए का उसका इलाज अगर वो भर्ती होता है, ये उसके सपनों से भी बाहर की बात थी।
1: यानी कि इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति की तरह काम किया है।
0: बहुत बड़ी क्रांति। एक तो ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निम्न आय वर्ग के थे, इलाज नहीं करा सकते थे, जिनको कहीं से रिएम्बर्समेंट नहीं होता था, एक तो ये उनका संभव हुआ। दूसरे, जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनको सरकार की ओर से रिएम्बर्समेंट हो जाता है, तो टोटल मेडिकल फील्ड का बिजनेस भी बढ़ा।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, कृषि क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को आप कैसे आंकते हैं, विशेषकर पीएम

0: किसान सम्मान निधि को लेकर?
1: बिल्कुल, ये भी बड़ा आपका सवाल बहुत ही माकूल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों को लेकर के इस देश में बहुत नारेबाजी होती रही, आंदोलन होते रहे, और वो राजनीतिक दृष्टि से वोट पाने के लिए था। जो हमारी एनडीए सरकार आई उसमें वोट के लिए नहीं, बल्कि किसानों की स्थिति में आमूलचूर परिवर्तन के लिए काम किया गया, और उसका नतीजा है कि एक 6,000 रुपये साल की किसान सम्मान निधि तो एक है, उनको समय पर खाद मिलना, और ये किसान क्रेडिट कार्ड से उनको समय पर सहायता मिल जाती है, और इसके अलावा उनके बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं। महिलाओं को जो खेती किसानी का काम करती थी लेकिन कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, कोई उनको सम्मान नहीं मिलता था, वो भी एक बहुत बड़ी बात हुई। और ड्रोन दीदी ड्रोन चलाती हैं, ये सारे काम खेती के बिल्कुल सुचारू ढंग से चलने लगे, क्योंकि नियत सरकार की ये थी कि किसानों की स्थिति, अन्नदाता की स्थिति अगर नहीं बदली तो ये देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है।
0: किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हुआ
1: बहुत
0: है।
1: बड़ा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग हुई है ये, और उस छलांग का ये नतीजा है कि अभी आप गांव में किसी भी किसान से बात करेंगे तो वो कहेगा कि पिछले 12-13 वर्ष से पहले का जो समय था उसमें जो उनको कठिनाइयां थी आज उनमें बहुत आसानी हो गई है।
0: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने का सरकार ने दावा किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इस पहल के सामाजिक प्रभाव को कैसे देखते हैं?
1: बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं तो स्वयं इसमें भागीदार हूं। एक ब्लाइंड लड़की थी, माता पिता भी नहीं थे, बहुत जीवन उसका बिल्कुल कष्ट में था। उसका नाम था उषा और वो शिमला की थी।
0: जी
1: इस आवास योजना के लिए उसका नाम आया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, और उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि उसका अपना मकान होगा। वो ढारे में या झुग्गी में जैसे भी रहती थी, उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हमने समाज के सहयोग से पैसे जमा किए और उषा को बड़ी आसानी से नगर निगम शिमला से शहरी क्षेत्र में मकान मिल गया। इसी तरीके से धर्मशाला में भी मैंने देखा, बहुत बड़े पैमाने पर जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ, या हमारे साथी एक लामा हैं जामयांग जी, उनका टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके सहयोग से वहां पर इस आवास योजना के अंतर्गत उन झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़े पैमाने पर मकान मिले जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी सोचते भी नहीं थे। झुग्गियों में उनके नाती पोते तक झुग्गियों में हो गए थे, अब वो शान से अपने मकान में रहते हैं और उनके बच्चे एक सुरक्षित जगह छत के नीचे बिजली की रोशनी में आज पढ़ाई कर रहे हैं। ये आम लोगों के सामने ये बातें हैं, इसमें कोई दावा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है।
0: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप स्वयं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उमंग फाउंडेशन के माध्यम से सक्रिय रहे हैं, ऐसे में आप केंद्र सरकार की दिव्यांग जन कल्याण योजनाओं को किस तरह देखते हैं?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मोदी सरकार 2016 में एक नया कानून लाई जिसका नाम था राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उससे पहले दिव्यांग जन कानून था 1995 का, वो बहुत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक मामले में कि बैडली ड्राफ्टेड एक लॉ है ये। उसके लिए हजारों लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि ये कानून बदला जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, और मोदी सरकार 2016 में एक बिल्कुल नया कानून लाई। पहले कानून में सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगताएं या विकलांगताएं आइडेंटिफाई की गई थी, नए कानून में उनकी संख्या बढ़ाकर 21 हो गई, यानी कि उसका दायरा भी व्यापक किया गया, और उसमें जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत से ऐसे वर्गों को उसमें जोड़ा गया जिसमें कि स्पीच इम्पेयरमेंट भी है। जैसे पहले था कि जो लोग बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते थे
0: जी
1: वही लोग दिव्यांगता में आते थे, अब जो सुन सकते हैं बोल नहीं सकते वो भी इसमें शामिल हो गए। तो इनके लिए चूंकि इसका दायरा बढ़ाया गया तो बहुत ज्यादा बड़ी आबादी इसके दायरे में आ गई, और उनके लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जैसे उनके लिए लोन देना, उनके लिए मकान के लिए, चाहे चाहे शिक्षा का है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत से बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालयों के ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार से पीएचडी करने के लिए एक दिव्यांग होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती है। अगर वो स्कॉलरशिप नहीं होती

0: तो ये दिव्यांग बच्चे नहीं पीएचडी कर सकते थे। इस प्रकार के शिक्षा में भी है, इनको मकान में भी है, लोन लेने के लिए भी है, अगर इनको मकान लेना है तो लोन मिलेगा, रोजगार अगर इनको चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें लोन है, और बहुत से अन्य लाभ इनके लिए सरकार के नए कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए।
1: यानी कि दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम हुआ है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि कोई भी वर्ग अगर विकास की दौड़ से अछूता रह गया तो देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो दिव्यांग जनों की इतनी बड़ी आबादी है जिसको कि विकास की दौड़ से बिल्कुल बाहर रखा गया था, तो मोदी जी ने उनको सहारा दिया, संबल दिया और आगे लाने के लिए उनके योजनाओं के माध्यम से, कोई दया दृष्टि नहीं, चैरिटी नहीं, उनको अधिकार देने के नाते से, अब जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मैं बताता हूँ, वहाँ दिव्यांग बच्चों को बहुत मुश्किलें होती थी, कोई लिफ्ट नहीं थी, रैंप नहीं थे और बहुत से ऐसी चीजें नहीं थी। अब भारत सरकार के सहयोग से वहाँ पर कई लिफ्ट लग गई, रैंप बन गए और बहुत से, और वहाँ पर एक्सेसिबल लाइब्रेरी बनी, उसमें भारत सरकार का पैसा है। एक्सेसिबल लाइब्रेरी में कोई ब्लाइंड बच्चा कंप्यूटर पर बैठ करके आराम से काम कर सकता है। चूंकि मैं विश्वविद्यालय का नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था, तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि आज से 12-14 साल पहले और आज के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और जब लोग कहते थे कि इनको भीख दे दो और आगे बढ़ जाओ, अब मैं कहता हूं इनको शिक्षा दे दी गई है, इनको आरक्षण दे दिया गया है, भीख की बजाय ये बच्चे खुद नौकरी कर रहे हैं, और अगर जो देख नहीं सकते हैं वो कार खरीदेंगे और ड्राइवर रखेंगे,
1: जी
0: तो ये परिवर्तन हम सबके सामने है।
1: बिल्कुल। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है। हर सरकार के समक्ष इससे निपटने की चुनौती रहती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, शुरू में ही जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने जो युवा पढ़े लिखे थे और नौकरी की दौड़ में थे, उनमें सबसे पहले उनको कहा कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं अपने परिवार में और बहुत से युवाओं को जो नौकरी कर रहे थे या नौकरी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। अब वो 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
1: जी
0: तो एक ये मानसिकता का बदलाव हुआ कि सरकार की नौकरी ढूंढने की बजाय आप स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू करें, कोई सोशल इंटरप्राइज शुरू करें और दूसरे लोगों को जो उस लेवल पर, आपके लेवल पर नहीं आ पाए हैं, उनको रोजगार दें। इसके साथ ही जो स्किल इंडिया एक योजना है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी काम हुआ है, अभी आप देखें कि हमारी जितनी आईटीआई थे या जितने हमारे पॉलिटेक्निक थे, उसमें कंप्यूटर साइंस का या तो कोई कार्यक्रम नहीं चलता था या बहुत सीमित मात्रा में था, एआई तो बिल्कुल नहीं था।
1: जी
0: अब बहुत से आईटीआई लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर का दायरा है जिसमें कि बच्चे आज एआई की ट्रेनिंग लेकर के, स्किल डेवलप करके समाज में काम करेंगे। और एआई का इतना बड़ा इस्तेमाल है, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन का काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो एआई के बिना आज नहीं हो सकता है। तो सरकार नौकरी देती है, लेकिन सरकार ने उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि आज बहुत से लोग जो एक रोजगार ढूंढते थे, आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इससे भी बेरोजगारी की दर में और बेरोजगारों की संख्या में पिछले 12 वर्षों में एक मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है, उतनी कमी आई है। ठीक है, दर तो कुछ ना कुछ लगातार बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास भी निरंतर चल रहे हैं।
1: बिल्कुल। अजय श्रीवास्तव जी, डिजिटल इंडिया की बात करें तो आज के दौर में जो डिजिटल पेमेंट हो रही है, कैशलेस पेमेंट हो रही है, तो इसे भी एक तरह से क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मोबाइल से सारी पेमेंट्स हो रही है, कैश रखने की जरूरत नहीं है। आप इस डिजिटल पेमेंट के लाभ और चुनौतियों को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके साथ साथ डिजिटल ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध भी बढ़ रहा है।
0: देखिए, समाज में कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका दुरुपयोग भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन हम देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जब दिल्ली आए और मजनू का टीला या किसी स्थान पर मोदी जी के साथ गए और एक छोटी सी शॉप पर या ढाबे पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया, तो वो हैरान रह गए।
1: जी
0: मतलब यूरोप के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक कल्पना करना

0: मुश्किल है कि छोटा सा गोलगप्पे वाला भी QR कोड स्कैनर लेकर के बैठा होता है और सारा पेमेंट डिजिटल हो जाता है, 5 रुपए 10 रुपए से लेकर के बड़े बड़े पेमेंट। तो ये लाभ ये है कि जेब में करेंसी नहीं रखनी पड़ती है।
1: जी
0: फिर कई मित्र देश ऐसे हैं भारत के जहां जाने पर डिजिटल पेमेंट आसानी से आप कर सकते हैं, वरना क्या था कि आप कोई जो है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेकर के जाएं, उसके ऊपर फीस ज्यादा लगती थी, ये सब था। अभी कई देशों में मैंने स्वयं इस्तेमाल किया विदेशों में कि हमारा जो UPI है वो आसानी से, जैसे सिंगापुर है, UPI से वहां पेमेंट हो जाता है। अभी
1: जी
0: नेपाल में भी शुरू हुआ, भूटान,
1: जी
0: अभी हम पिछले दिनों गए थे तो भूटान में भी हमने कोई करेंसी जेब से निकाली ही नहीं, सब जगह पेमेंट हमारा UPI से हो गया। तो ये एक आसानी हो गई। और दूसरा, जहां तक साइबर क्राइम है और इसका दुरुपयोग है, तो इस फील्ड में सरकार की ओर से बहुत सुधार किए गए, बहुत काम किए गए, लेकिन अभी भी इससे निपटने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि हम देखते हैं बिल्कुल नए नए तरीके आ जाते हैं
1: जी
0: जो सरकार के नीति निर्माता सोचते भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी IQ बहुत शार्प है, वो इस प्रकार के अपराधी हैं। तो इस फील्ड में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
1: अंत में विकसित भारत 2047 के संकल्प को आप एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, पिछले आजादी के बाद से हमने सिर्फ दूसरे देशों की निर्भरता पर फोकस किया कि हम रक्षा मामले हैं, खाद है, अनाज है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद है या अन्य चीजें हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, यही हमारी नियति थी। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित भारत का सपना भी होगा, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम होना चाहिए, और जब से मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक संकल्प के तौर पर इसको लिया। और जो कुछ अब जैसे रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में हम देखें, हम कभी भी निर्यातक थे ही नहीं, आज बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों में जा चुकी है, विमान बेचने की तैयारी है,
1: जी
0: गोला बारूद और दूसरी चीजें जा रही हैं। इसके साथ साथ जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, वो लोग सैटेलाइट यानी उपग्रह बना रही हैं और वो लॉन्च हो रहे हैं। तो ये विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने बेहद सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी शिमला का भी।
1: श्रोताओं, आज की इस परिचर्चा में हमने जाना कि इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चाहे बात गरीबों के कल्याण की, महिलाओं की सुरक्षा हो या किसानों की मदद, मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें लागू भी किया। देश के विकास की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें सरकार, समाज और नागरिक सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ मुझे उज्जवल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष उपलब्धियां और विकास की यात्रा, इस विषय पर विशेष भेंट वार्ता। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
4: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
6: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का

0: न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: इस वक्त 8:31 हो चुके हैं। FM शिमला पर आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में

0: ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है। ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन

0: सब घटनाक्रम में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,

0: कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। यह एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight.

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त 9:15 हुए हैं और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं एक फिल्म से कार्यक्रम। और आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट।

जी हाँ साथियों, पेइंग गेस्ट एक प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और जिसका निर्देशन सुबोध मुखर्जी ने किया था और फिल्म में देवानंद और नूतन मुख्य भूमिकाओं में हैं। और फिल्म की कहानी की बात करें तो रमेश नाम का एक युवा वकील किराए न दे पाने के कारण बार बार मकान से निकाल दिया जाता है और रहने की जगह पाने के लिए वो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति का भेष बनाकर एक घर में पेइंग गेस्ट बन जाता है। वहीं उसे मकान मालिक की बेटी शांति से मोहब्बत हो जाती है और इसके बाद प्रेम, गलतफहमियां, हास्य और रहस्य से भरी घटनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं।

साथियों, संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीत एसडी बर्मन ने दिया था और इसके कई गीत आज भी लोकप्रिय हैं। और फिल्म के मुख्य खास बातों की बात करें तो ये फिल्म देवानंद की चुलबुली और स्टाइलिश एक्टिंग के लिए मशहूर है और नूतन की सादगी और इमोशनल परफॉर्मेंस बहुत सराही गई थी। और फिल्म में हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ मजबूत रोमांस भी है और 1950 के दशक की क्लासिक साफ़ सुथरी फैमिली एंटरटेनर फिल्म मानी जाती है।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: साथियों, ये गाने आज भी पुराने सुनहरे दौर के सबसे पसंद किए जाने वाले गीतों में से हैं। और मज़ेदार फैक्ट्स की बात करें तो फिल्म का कॉमिक टाइमिंग उस समय के हिसाब से काफ़ी जो है आगे माना जाता है, और देवानंद और नूतन की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था।

0: इसी गीत के साथ ही एक फिल्म से कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने पेइंग गेस्ट फिल्म के गीत।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। 9:30 हो चुके हैं और मैं संजय कुमार हाजिर हो चुका हूँ ईमेल बेस्ड प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है दिल की आवाज़ भी सुन।

पहले आपको बताते हैं शामिल की गई फिल्मों के नाम। आज की फिल्में रहेंगी ऐतराज, आपकी खातिर, तुम्हारी सुलू और साथ ही साथ मैदान। एक बार फिर से फिल्मों के नाम सुन लीजिएगा, ऐतराज, आपकी खातिर, तुम्हारी सुलू, बॉर्डर टू और मैदान। इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है airfmshimla@gmail.com। लिख भेजिए अपना नाम, पता हिंदी फॉन्ट में, ताकि हमें आपके कस्बे गांव का नाम अच्छे से पढ़ा जा सके, क्योंकि हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। कीजिए साथियों मेल FM शिमला के नाम, हमें है आपके मेल के आने का इंतज़ार।

और आपके मेल के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चलिए हम आपके मेल शामिल करते हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभ चंद्र, साहिल और बिट्टा बजाज का हमें मेल प्राप्त हुआ है और एतराज़ फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। कोका भिलाई से उत्तम सिंह, जंगेल, मोरस, अनिल, अजित, आयुष और नंदिनी मेल कर रहे हैं और धमदा सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल हमें मेल कर रहे हैं और शिमला से किरण ब्रागटा, नेहा और राहुल ब्रागटा का हमें मेल मिला है इसी फिल्म के लिए। करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल से मेल कर रहे हैं वेदिका ठाकुर, काव्या, संगीता, रोशनी और बसंत ठाकुर हमारी पसंद का गीत सुनना चाह रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता गौड़ और सादर प्रणाम लिख रहे हैं कि कोई सा भी गीत सुना दें, बहुत जल्द हम आपको गीत सुनाने वाले हैं। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्ट, नीलम, निहारिका, हार्दिक वंश का हमें जो है मेल प्राप्त हुआ है एतराज़ फिल्म के लिए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फ्रॉम द मूवी एतराज़।

साथियों, ये था कार्यक्रम का पहला गीत और लगातार आपके मेल हमें प्राप्त हो रहे हैं और एक गुजारिश और भी आपसे करना चाहेंगे, अपना जो मेल है वो एक बार में ही भेजें। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, आश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह हमें मेल कर रहे हैं और आपकी खातिर फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। चलिए शामिल करते हैं वो मेल जो हमें प्राप्त हुए हैं इसी फिल्म के लिए। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिम केशवर साहू, करण, राहुल और चंपा साहू, शिव मंदिर हकीकतपुरा से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इब्राहिम, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन और गौसिया फातिमा। कहाँ में मेल प्राप्त हुआ है? सदर बाजार कोरावली से अनिल वर्मा, माया, राहुल वर्मा, विनीत और सोनम वर्मा को मेल कर रहे हैं। और दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा का हमें मेल प्राप्त हुआ है। गांव हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम और इंदिरा शर्मा मेल कर रहे हैं इसी फिल्म के लिए। और बागपत यूपी से संजय, नमन और अपार ढिंगिया का हमें मेल प्राप्त हुआ है। और गिरडी झारखंड से मेल शामिल करते हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज़, बाबू अहमद, मिफरा नवाज़, चाहत और सादिया। अगला मेल शामिल करते हैं संभाजी नगर से मेल प्राप्त हुआ है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। चलिए आपकी खातिर फिल्म का गीत सुनते हैं।

चलिए वो मेल शामिल करते हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं तुम्हारी सुलू फिल्म के लिए। लोरमी छत्तीसगढ़ से कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी मेल कर रहे हैं। और अगला मेल हमें प्राप्त हुआ है नवाशहर पंजाब से। गगनदीप, थानदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और वामिका और वाणी थानदी का हमें मेल मिला है। सोनाम पंजाब से विरोचनपुरी, भारतीपुरी, डॉक्टर के आर पुरी, शोभापुरी, सरोज, सौरभ, ज्योति, इताश, वर्णिका, रिद्धि पुरी और मास्टर वहीन पुरी हमें मेल कर रहे हैं और इसी फिल्म का गीत सुनना चाह रहे हैं। हनुमानगढ़ राजस्थान से मेल कर रहे हैं रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान और जिशान खान। नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरब, ज्योति, गुरमंत कौर, मनु का हमें मेल प्राप्त हुआ है और गुरु रंधावा की आवाज़ में कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश, नर्मदा और सुजाता पुहरकार का हमें मेल प्राप्त हुआ है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी, निमित आहूजा का हमें मेल प्राप्त हुआ है। दुर्गा चौक सनावद एमपी से कालू सिंह बडोले, सीताराम, हीरालाल, साहिल, सुमन, विशाल, हरिओम और भावना का हमें मेल मिला है। सुनना चाहते हैं हमारे पसंद का कोई सा भी गीत।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनो, और लगातार आपके जो मेल हैं हमें प्राप्त हो रहे हैं। चलिए मेल शामिल करते हैं। फाजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु विशाल और लाड़ी खेड़ा, शालिनी और टिवांशी खेड़ा, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से हमें मेल कर रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान का हमें मेल प्राप्त हुआ है, और डांगरी से बाबू राम जयपाल मेल कर रहे हैं, और पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा का हमें मेल मिला है, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी मेल कर रहे हैं, और बॉर्डर टू फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू का हमें मेल प्राप्त हुआ है, और सनावद एमपी से खुशी, खुशबू, खुशमीत, खुशदीप और खुशमिता, एकांश, वंदना का हमें मेल प्राप्त हुआ है इसी फिल्म के लिए। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी और सदानंद हमें मेल कर रहे हैं, और हितेंद्र दास का मेल मिला है हमें आसाम से, और लिखकर भेज रहे हैं कि अपना हमारा मेल ज़रूर शामिल करें और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाएं। अजीत कसाना का मेल मिला है, और साथ ही साथ माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, मुरादाबाद से आपने मेल हमें किया है, और श्रेवट गांव सिरमौर हिमाचल से हमें मेल कर रहे हैं जियालाल धीमान, सुनना चाहते हैं बॉर्डर टू फिल्म का गीत। आइए सुनते हैं बॉर्डर टू फिल्म का गीत विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाज़ों में।

अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक हमें मेल कर रहे हैं और बहादुरगंज गाजीपुर से आदाद अली, रिजवान, परवीन, अब्दुल्ला आजाद का हमें मेल मिला है। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन दिव्यांश, डॉक्टर मदन लाल वर्मा का हमें मेल प्राप्त हुआ है। मैदान फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं। रघुनाथपुरा, गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी मेल कर रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता, और पटियाली रोड यूपी से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और अरीबा हबीबा का हमें मेल प्राप्त हुआ है। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम, सहोदर नारायण प्रसाद, दिनेश और कालिंद्री लहरे हमें मेल कर रहे हैं इसी फिल्म के लिए।

ये मिलन एक ख्वाब जैसा लगता है, जैसे रात में देखा हुआ कोई मीठा सपना हो। दिल को यकीन नहीं होता कि तुम सच में सामने हो। हर पल ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। तेरी मुस्कान में एक जादू सा है जो हर दर्द को पल भर में भुला देता है। अगर ये सपना है तो मैं जागना नहीं चाहता, क्योंकि तेरे साथ ये लम्हा ही मेरी पूरी दुनिया है।

मोहब्बत कोई आसान रास्ता नहीं होता, ये दिल से निभाई जाने वाली एक रस्म है। और यहाँ वादों की कीमत सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि हर दर्द और इंतज़ार में निभाई जाती है। कभी दूरी होती है कभी बेबसी, फिर भी दिल किसी एक ही नाम पर ठहरा रहता है। मोहब्बत में न जीत होती है न हार होती है, तो बस एहसासों का एक सच्चा सफ़र होता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो खामोशी में भी प्यार से जी लेते हैं।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

अभी आप सुन रहे थे चंद गज़लें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र 103.7 MHz पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। FM शिमला पर लीजिए पेश है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं शक्ति फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

सदाबहार नगमों के सफर में आइए, अगला गीत सुनते हैं धर्मवीर फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमें। आइए अब सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। आइए सबसे आखिर में सुनते हैं मजबूर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का

0: सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labour migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International.